एफएम 107 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई 2026। समय इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हुए हैं। मंगल ध्वनि के साथ हमारी ये प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी

0: कृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी BDT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में अब आप जानेंगे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में।

आप सुन रहे हैं हमारे आज के कार्यक्रमों का विवरण। अभी थोड़ी ही देर बाद 6:10 पर श्रोता सुनेंगे चिंतन। विषय रहेगा डर भी विजय दिलाता है। वंदना हम सुनेंगे 6:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बाहर होगा 6:45 पर। श्री रामचरितमानस गान आप सुनेंगे 7:20 पर। उत्तरकांड से संकलित एपिसोड संख्या आज आप सुनेंगे 390। कार्यक्रम नमस्कार शुरू होगा 7:30 पर। 8:00 हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात होंगे। 8:15 पर श्रोता सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम आप सुनेंगे 8:30 पर। 9:00 आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे। नौ बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे देश गान। कार्यक्रम धरा की पुकार आप सुनेंगे 9:15 पर। आज आप कार्यक्रम में सुनेंगे वार्ता, विषय जल संरक्षण का महत्व। ईमेल्स पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकेंगे 9:30 पर। 10:00 हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम होंगे। 11:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दोपहर 12:00। 12:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर होगा। कलाकार रहेंगे मांगीलाल कथक और साथ ही हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से दोपहर 1:00 होंगे। 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। 2:00 हमारे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज होगी। 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

2:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे, तराने नए पुराने। शाम 5:00 कार्यक्रम युववाणी के साथ आरंभ होगी हमारी आज की दूसरी सभा। शाम 6:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे। 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। देशभक्ति फिल्मी गीत आप सुनेंगे 6:10 पर। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से ही संस्कृत में समाचार। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे शाम 6:30 पर। तत्पश्चात कार्यक्रम जिले की चिट्ठी 6:40 पर होगा। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों के लिए समय रहेगा शाम 6:45 का। शाम 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। रात्रि 8:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गुलदस्ता। समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे 8:45 पर। रात्रि 9:00 News@9 होगी। बाता ही चाले ये कार्यक्रम होगा 9:15 पर। रात्रि 10:00 ईमेल्स पर आधारित राजस्थानी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम होगा गोरबंद। शास्त्रीय संगीत के लिए समय है रात्रि 10:30 का। रात्रि 11:00 श्रोता सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार श्रोताओं, चिंतन में आपका स्वागत है। आज का चिंतन आप सुन रहे हैं रेडियो साथी अंकिता के साथ। आज हमारा विषय है, डर भी हमें विजय की ओर लेकर जाता है। श्रोताओं, अक्सर हम यही सुनते हैं कि जिसकी संपूर्ण तैयारी होती है उसे डर नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जो तैयारी के साथ मैदान में उतरता है उसको मन में हमेशा पता होता है कि विजय मेरी होगी। लेकिन एक और हमारे जीवन में हम पल महसूस करते हैं जिस वक्त सब कुछ तैयार होते हुए भी एक डर होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो डर हमें

हमेशा एक नॉक करता है कि कहीं कोई तैयारी अगर अधूरी है या कहीं कोई तैयारी अगर कमी है तो हमें उसे पूरा करना है जिससे हम विजय की ओर बढ़ सकें। डर हमेशा हमें नकारात्मकता ही दे ऐसा जरूरी नहीं है, डर सकारात्मकता भी देता है, उसे पहचानना होगा। जब भी हम उस डर को ठीक से पहचाने और हमें पता हो कि जो डर हमारी आंतरिक मन में है वो हमारी विजय से हमें थोड़ा दूर रख रहा है, इसलिए हमें इस डर को दूर करना है, और हम प्रयासरत हो जाते हैं उस डर को दूर करने में और वो प्रयास हमें विजय की ओर लेकर जाता है। ये बिल्कुल सत्य है, सकारात्मक दिशा में किया गया डर का उपयोग हमें सतर्क, अनुशासित और बेहतर तैयारी करने के लिए प्रेरित करता है और अंत में सफलता की नींव हमारी बनती है। अगर असफलता के डर या परीक्षा के दबाव को अपनी सफलता की पीढ़ी बनाना है या अपनी सफलता की सीढ़ियों को चढ़ करके ऊपर जाना है तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा कि जो डर है वो सकारात्मक रूप में भी हमारे सामने आता है। डर को हमें छिपाना नहीं है। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि डरे हुए होकर के भी हम अपने मन को सहलाते रहते हैं कि नहीं, ठीक है, सब ठीक है, हमारा हो जाएगा, हम सफल होंगे, लेकिन हम कहीं ना कहीं खुद को धोखा दे रहे होते हैं। हमें पता होता है कि जो डर हमारे भीतर है वो हमें बता रहा है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं है, हमें थोड़ा प्रयास और करना है, और उस प्रयास से बचने के लिए हम उस डर को दबा रहे हैं, और वो दबाना हमारी सफलता को हमसे दूर करता है। इसीलिए हमें अपने डर को कभी भी दबाना नहीं चाहिए। अगर मन में डर है कहीं पर भी तो हमें उसे समझना है, समझकर क्या कमी है और कौन सी कमी से हमें डर लग रहा है उसकी ओर कार्य करना होगा। सफलता के लिए हमें सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई की दैनिक दिनचर्या बनाना और लक्ष्य को पूरा करना, चाहे हमारा किसी भी रूप में हो, उसकी ओर फोकस करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास व्यक्ति को हमेशा सफलता की ओर ज्यादा मात्रा में अग्रसर करता है, क्योंकि आत्मविश्वास से व्यक्ति अपने आप को उस सफलता की सीढ़ी के पास महसूस करता है। लेकिन ये आत्मविश्वास ऐसे ही नहीं आता, जैसे हम बैठे हैं और बैठे बैठे ये कह लें नहीं मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूंगा। ये आत्मविश्वास नहीं है, ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है। आत्मविश्वास हमेशा मेहनत से आता है, और मेहनत करने के बाद जो आत्मविश्वास आता है वो आंतरिक होता है, उसे हमें लाने की जरूरत नहीं होती है। हम खुद महसूस कर सकते हैं जब हम किसी भी लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे और उसके प्रति हमारी तैयारी अच्छी होगी। तैयारी और आपकी मेहनत ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। खुद से हमें कहना होगा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन वो श्रेष्ठता हमारी मेहनत पर डिपेंड करती है। इसीलिए हम मेहनत करते रहते हैं और एक डर जो हमारे मन में भीतर बैठा होता है उस डर को दूर करते हुए सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। इसीलिए हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि डर हमेशा नकारात्मक नहीं होता है, वो हमें नॉक करता है, हमें बताता है कि हमें कहाँ मेहनत करनी है। तो ये था आज का चिंतन।

श्रोता सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 107 MHz पर। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:15 हुए हैं। अब समय है वंदना के लिए।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय सुबह के 6:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार

सभी श्रोताओं का स्वागत है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत बहार में। गीत बहार की पहली प्रस्तुति आप सुन रहे हैं यशुदास की आवाज में चित चोर फिल्म से।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार अभी ही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रही हैं। समय 7:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस कान उत्तरकांड से संकलित एपिसोड संख्या 390। आज आप सुनेंगे, कलाकार हैं सुरेश वाडकर, संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।

जिसमें उन्होंने जन्म नहीं पाया। अपने अनेक जन्मों में उन्होंने योग, जप, तप, दान, पुण्य सभी कुछ किया। कलयुग में उनका जन्म अयोध्या के एक शूद्र कुल में हुआ। उस जन्म में वे मन, वचन और कर्म से भगवान शिव के आराधक थे। शिव भक्त होने का उन्हें मात्र अभिमान ही नहीं था, बल्कि

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चेत मानस गान। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार शुरू में। आज के कार्यक्रम में मैं बनी रहूंगी आपकी रेडियो साथी अंकिता, प्यारे प्यारे गीतों और बहुत सारी चर्चाओं और योजनाओं की जानकारी के साथ। तो आप भी बने रहें कार्यक्रम नमस्कार शुरू में।

श्रोताओं, हम अक्सर उन चीजों को भूल जाते हैं, उन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं जो हमारे आसपास हो। हम हमेशा जीवन में सफलता, खुशियों को तलाशते रहते हैं, ऐसी खुशियां जो हमें आनंदित करें, और उस आनंद को देने वाली खुशियों में हम पैसों के पीछे भी भागते हैं, जॉब के पीछे भी भागते हैं, और भी बहुत से हमारे जीवन में ऐसे लक्ष्य हैं जिनको पूरा करने के लिए हम उनके पीछे भागते हैं, लेकिन हम जीवन के असली आनंद को भूल जाते हैं। ये सब प्राप्त करने के बाद हमें एक खालीपन फिर भी महसूस होगा, और वो खालीपन होगा जीवन का असली आनंद ना मिलना। और जीवन का असली आनंद सच्चे रिश्तों में होता है। हम चाहे कितना भी अपने आप को आगे ले जाएं, तरक्की करें, सफलताओं को प्राप्त करें, नाम कमाएं, कितना भी कुछ भी करें, लेकिन हमारे जो रिश्ते हैं वो हमें असली आनंद दे सकते हैं। जीवन का असली आनंद सच्चे रिश्तों, प्रेम और आपसी समझ में ही निहित है, न कि केवल दौलत या भौतिक सुख सुविधाओं में। अगर हमें मानसिक शांति चाहिए तो हम जब अपने परिवार और सच्चे दोस्तों के साथ होते हैं तो एक अद्भुत सुरक्षा और शांति की अनुभूति हमें होती है। वो कभी भी पैसों में नहीं हो सकती, ना ही उससे खरीदी जा सकती है। जीवन की चुनौतियों और कठिन समय में सच्चे रिश्ते ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं और आपको आगे बढ़ने में हौसला देते हैं। हम जब पहुंच जाते हैं सफलता के उस शिखर पर, तब हमें लगता है कि ये सफलता सिर्फ और सिर्फ हमारा परिणाम है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये परिणाम बहुत सारे लोगों का होता है, उस माँ का जिसने आपको, जब आप उस सफलता के लिए दौड़ रहे थे तो उस दौड़ में कभी हारने नहीं दिया। आपको किस प्रकार से आपको ऊर्जा चाहिए, किस ऊर्जा को कब देना है, वो एक माँ को पता होता है। इसी प्रकार पिता का रोल भी बहुत अहम है। परिवार के अन्य सदस्य भी जो हमारे सच्चे आनंद को देने वाले और सच्चे हमारे मित्र की तरह हमारे साथ खड़े होते हैं, उन सभी का योगदान होता है। हमें इन बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। निस्वार्थ भाव से दिए गए प्रेम और समर्थन से जो आंतरिक खुशी मिलती है वो स्थायी होती है। श्रोताओं, रिश्ते हम दो प्रकार के प्राप्त करते हैं। एक वो जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, कुछ रिश्ते हम स्वयं बनाते हैं। जब हम स्वयं रिश्तों को बनाते हैं, उन रिश्तों में हमें कुछ लोग स्वार्थी मिलते हैं और कुछ अपनापन रखने वाले, तो हमें उन्हें पहचानना चाहिए। जीवन का असली आनंद सच्चे रिश्तों में है, और इन सच्चे रिश्तों को अगर हम खो देते हैं तो हम सच्चे आनंद को भी खो देते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में हमेशा इन सच्चे रिश्तों को आनंद की अनुभूति के लिए भी, और साथ में इनको भी हम आनंद दें, इस प्रकार से जीवन को

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

0: सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा।
2: अंतराल के बाद श्रोताओं कार्यक्रम नमस्कार शुरू में आपका फिर से स्वागत है। अब आपको जानकारी देते हैं आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में। श्रोताओं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। ये कवरेज परिवार के आकार, उम्र या सदस्यों की संख्या पर निर्भर नहीं करता। इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले ये खर्चे, पहले के खर्चे, जांच दवाइयां आदि और भर्ती रहने का और इलाज के बाद का खर्चा भी शामिल है। सरकारी और योजना से जुड़े प्राइवेट अस्पतालों में किसी भी तरह का नगद भुगतान करना नहीं पड़ता है। इस योजना का लाभ सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा और वंचित परिवारों, गरीबी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए को दिया जा रहा है। इसमें मुख्यतः वे परिवार शामिल है जो बेघर है, दिहाड़ी मजदूर है या जिनके पास पक्का मकान नहीं है। योजना के तहत गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग आदि जो है, इनसे सहित और भी जो बीमारियां, कई तरह के चिकित्सा प्रक्रियाएं कवर की जा रही है। आप अपनी पात्रता चेक करने और नजदीकी अस्पताल या केंद्र खोजने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मदद ले सकते हैं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: धन गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में।
2: श्रोताओं, अंतराल के बाद कार्यक्रम नमस्कार शुरू में आप बात करते हैं। जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। हम अक्सर सब कुछ बहुत जल्दी करना चाहते हैं, बहुत कुछ बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी सफल होना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी होती है। हम अपने जीवन के हमारे जो अनुभव है उन्हीं से भी सीख सकते हैं कि जीवन के अनुभव हमें हमारे बुजुर्ग कितना कुछ बताते रहते हैं कि ऐसा ना करो, वैसा ना करो, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। हमने जीवन का अनुभव लिया है, हम नहीं मानते हैं, हम उसे करते हैं और उसके बाद हम सीखते हैं। यानी हमने पहले इसके पीछे मेहनत जो थी उसे की है, उसके बाद सीखा है। तो प्रकृति का ये नियम हमें बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। मेहनत करने से जीत नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प होता ही नहीं है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार चोरू। ये आकाशवाणी का चोरू केंद्र है, FM 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय दिन के 8 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात 8:15 पर। श्रोता सुनेंगे

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
2: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गयी।
3: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहाँ से आए हैं वहाँ वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
4: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
2: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में

0: बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है।

0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिव कुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Center's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said the committee, headed by retired Supreme Court Judge जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाउ लेकर वुड सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन अ ईयर।
3: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना,
4: रिमूविंग इनफिल्ट्रेटर्स फ्रॉम द कंट्री इज अ कमिटमेंट ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड फॉर दिस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिसाइडेड टू फॉर्म अ डेमोग्राफिक चेंज कमेटी। दिस हाई पावर्ड कमेटी विल एग्जामिन द रीजन बिहाइंड द डेमोग्राफिक चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस अक्रॉस द कंट्री एंड लुक इनटू द पॉसिबल सॉल्यूशंस। इट विल आल्सो कंसीडर वेयर देयर इज अ नीड टू ब्रिंग एनी न्यू लॉ रिगार्डिंग दिस इशू।
3: बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करें।
2: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant and sensitive Harami Nala and Creek areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by the Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The Home Minister will inaugurate Border Outpost G7 and interact with BSF personnel. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Doval said responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action.
5: Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security, and he felt that this is something for which all international security experts must address this threat. It is an antithesis of everything that humanity stands for. India has been a victim of state-sponsored terrorism.
2: In a social media post, the Indian Embassy in Moscow said Mr. Doval participated in the first International Security Forum and the 14th meeting of High Representatives for Security Matters in Moscow. On the sidelines of the forum, Mr. Doval held a meeting with his Russian counterpart, Shoigu. During the meeting, the parties reviewed the current state of cooperation in the areas of defense, security, energy and trade economic ties. The BJP has appointed new party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. BJP National President Nitin Naveen appointed East Delhi MP and Union Minister Harsh Malhotra as the party's Delhi Unit President. Dr. Archana Gupta has been appointed as Haryana BJP Chief and Keval Singh Dhillon will be the new President of Punjab BJP. Abhishek Debroy has been appointed as Tripura BJP President. With the appointments, Mr. Naveen has begun the process of selecting a new team of office bearers in states as well as the national level. In Kerala, Governor Rajendra Vishwanath Arlekar will address the Legislative Assembly today. This is the first policy address of the new UDF government in Kerala after 10 years. Following the governor's address today, the House will adjourn and reconvene on June the 1st for discussion on the motion of thanks to the governor's address. Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said their dedication to the tribal community is truly commendable. He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake a three-day visit to Karnataka, Goa and Kerala beginning today. The Vice President will attend the global celebration marking 45 years of the Art of Living Foundation in Bengaluru, Karnataka today. Later in the day, he will attend the Platinum Jubilee celebrations of University BDT College of Engineering at Davanagere, Karnataka. In Punjab, the counting of votes for the 102 civic bodies has started. The fate of 754 candidates from 1,897 wards will be decided today. Voting was held on May the 26th. These civic polls are being seen as a litmus test for all the major political parties in the state ahead of the upcoming Punjab Assembly elections in 2027. In this multi-cornered contest, the ruling Aam Aadmi Party AAP, International Congress, Shiromani Akali Dal SAD and Bharatiya Janata Party BJP have fielded their candidates. The National Testing Agency NTA has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test undergraduate CUET UG 2026 examinations for admission to programs across

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।

श्रोता भी सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमेर चैनल से बोल रहे हैं। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के चार जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी रद्द करने के मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा। राज्य सरकार ईंधन खपत में कमी लाने के उद्देश्य से ई वाहन खरीदेगी। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां, अलवर और झुंझुनू में ओले गिरे। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और दूसरे कारणों से होने वाले आबादी बदलाव की जांच के लिए बनाई गई समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए विभिन्न कानूनी आवश्यकताओं का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: श्री शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की भी समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि अहमदाबाद साल 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित की जा रही है। वहीं 2036 के ओलंपिक

0: ओलंपिक के लिए आधिकारिक बोली भी पेश की जा चुकी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में नहीं रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान महिलाओं के नाम पर और संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की 93 खनन लीज रद्द करने के मामले में राज्य सरकार को एसएलपी पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जनवरी 2026 में भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर और अजमेर जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में रखी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खनन लीज और एलओआई धारकों को खनन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए बजट घोषणा की क्रियान्विति में 676 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जारी इस मंजूरी के तहत 686 किलोमीटर से अधिक लंबाई सड़कों का निर्माण और विकास कार्य किया जाएगा। इसमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, नागौर और पाली सहित 33 से अधिक जिले लाभान्वित होंगे। इन जिलों में 77 सड़कों का निर्माण और मरम्मत का काम किया जाएगा। इससे दूरदराज के गांव तक भी बेहतर संपर्क सुविधा मिल सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल के उपयोग में कमी लाने के लिए अब ई वाहन खरीदेगी। प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री और पाली जिला प्रभारी झाबर सिंह खर्रा ने कल मीडिया से बातचीत में कहा कि पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर ईंधन बचत के लिए ये पहल की जा रही है।
2: एक सप्ताह में अगर ये परिस्थितियां सामान्य हो जाए, पेट्रोल कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ और गैस की उत्पादन बढ़े, आपूर्ति बढ़े, बाजार में कीमतों में कमी आएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो फिर भारत में भी पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में निश्चित रूप से कमी होगी। राज्य सरकार ने भी अब यह तय कर लिया है कि आज के बाद किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी वाहन की खरीद होगी तो ईवी वाहन ही खरीदेंगे, ताकि पेट्रोल डीजल की कीमत को न्यूनतम से न्यूनतम किया।
0: राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ने जयपुर के बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के पहले कुलगुरु और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलगुरु प्रोफेसर देव स्वरूप को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार के परामर्श से ये आदेश जारी किए गए हैं। उन पर नियुक्तियों में भारी गड़बड़ियां करने और विश्वविद्यालय नियमों को दरकिनार करने का आरोप था। मशहूर शायर बशीर बद्र को कल भोपाल में सुपुर्दे खाक किया गया। लंबी बीमारी के बाद 91 वर्ष की उम्र में कल भोपाल में उनका निधन हो गया था। डॉक्टर बद्र की शायरी ने जिंदगी और तमाम एहसासात के कई रंग देखने को मिलते हैं। उनकी गजलों ने देश दुनिया में लोगों के दिलों को छुआ। उर्दू गजल को आम आदमी तक पहुँचाने और मकबूल करने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
3: धूप के पार सितारों का नगर लगता है उस पहाड़ी को।

0: जान का डर लगता है।
1: चांद महराब पे सोई हुई ये कहत है, बेबहू आंखें हैं पड़ते हुए डर लगता है।
2: प्रदेश में प्रचंड गर्मी और तेज धूप तथा गर्म हवाओं से लोग बेहाल हो रहे हैं। प्रदेश के 6 शहरों में कल पारा 46 डिग्री से ऊपर मापा गया, वहीं 11 स्थानों पर 44 डिग्री के पार दर्ज हुआ। 47.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। करौली, दौसा, चूरू, जयपुर, श्रीगंगानगर और बीकानेर सहित कई स्थानों पर रातें भी काफी गर्म रही। राजधानी जयपुर में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई और पारा 45.4 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। वहीं न्यूनतम तापमान 32.8 डिग्री रहा, जिससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल सकी। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अलवर में देर रात कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, वहीं कहीं कहीं ओले भी गिरे। झुंझुनू और हनुमानगढ़ में कई स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई। भरतपुर में भी तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बारिश से होने से राहत मिली है। हालांकि कई स्थानों पर पेड़ गिर गए और बिजली के पोल भी धराशायी हुए। धौलपुर में कल देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर अब तक रुक रुक कर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि तापमान में काफी गिरावट आई है और मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अंधड़ के साथ हल्की बरसात होने के आसार जताए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से सामना करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के 4 जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी रद्द करने के मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा। राज्य सरकार ईंधन खपत में कमी लाने के उद्देश्य से ई वाहन खरीदेगी। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां, अलवर और झुंझुनू में ओले गिरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। प्रस्तुत है देशकाल।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान। ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम धरा की पुकार। कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता, विषय है जल संरक्षण का महत्व।
1: जल संकट आज न केवल भारत के लिए अपितु संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। संपूर्ण पृथ्वी पर उपलब्ध जल में से 97% सागरों और महासागरों में है, जो खारा है, जो पीने के काम नहीं आ सकता। ऐसे में देखा जाए तो कुल उपलब्ध जल में से केवल

पीने योग्य है, जिसमें से भी 2.4% पानी ग्लेशियरों उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों पर वर्ष भर बर्फ के रूप में जमा रहता है और केवल 0.6% पानी नदियों, झीलों और जलाशयों में है जिसे पीने के काम लिया जा सकता है। मनुष्य सहित पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं एवं वनस्पति का जीवन जल पर ही निर्भर है। जल का कोई विकल्प नहीं है, यह प्रकृति से प्राप्त एक अनमोल व निःशुल्क उपहार है। परंतु वर्तमान में बढ़ती आबादी, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन और उपलब्ध संसाधनों के प्रति लापरवाही ने संपूर्ण मानव जाति के समक्ष एक बहुत बड़ा जल संकट खड़ा कर दिया है। यह 21वीं सदी में न केवल भारत, संपूर्ण विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिससे सबको मिलकर निपटना बहुत जरूरी हो गया है। वर्तमान में जल का मूल्य बदल चुका है। आज जल एक महत्वपूर्ण व मूल्यवान वस्तु बन चुकी है। आज पीने योग्य जल भी कई कारणों से विषाक्त होता जा रहा है, जो संपूर्ण मानव जाति और जीव जगत के लिए एक अभिशाप साबित हो रहा है। आज शुद्ध जल जहां एक ओर अमृत की तरह है, वहीं दूषित जल जहर बनकर कई तरह की बीमारियों का कारण बन रहा है। ऐसे में पृथ्वी पर उपलब्ध जल संसाधनों के संरक्षण और

लिए जल का संरक्षण करना बहुत जरूरी हो गया है। आज जल संरक्षण करना इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यह न केवल पर्यावरण अपितु संपूर्ण मानव जाति की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। आसान भाषा में जल संरक्षण का अर्थ है जल का बुद्धिमानी से उपयोग करना और जल संरक्षण के प्रति जिम्मेदार होना, या यूं कहें जल को प्रदूषण मुक्त रखना और इसका समुचित उपयोग व प्रबंधन करना ही जल संरक्षण कहलाता है। आज बढ़ रहे जल संकट को देखते हुए अगर अभी भी हम जल संरक्षण के प्रति जागरूक नहीं हुए तो निकट भविष्य में यह भावी पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन जाएगा। जल संरक्षण के लिए रणनीतियों का उपयोग आवश्यक है, जिनमें जल के अपव्यय को कम करना, जल की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाने से रोकना और जल प्रबंधन में सुधार करना इत्यादि उपाय शामिल हैं। इसके लिए हमें अपने आसपास मौजूद पानी को बचाना होगा ताकि आने वाले वर्षों के लिए जल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो सके और भावी संकट से बचा जा सके। जल संकट के लिए जिम्मेदार कारण: आज जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, औसत वर्षा में गिरावट, प्रति व्यक्ति जल खपत में वृद्धि, भू जल स्तर में गिरावट, जल का आवश्यकता से अधिक दोहन, लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का अभाव, खारे पानी की समस्या, नई बस्तियों की बसावट, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, तीव्र औद्योगिकरण एवं जल संसाधनों में बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से सबके लिए बहुत बड़ा जल संकट खड़ा होता जा रहा है, जिससे निपटने का एकमात्र विकल्प जल संरक्षण ही है। जल संरक्षण के लिए क्या करना जरूरी है? आमजन की भागीदारी, भूगर्भीय जल भंडारण को रिचार्ज करने के अलावा घरों की छतों से बरसाती पानी को सीधे टैंक में जमा किया जा सकता है। बड़े संसाधनों के परिसर की दीवार के पास बड़ी नालियां बनाकर पानी को एकत्रित किया जा सकता है। इसी प्रकार कुओं में भी पाइप के माध्यम से बरसाती पानी को जमा किया जा सकता है। वहीं बरसाती पानी को एक गड्ढे के जरिए भी सीधे धरती के भूगर्भीय जल भंडारण में उतारा जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहन

जल का कम से कम दुरुपयोग करके जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। अपने आसपास उपलब्ध जल संसाधनों, नदियों, झीलों एवं जलाशयों इत्यादि के पानी को शुद्ध बनाए रखने एवं इनके जल को प्रदूषित होने से रोकने के प्रति जागरूक होना जरूरी है। कृषि कार्यों में भी ड्रिप सिंचाई जैसी युक्तियों का उपयोग करके जल संरक्षण एवं प्रबंधन

जाए और बहकर जाने वाली मिट्टी को भी अन्यत्र जाने से रोका जा सके। वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए अनिवार्य रूप से ग्रामीण और शहरी मकानों की छतों पर वाटर टैंक लगाए जाने चाहिए, ताकि इस जल का उपयोग अन्य घरेलू जरूरतों में भी किया जा सके। सरकारें क्या करें? सरकारें और संबंधित जल संरक्षण विभाग अत्यधिक जल दोहन रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए, जिनमें जल के दुरुपयोग पर सजा का भी प्रावधान हो। वहीं जल संरक्षण के लिए दैनिक उपयोग सहित कृषि में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके जल संरक्षण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। समुद्री जल का शोधन कर कृषि कार्यों में भी उपयोग किया जा सके, ऐसी विधियों की खोज की जानी चाहिए। कोई ऐसी योजना या नीति बनाई जाए जिसके तहत सागरों

में पढ़ाया जाए ताकि बचपन से ही बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा हो सके। सहभागिता से क्या करें, नदियों में कम से कम मल मूत्र

सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि नदियों का जल साफ सुथरा बना रहे। अपने आसपास के क्षेत्र में अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जाए ताकि ये पेड़ पर्यावरण संरक्षण के साथ अधिकाधिक वर्षा करने में सहायक हो सकें। जल को व्यर्थ में बर्बाद न करें और न ही प्रदूषित करें। भूमिगत जल का उपयोग समय तथा उपलब्धता के आधार पर ही किया जाना चाहिए ताकि आवश्यकता के समय इसका उपयोग किया जा सके। भवनों, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी भवनों में जल संरक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए। जल संरक्षण के लिए जल का उचित संचय आवश्यक है। जल का उचित संवहन तथा स्थानांतरण भी जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय विकास में जल की महत्ता देखते हुए जल संरक्षण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए हमें निम्नलिखित आसान उपायों को करने के लिए विशेष जन जागरण अभियान चलाकर जल संरक्षण सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जन सहभागिता से जल की बचत बड़े प्रभावी ढंग से की जा सकती है। उपरोक्त जल संरक्षण के उपायों से कुछ सीमा तक जल संकट की भावी समस्या का निवारण किया जा सकता है। हालांकि जल संरक्षण के लिए ये सभी उपाय सरकार और जन भागीदारी से ही संभव हो सकते हैं। निसंदेह उपयुक्त उपायों पर अमल करने से जल संरक्षण अभियान को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और जल संकट से निपटने में ये एक सकारात्मक पहल होगी। अतः समाज के हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर व सामर्थ्य के अनुसार जल संरक्षण अभियान में सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार जल संरक्षण में पूरे समाज को अपनी ओर से नई पहल करनी चाहिए। केवल सरकारी सहायता पर निर्भर न होकर पूरा समाज इस अभियान से जुड़े तथा परंपरागत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करे। वर्तमान जल संकट को देखते हुए देश विदेश में हर मंच पर जल संरक्षण की चर्चा होने लगी है। विभिन्न सरकारों द्वारा इसके लिए योजनाबद्ध ढंग से काम भी किए जा रहे हैं। वे हमें निम्न

0: आसान उपायों को करने के लिए विशेष जन जागरण अभियान चलाकर जल संरक्षण सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जन सहभागिता से जल की बचत बड़े प्रभावी ढंग से की जा सकती है। उपरोक्त जल संरक्षण के उपायों से कुछ सीमा तक जल संकट की भावी समस्या का निवारण किया जा सकता है। हालांकि जल संरक्षण के लिए ये सभी उपाय सरकार और जन भागीदारी से ही संभव हो सकते हैं। निसंदेह उपयुक्त उपायों पर अमल करने से जल संरक्षण अभियान को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और जल संकट से निपटने में ये एक सकारात्मक पहल होगी। अतः समाज के हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर व सामर्थ्य के अनुसार जल संरक्षण अभियान में सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार जल संरक्षण में पूरे समाज को अपनी ओर से नई पहल करनी चाहिए। केवल सरकारी सहायता पर निर्भर न होकर पूरा समाज इस अभियान से जुड़े तथा परंपरागत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करे। वर्तमान जल संकट को देखते हुए देश विदेश में हर मंच पर जल संरक्षण की चर्चा होने लगी है। विभिन्न सरकारों द्वारा इसके लिए योजनाबद्ध ढंग से काम भी किए जा रहे हैं, परंतु यह एक विश्वव्यापी समस्या है, एक सामाजिक संकट है। इसका समाधान शीघ्र अतिशीघ्र करने की आवश्यकता है। इस कार्य को एक सामाजिक अभियान बनाने का समय आ चुका है। इसमें जन जन का सहयोग अपेक्षित है। जल संकट की समस्या के समाधान के लिए जल संरक्षण ही एकमात्र विकल्प रह जाता है, जिससे जल की उपलब्धता की निरंतरता को सुनिश्चित किया जा सकता है। किसी ने ठीक ही कहा है, जल संरक्षण कीजिए जल जीवन का आधार। जल संरक्षण कीजिए जल जीवन का आधार, जल से ही जीवन है संभव, जल बिन सब बेकार, जल बिन सब बेकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरा की पुकार में वार्ता, जल संरक्षण का महत्व। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। समय 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद।

सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने ईमेल्स पर आधारित फिल्म संगीत के फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद में। आपके ईमेल्स के साथ, आपकी पसंद के गीतों के साथ मैं हूं आपकी रेडियो साथी अंकिता आशी कार्यक्रम में आपके साथ। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आपने सुना। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे साथी रहे मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज नवेद हसन, रसीद सुहेल, अनम यशव अब्बासी, सिकंदरा से मुबीन अब्बासी, इशरता परवीन, सीतामंडी वार्ड नंबर 28 से अकरम हुसैन प्रिंस, इशरत वसीम, रुबीना आरिज, नदीम शमीम, ममता पूनम, बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निखत परवीन, पटेल नगर मलोट से इसी गीत को पसंद किया है रमेश कुमार जाजोरिया ने, गीता रानी, गगनदीप आरजू गुड्डू ने, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता तुषार और रिंकी ने, एजर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा ने, इन सब ने इस प्यारे से गीत को पसंद किया था। अब अगली फरमाइश हमें मिली है मेरी जंग फिल्म के गीत के लिए। किन किन दोस्तों ने पसंद किया है इस गीत को बाद में बताएंगे, पहले सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सुगंध, क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
1: चल अपना कार्ड दे।
3: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या?

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अंतराल के बाद श्रोताओं आपको बताते हैं, मेरी जंग फिल्म का जो गीत अभी आपने सुना, इस गीत को पसंद करने वाले हमारे साथी रहे दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक स्वाती, जमशेदपुर से रोहन आर्य जायसवाल, भिवानी भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कौरव, हर्ष आहूजा, डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबी है राधिका, अनिष्का तन्मय, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या हेमलता डिम्पल। इसी गीत को पसंद किया था मजनू काटिला से कमल बालूजा, मधुसागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक ने, रेडियो श्रोता संघ महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली प्राक्ता वैष्णवी, गायत्री यज्ञेश, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी, प्रेम पूजा दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा और आराध्या साहू ने। इसी गीत को पसंद किया था सहारनपुर से सैयद मसरूल, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम ने, पठनपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया सुबान, समीर सलमा, मुमताज, दिलशाद नसीर, पूरा इनका मुलानी परिवार, इन सब ने पसंद किया था अभी जो आपने मेरी जंग फिल्म का गीत सुना था उसे। और अब सुनते हैं हमारे दोस्तों की अगली पसंद। रोटी कपड़ा और मकान, इस फिल्म के गीत को पसंद किया है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह ने, भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा, पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राशि शीतल, सिद्धेश्वर नगर से पंजाब रामटेके, यशोधर श्राव्या रामटेके, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस महानकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष, नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता प्रियंका प्रशांत, प्रियम वानिका वाणी, इन सब ने पसंद किया है रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी।

0: three of us.
1: Hey girls!
2: Hi, congratulations!
1: आज तो पार्टी चाहिए.
3: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे.
4: Idea. यहीं करते हैं पार्टी.
1: Pizza party.
3: Yeah.
1: चल अपना कार्ड और पिन दे.
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी. RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें. ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें.
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग.
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
6: श्रोताओं, अंतराल के बाद कार्यक्रम आपकी पसंद में आपका फिर से स्वागत है. आपकी अंतिम प्रस्तुति यानी आपके द्वारा पसंद की गई जो अंतिम प्रस्तुति है वो पूरब और पश्चिम फिल्म के गीत के लिए है. किन किन साथियों ने पसंद किया है आपको अभी बताते हैं. उससे पहले हम आपको बताएं कि अगर आप भी हमारे FM चूरू से सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें मेल जरूर भेजें कार्यक्रम आपकी पसंद में. पूरब और पश्चिम फिल्म के गीत को पसंद किया है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव, संजय संदीप, अनिल दर्शन भाई ने. यूपी से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक आर्यन. मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी आर्यन, कृष्णा पीहू ने. दुलापुर यूपी से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसरा नरगिस. कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह चौड़ा. पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू राजेंद्र सिंह ओबेरॉय. छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद नंदनी, प्रकाश देवांगन, गायत्री यशवर्धन, यशस्वी ने. पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीतू, लक्ष्य, कोयल, नानक चंद. रोहतक से पीयूष कोयल, डुग्गू, भाविका. सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, प्रतीक, ऋतिक, अनिल, जयवीर और अमनदीप. इसी गीत को पसंद किया है और भी हमारे साथी हैं. यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह ने. और भी हमारे साथी हैं जिन्होंने पूरब और पश्चिम फिल्म के गीत को पसंद किया है. गीत के बोल हैं, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे. पसंद करने वाले हमारे साथी हैं माल्यान सरदना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम, मुस्कान, जीवमय जैन. बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद गुड़िया, भाव्या, निवेश, नियति कुमारी, इन सब ने पसंद किया है पूरब और पश्चिम फिल्म का ये प्यारा सा गीत.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम एक ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम है जहां आप अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद करते हैं, हमसे बातचीत करना पसंद करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने संदेश दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। क्यों, है ना? तो आज इस हेलो फरमाइश में ऐसी ही हल्की फुल्की बातें हमने की हैं हमारे श्रोताओं से। तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, हमारा नाम नरेंद्र कुमार पटेल है, हम बजहा गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: हाँ नरेंद्र जी, स्वागत है आपका।
1: जी, हम विविध भारती जो है सन 2000 सुन रहे हैं, कक्षा 2 में थे तब से।
0: अरे वाह, क्या बात है, कक्षा 2 में थे तब से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
1: जी, हमारे घर में ऐसा संस्कार था कि रेडियो हमारे चाचा लोग सुनते थे, जब हम लोग बैठते थे, खड़े खड़े चलते थे, परे परे चलते थे, तब से रेडियो सुनते थे, तो उसी माहौल में थे इसलिए सुनने लगे। खाना पीना बनता था, सभी लोग कंबाइंड परिवार था, खाते थे और उधर टहलते थे, वहीं खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता था।
0: तो आज तक सुनते हैं आप रेडियो?
1: जी जी, अब रेडियो तो नहीं रह गया, अब मोबाइल ऐप से सुनते हैं, हमेशा सारा दिन सुनते रहते हैं।
0: कैसा लगता जी, है जी। उस समय आप जब कक्षा 2 में सुनते थे या थोड़े बड़े हुए?
1: वो तब भी हम जो क्लास वर्क होता था शाम की करते थे, रेडियो चलता रहता था, अपना फेयर पूरा करते रहते थे, फिर खेत में टहलने जाते थे, गाँव के अगल बगल पूरा हमारे चरी लगे हुए, भिंडी उर्दी, इतने समय गेहूँ कट गया है, बढ़िया हरियाली चारों तरफ है।
0: तो अब आप हरियाली के बीच में बैठकर रेडियो सुनते हैं मोबाइल ऐप के जरिए?
1: जी जी, वो रेडियो हम लेकर मेड़ों पर टहलते थे शाम समय, जो गाय भैंस चराया करते थे स्कूल से आने के बाद, तो बड़ा अच्छा लगता था, पूरा कार्यक्रम जितना चलता है बताते, शुरू से सुबह से लेकर हम 11 बजे रात तक का आपको बता सकते हैं।
0: तो हमारी पक्की लिसनर हैं आप।
1: यही जान लीजिए, हम इस समय 36 साल के हैं, मान लीजिए हम 6 साल जब से, यानी हम बहुत संभाल हैं, तब से सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, और हमें हमारे

0: सभी श्रोताओं पर फख्र है जो इतनी शिद्दत के साथ कार्यक्रम सुनते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं। तो बताइए नरेंद्र जी, वैसे आप क्या करते हैं, खेत में काम करते हैं?
1: पढ़े लिखे हैं लेकिन अब इतने डेली बेस मजदूरी काम करते हैं, काम करने जाते हैं तो इसमें गर्मी का टाइम है, सुबह 6 बजे जाते हैं, 10 बजे चले आते हैं, फिर 3 बजे 6 बजे तक उस टाइम हमारा जो है मोबाइल ऐप से विविध भारती हमेशा बचता रहता है, सुनते रहते हैं। अभी दोपहर में हम लगाने लगे।
0: काम कहाँ करते हैं?
1: गाँव में अगल बगल में जो घर पक्के मकान बनते हैं उसी में।
0: बहुत अच्छा लगा नरेंद्र जी आपसे बात करके। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: जी हमें जो है थानेदार पिक्चर का एक गाना है, जीना है तो हंस के जीवन में एक पल भी रोना ना।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मंदा किनी जी।
0: नमस्कार
1: मैडम। खांजीपीर से जब्बार मोहम्मद।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ये मैडम खांजीपीर उदयपुर से झीलों की नगरी है, उदयपुर वहाँ से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। कैसे हैं आप बताइए, उदयपुर के बारे में बताइए। अभी गर्मी के मौसम में उदयपुर का क्या हाल है?
1: तो मैडम क्या कह रहे हैं, उदयपुर तो वैसे बहुत अच्छी नगरी है, झीलों की नगरी है
0: जी।
1: अभी 40 और 45 डिग्री के आसपास गर्मी है उदयपुर में।
0: अच्छा, गर्मी इतनी पड़ रही है
1: जी मैडम। गर्मी

0: झीलें हैं, चारों तरफ झीलें फैली हुई है और हरियाली बहुत है, तो इससे कुछ गर्मी का असर कम रहता है
1: जी।
0: और काफी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ, कई अच्छी जगह देखने लायक जगह है, यहाँ झीलें हैं काफी, क्या कह रहे धार्मिक नगरी भी, कई दर्शनीय स्थल है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जगदीश जी का मंदिर है और दो दरगाहें भी देखने लायक है यहाँ, मस्तान बाबा की दरगाह फतेह सागर के आसपास और एक अम्बावगढ़ पे भी एक गन शहीदा की दरगाह है, पहाड़ी पे काफी अच्छी दरगाह है, काफी जायरीन वगैरह आते हैं। उदयपुर से कुछ दूर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत फेमस है, यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं और झीलें भी अच्छी है
1: जी। आपने उदयपुर की सारी दुनिया हमारे सामने साकार कर दी है कि टूरिस्ट जब आते हैं तो किन किन चीजों को देखकर जाते हैं। तो मुझे बताइए कि बकरीद का जो त्योहार है वो असल संदेश उसका त्याग है, आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा अपनों की खुशी के लिए त्याग किया?
0: मैडम त्याग तो ये है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, करते हैं क्या
1: जी।
0: बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है और मैं फिल्म मर्यादा का गीत सुनना चाहता हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मोहम्मद रफी साहब का है, मोहब्बत के सुहाने दिन।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत चुना है आपने, चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: जी मैम, मैं कृष्ण कुमार डाबी बोल रहा हूँ, गांव टोंकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से।
0: अरे वाह,
1: तीसरी बार बात हो रही है।
0: क्या बात है।
1: नियमित सुनते हैं बस आपके प्रोग्रामों को, अभी मनसा गीत शुरू हुआ उसको भी मैं नियमित सुनता रहता हूँ।
0: हाँ हाँ।
1: और अभी दो दिन पहले ही आपकी प्रस्तुति को सुना हूँ मैं।
0: जी क्या बात है। तो सुरीला सफर के लिए आप लिखते हैं कि नहीं लिखते फेसबुक पेज पर?
1: हाँ लिखता हूँ मैम, पर क्या कि दिन को एक बजे जो प्रोग्राम आता है उस समय क्या थोड़ा काम में बिजी होता हूँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कमेंट कम कर पाता हूँ। बाकी जब भी पोस्ट देखता हूँ तो उसके बारे में प्रोग्राम सुनता हूँ तो लिखता जरूर हूँ।
0: लिखा कीजिए ताकि हमें क्या उन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है और श्रोताओं के विचार।
1: और पत्र भी भेजे हैं विविध भारती के स्टूडियो में।
0: अच्छा,
1: धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा वैसे भेजते रहेंगे तो शामिल होते रहेंगे।
0: जी मनचाहे गीत के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा हर कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बहुत अच्छा।
0: जी बताइए थोड़ा मौसम के बारे में कि बालोतरा में कितनी गर्मी हो रही है।
1: बताइए कि मरुस्थली इलाका है तो इन दिनों तो गर्मियों के दिनों में मौसम कैसा होगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और तेज आंधी और गर्म लू से भरी हवाएं चल रही है, बस वही मौसम है रेगिस्तान में।
0: जी तो दिन भर जो गृहिणी है उनका वक्त तो घर की सफाई करने में निकल जाता होगा, क्योंकि जब हमारे
1: देखो
0: राजस्थान में जब आंधी तूफान आता है तो वो पूरा छप्पर फाड़ आता है। फिर
1: वही बात है कि सुबह जब घर की साफ सफाई होती है और शाम तक होते होते पूरा घर वापस जो रेत के कणों से और धूल से भर जाता है, क्या करें। सफाई तो करनी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर, क्या ये तो दिन को थोड़ी गर्मी तेज रहती है, बाहर इधर उधर निकलना नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है। और टेम्परेचर भी अभी अपने यहाँ इधर हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और ये सब बालोतरा साइड का कम से कम 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। बस वही बात है,
0: गजब चल रहा है और भयंकर गर्मी के, इसमें अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का और सब चीजों का।
1: और वैसे प्रोग्रामों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोग्राम इन दिनों आ रहे हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, और ये फोनिंग प्रोग्राम भी आ रहे हैं, आपने जो नए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उनका भी स्वागत है। और मैंने खास करके मैं छायांकित प्रोग्राम का बहुत सुबह और शाम को फिर ये वापस आता है 5 बजे रिपीट, तो मैं उसको सुनना जरूर पसंद करता हूँ क्योंकि मैं दो बार सुनता हूँ, कभी कभी नहीं सुन पाऊँ तो मिस हो जाता, तो फिर वापस यूट्यूब पे जाकर कहीं कहीं मिल जाता तो सुन लेता हूँ।
0: क्या बात है, इतना पसंद है आपको छायांकित।
1: छायांकित में दीदी आप जो ये प्रोग्राम अपनी भावनाओं जो व्यक्त करती हैं और उस हिसाब से गीत भी उसी अनुरूप होते हैं, तो वो क्या कि फिर थोड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं। और आपके समय जब प्रोग्राम आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
1: दीदी आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, उनका अपने जो संगीतकार जुड़ी थी उनका दिन है, तो उस उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के संगीतबद्ध किया एक गाना सुनना चाहूंगा। हम जोली फिल्म से आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना।
0: चलिए सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहे हूँ।
0: जी स्वागत है आपका हैदर साहब।
1: और क्या हाल चाल मैडम?
0: अच्छे हैं आप बताइए।
1: बस बढ़िया है, यहाँ भी मतलब अभी तो थोड़ी गर्मी का प्रकोप ज्यादा है एमपी में, तो लू बहुत चल रही है मैडम अभी फिलहाल। तो
0: जहाँ बात की जा रही है वहाँ पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा तापमान है, और अलग अलग जगहों पर पता चलता है कि किस तरह से लोग जो इस गर्मी में बेहाल हुए जा रहे हैं।
1: हाँ
0: तो बताइए हैदर साहब, अभी जो बकरीद है, बकरीद को किस तरह से मना रहे हैं आप, और क्या संदेश देना चाहते हैं बकरीद के मौके पर?
1: संदेश तो ये देना चाहते हैं मैडम के मतलब ये जो अपना भारतवर्ष, ये तो त्योहारों का देश है और सभी को मतलब अपने अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, तो शांति और मतलब स्वभाव से त्योहार मनाए।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप अपना त्योहार सुख और शांति के साथ मनाए, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप हमारे पुराने श्रोता हैं, क्या क्या सुनना पसंद करते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों में?
1: विविध भारती के प्रोग्राम तो मैडम जो अभी 90 साल पूरे हुए हैं, तो हम तो 1980 से आकाशवाणी प्रोग्राम है मैडम।
0: 1980 से सुन रहे हैं?
1: हाँ 1980 से ही सुन रहे हैं, वो रेडियो पे प्रोग्राम सुनते हैं ज्यादातर, तो अभी भी मेरे पास रेडियो ही है।
0: तो आप बताइए कौन सा गीत सुन रहे हैं आपको?
1: ये रांझा फिल्म का गीत है, रफी साहब की आवाज में, ये दुनिया में फिल्म मेरे काम की नहीं।
0: बहुत ही सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: कभी कभी खामोश रहकर भी नेक काम किए जा सकते हैं, मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए।
0: क्या बात है, क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, इंदौर से। कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा होना ही चाहिए
1: जी,
0: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं लगातार।
1: हाँ हाँ सुनते ना मैडम
0: जी। तो आप बताइए, बकरीद मनाएंगे आप
1: जी, जी, जी।
0: तो बकरीद का असली महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है आपकी नजरों में?
1: मैडम इसका ऐतिहासिक महत्व है कुर्बानी और आपस में मिलजुल के रहना और प्यार बांटना और दूसरों को भी खुशियाँ देना।
0: जी बहुत सही कहा आपने, और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम अपना हर त्योहार मनाते हैं। क्यों
1: जी
0: बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: हम सिलाई करते हैं मैडम।
0: अच्छा सिलाई करते हैं, घर पे या किसी दुकान में जाके?
1: नहीं बाहर गोडाउन पे जाके।
0: दिन भर सिलाई का काम होता है?
1: हाँ दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है।
0: रेडियो तो खैर आप लोगों की खुराक में शामिल है।
1: हाँ खुराक में ही
0: भाई, मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले ही कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते।
1: जी
0: तो क्या सिलते हैं आप?
1: मैडम हमारा घनी बेट का जूट का काम, बारदान, बारदान जिसमें अनाज भरा था, गेहूँ, दाल, उसको रिपेयर करते हैं हम कुएं और इससे।
0: अच्छा जूट के जो बैग हैं जिन्हें हम बोरा कहते हैं लोकल भाषा, उसको आप जूट के उससे सिलाई करते हैं?
1: जी, जी।
0: तो नए बनाते हैं या पुरानों को रिपेयर करते हैं?
1: मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है या चूहे काट देते हैं तो उसको रिपेयरिंग करते हैं हम।
0: तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या, क्योंकि वो तो सुतली जो होती है वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है? तयबंद लगाते समय ध्यान रखते हैं?
1: हाँ मैडम थोड़ा पक्की सिलाई करना पड़ती है और फिर बाद में तो फिर वैसे उठा पटक होती है, अनाज भराता है तो फिर वो फट जाते हैं, तो फिर हमारे पास डबल से आते हैं, फिर हम रिपेयरिंग करते हैं
0: इस तरह से उसको बना के रखते हैं ना, क्योंकि बोरी है वो फट भी जाती है कई जगह से, कट फट जाती है। अच्छा बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म का नाम है काला पत्थर और गाने के बोले एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
0: वाह क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी मैडम जी, हमारा पहली दफा कॉल लगा है विविध भारती में।
0: स्वागत है आपका फिर तो।
1: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कॉल अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नाम मैडम जी सरवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: बहुत बढ़िया मैडम जी, मालिक की दया है, बाकी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमींदार आदमी है।
0: बिल्कुल अच्छी बात है ये तो।
1: हाँ जी,
0: तो अभी क्या पैदावार हो रही है खेतों में? मौसम इतना गर्म है, आपके पंजाब में भी तो गर्मी हो रही होगी।
1: बिल्कुल जी, गर्म दिन बहुत चल रहे हैं, बाकी धान का बहुत बोआ है, वो अब 20 दिन के बाद में पटकर दोबारा लगाएंगे।
0: क्यों, मतलब इसको हटा देंगे?
1: अभी वो जैसे संगना बीजा हुआ है, संगना थोड़ी दूर में,
0: हाँ।
1: उसको फिर उखाड़ कर फुट फुट की खेती पर लगाएंगे दोबारा।
0: अच्छा, दोबारा लगेगा, तो इस दोबारा लगाने की प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है?
1: मेहनत तो है मैडम जी।
0: हाँ, और गर्मी के इस मौसम में क्या ख्याल रखना पड़ता है फिर?
1: मैडम जी, हम तो बागड़ी आदमी है, ये राबड़ी हमारे बनाते हैं,
0: बाजरी के आटे की।
1: हाँ, बाजरी का, मोठ का।
0: अच्छा, मोठ का भी।
1: हाँ, उसमें छाछ डालकर सुबह पीते हैं 10 बजे, शाम को दलिया बनाकर रख देते हैं, वो सुबह ठंडा होता है, वो छाछ दही के साथ में खाते हैं, ये गर्मी का बहुत बढ़िया उपाय है चाने के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है, तो रात को आप मोठ का दलिया बना देते हैं और उसको सुबह खाते हैं छाछ के साथ?
1: हाँ जी, हाँ जी, सवेरे ठंडा मिलेगा, हाँ। रात को वो बनकर तैयार हो जाता है।
0: क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट बनता होगा फिर तो, है ना?
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। वैसे खेत के अंदर मकान बना है, वहाँ थोड़ा सब्जी वगैरह लगा रखा है, कोई ककड़ी मिल जाती है, कभी खरबूजा मिल जाता है, कभी कोई तर वगैरह हरी मिर्ची मिल जाती है, वो बहुत बढ़िया है।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा, बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रकृति के बीच में और शुद्ध खाना खा रहे हैं अपने ही खेत का।
1: हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल
0: जी। चलिए, तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: मैडम जी, रवार की फिल्म से सुना देना है मेरे साथ यह गीत, तू कोई गा, लता और मोहम्मद अजीज की आवाज।
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से विविध भारती का नियमित श्रोता मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका राम नरेश जी।
1: जी जी, और हम विविध भारती को बहुत पसंद करते हैं, इससे आने वाले प्रोग्राम चाहे हेलो फरमाइश हो, सेलोलाइट के सितारे हो, आज की फनकार हो या नया प्रोग्राम शुरू किया गया है मन चाहे गीत। हम विविध भारती से सन 2000 से जुड़े हुए हैं, जब सुबह 9:15 पर वो हंगामा प्रोग्राम आया करता था।
0: तो 26 साल हो गए आपको इस कार्यक्रम से, इस सभा से जुड़े हुए विविध भारती से।
1: जी, विविध भारती से जुड़े हुए और कई दौर देखे हैं, देखा जाए तो 2 दशक से अधिक समय हो गया है।
0: कैसा लगता है आपको इतने समय से विविध भारती सुन रहे हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन होता लगा आपको?
1: विविध भारती सुनने से हमें जानकारियाँ मिली और ज्ञानवर्धक बातें मिली, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए अपने से बड़े लोगों से, उस तरह की सीख मिली, अपने से छोटे लोगों को किस तरह का प्रेम करना चाहिए इस तरह की सीख मिली। विविध भारती ने हमें जानकारियों के साथ में जीवन जीने का तरीका, नजरिया सब कुछ सिखाया। और शुक्रिया विविध भारती, जो आपके सहारे हम 26 वर्षों तक अभी लगातार प्रोग्राम सुन रहे हैं। और विविध भारती से सुन सुन कर सीखा, ये जो सिंगर गा रहा है ये मोहम्मद रफी है, ये जो सिंगर गा रहा है ये किशोर कुमार है, अब जो सिंगर गा रहा है वो कुमार सानू है, ये आवाज उदित नारायण की है। क्योंकि सिंगरों की आवाज पहचानना हमने विविध भारती के कार्यक्रमों में गीतों के माध्यम से सुन सुन कर ही सीखा, चाहे उद्घोषक सिंगर

0: का नाम नहीं ले तो भी हम पहचान लेते हैं फला फला सिंगर गा रहे हैं।
1: अपने
0: गोसा कहते हैं सिंगर की आवाज है तो हम करेक्ट कहते हैं, बिल्कुल हमने सही पहचाना।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ सीखा आपने।
0: जी
1: तो चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए।
0: फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और गाने के बोले आज हमारे दिल में अजब सी हलचल है, सामने समधन है, इस तरह से गाने की लाइन है।
1: चलिए तो सुनते हैं इस गीत को।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार
1: जी मैडम, मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक छिपावड़ तहसील खिड़किया जिला हरदा मध्य प्रदेश से।
0: रघुवीर जी बोल रहे हैं, कैसे हैं रघुवीर जी?
1: जी मैडम हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
1: मैडम हमारे खेती किसानी का काम है और होटल वगैरह है।
0: अभी क्या चल रहा है आपके खेत में?
1: मैडम अभी गेहूं के बाद तो खाली रहता खेत, कुछ नहीं लगाते, पानी की व्यवस्था नहीं है। और 2019 के बाद आज मेरा कॉल पहली बार लगा, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए अच्छी बात है।
1: और पुराने कार्यक्रम जो SMS के बहाने, VVS के तराने और सुहाना सफर कार्यक्रम, हवा महल, आज के फनकार सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम।
0: सुरीला सफर में आप अपनी बात लिखते हैं हमारे फेसबुक पेज पर?
1: मैडम मैं अभी 2019 के बाद मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था।
0: क्यों?
1: दोबारा चालू किया कोरोना काल से मैंने बंद कर दिया था।
0: तो इतना लंबा समय क्यों लिया बंद करने के बाद शुरू करने में?
1: कार्यक्रम बंद हो गए थे विविध भारती से, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी सुनना बंद कर दिया था मैडम।
0: चलिए अब लगातार

0: सुनिए और अपनी राय देते रहिए और फेसबुक पेज से जुड़िए, अपने विचार व्यक्त कीजिए ताकि आपकी टिप्पणियों को हम स्थान दें, पढ़ें।
1: जी जी मैडम,
0: हमारे श्रोताओं से ही हमारे कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, बताइए।
1: आम्रपाली फिल्म का नील गगन की छांव में दिन रैन गले से मिलते हैं।
0: क्या बात है, गर्मी के इस मौसम में बड़ा सुंदर गीत सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा गाना है और शंकर जयकिशन का संगीत भी बहुत अच्छा है लता जी के आवाज के साथ।
0: जी सुनते

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम, मेरा नाम टिंकू दास, जिला काठागाठम से बोल रहा हूँ मैम।
0: अरे वाह, क्या प्यारा नाम है आपका टिंकू। ये तो घर का नाम होगा।
1: जी मैम, घर का नाम है।
0: तो बाहर का नाम क्या है आपका?
1: मेरा बाहर का नाम है राजदास।
0: अरे वाह, दोनों नाम बहुत अच्छे हैं आपके। टिंकू जी, अपने बारे में बताइए, कैसा चल रहा है आपका जीवन?
1: जी मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, स्वस्थ है, मस्त है, बहुत मजे में है। आप कैसी हो मैम?
0: अच्छे हैं हम भी। तो बताइए, आप कहाँ रहते हैं?
1: जी मैम, मैं सिलचर पे रहता हूँ।
0: वहाँ मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: मौसम 4 दिन से बारिश हो रही है मैम।
0: अरे बारिश आ गई है?
1: जी मैम।
0: तो कुछ ठंडा हुआ मौसम?
1: जी मौसम अच्छा है, सुहाना है मैम मौसम।
0: अच्छा, तो इस बारिश आने से क्या फायदा हुआ वहाँ?
1: जी पहले तो बहुत धूप था, आप राहत मिली है गर्मी की।
0: कुछ गर्मी से राहत मिली है ना?
1: जी मैम।
0: क्या काम करते हैं आप टिंकू जी?
1: जी मैम, मैं तो फिलहाल घर का काम काज करता हूँ, और अभी तक तो कुछ तो करना पड़ेगा आगे से।
0: अरे क्यों नहीं करते अभी तक? क्या उम्र है आपकी?
1: जी फिलहाल तो मेरा 19 साल की उम्र है।
0: अच्छा, पढ़ाई की है आपने?
1: जी मैम।

0: जाना चाहता हूँ।
1: हाँ हाँ,
0: फिलहाल यही तैयारी चल रहा है।
1: क्या तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं अपनी?
0: जी मैम, अच्छे से रख रहे हैं मैम।
1: बिल्कुल, खाना पीना और सब कुछ आपको सही तरीके से करना पड़ेगा।
0: जी मैम,
1: तभी तो कमांडो बन पाओगे, है ना? कितना मुश्किल होता है वो फिजिकल फिटनेस, मेंटली इतना मजबूत बनना पड़ता है।
0: जी मैम,
1: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप युवा हैं और कार्यक्रम सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाएं आपको टिंकू जी?
0: जी मैम, मुझे सिर्फ तुम अभी से पहली पहली बार ये गाना सुना दीजिए मैम।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक हैं?
0: हाँ, हम ठीक हैं। और कश्मीर के मौसम बताइए।
1: कश्मीर के मौसम अभी सुहाना है, मौसम ठीक है। अभी ठंडे ठंडे मौसम में यहाँ पे सुबह शाम ठंडे, दिन में गर्मी।

0: देता है।
1: काफी टूरिस्ट आ
0: हाँ
1: रहे होंगे घूमने इन दिनों।
0: हाँ पर्यटक तो बहुत सारे आते हैं यहाँ सोनामार्ग में। अब लगभग 15,000 से ऊपर तो पर्यटक आते हैं यहाँ पे
1: अरे वाह,
0: घूमने।
1: क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा एक बात बताइए मोहम्मद रैना साहब, बकरीद पर आप क्या कहेंगे? अब तो बकरीद का जो असली मकसद है, असली संदेश क्या है, क्या सोचते हैं आप? जो हजरत साहब है उनकी परंपरा, उनकी कुर्बानी।

0: कार्य हमें समाज में जरूरतमंदों की मदद और दान करना, सहायता करना सिखाता है।
1: ये तो गरीबों के बांटना है, हर किसी को भी बांटना है। ये
0: आपसी प्रेम और भाईचारे का बनाए रखने का एक बहुत बड़ा त्योहार है ये।
1: हाँ हाँ, ये तो बड़े त्योहार है।
0: आप ऐसा सोचते हैं कि सभी समुदायों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे?
1: हाँ सही बात, हिंदू मुस्लिम तो एक ही भाई भाई है।
0: चलिए तो इस त्योहार को अच्छे से मनाइएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: हमें सुनाए गाना पत्थर के फूल, लता मंगेशकर की आवाज में, कभी तो छल्ले लगता है।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज लग चुके हैं उनसे हमारा करवत अनुरोध कि कृपया आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें। हेलो फरमाइश से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 4002462286702888 और हमारा STD कोड नंबर है 022, यानी आप हमें 022400024662 साथ ही 022287022888 पर कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 MHz पर।

ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है FM 102.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में अब आप जानेंगे हमारे केंद्र से प्रसारित शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में। सबसे पहले आपको जानकारी बता रहे हैं प्रथम सभा के शेष रहे कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद 11:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन पाएंगे दिन के 12 बजे। 12:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे मांगीलाल कथक और साथियों को। आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे दिन में 1 बजे। महिलाएं अपना कार्यक्रम महिला जगत सुनेंगी दिन में 1:05 पर। आकाशवाणी दिल्ली से मीडिया न्यूज प्रसारित होंगे दोपहर 2:15 पर। आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से ही दोपहर समाचार।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुन पाएंगे दोपहर 2:30 पर। ये सभी कार्यक्रम थे प्रथम सभा के शेष रहे। आइए अब जानकारी लेते हैं सायकालीन सभा के कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में।

हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे कार्यक्रम युगवाणी के साथ। आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे। अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही होंगे शाम 6:05 पर। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से ही प्रसारित संस्कृत में समाचार। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से ही होंगे शाम 6:45 पर। जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी जयपुर से ही होगा शाम 6:40 पर। कार्यक्रम खेती और गृहस्थी आप सुन पाएंगे शाम 7 बजे।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुन पाएंगे रात्रि 8 बजे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार संध्या का अंक जारी होगा रात्रि 8:45 पर। न्यूज एट 9 का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से ही होगा रात्रि 9 बजे। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बाता ही चाले। ईमेल्स पर आधारित राजस्थानी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गोरबंद आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। रात्रि 10:30 का समय रहेगा शास्त्रीय संगीत के लिए। सभा के अंत में हिंदी में समाचार होंगे रात्रि 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले अंग्रेजी में समाचार होंगे 11:05 पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

ये आकाशवाणी का चोरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में जीत फिल्म से। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का है।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अभी आप सुन रहे थे मेजर साहब फिल्म का गीत। आवाजें थी अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण की। इस गीत को शब्द दिए थे देव कोहली ने और धुन बनाई थी आनंद राज आनंद ने।

चित्रपट संगीत में अब आपको सुनवा रहे हैं जिस देश में गंगा रहता है फिल्म का गीत सुखविंद्र और साधना सरगम की आवाजों में। इस गीत को शब्द दिए हैं देव कोहली ने और संगीत है आनंद राज आनंद का।

0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों को। फिल्म थी जूली। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत हिमेश रेशमिया का था।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
0: श्रोता अभी अपने रेडियो सेट पे सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र से किया जा रहा है FM 110.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अंदाज फिल्म में कुमार सानू और अलका याग्निक को। शब्द रचना एक बार फिर समीर की और संगीत नदीम श्रवण का।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अभी आपको सुनवा रहे थे आनंद बख्शी की शब्द रचना को जतिन ललित के संगीत में। आवाजें थी लता मंगेशकर और कुमार सानू की, फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: अंतराल से पहले कार्यक्रम चित्रपट संगीत में आपने सुना था आशिकी फिल्म का गीत। आवाजें थी अनुराधा पोटवाल और कुमार सानू की। इस गीत को शब्द दिए थे समीर ने और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने।

देव कोहली के शब्दों और हिमेश रेशमिया के संगीत से सजे इस गीत को अभी आप सुन रहे हैं कुमार सानू, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में। फिल्म है कुरुक्षेत्र।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का अंतिम गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। फिल्म थी कुर्बान। इस गीत को कलमबद्ध किया था समीर ने और धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: जरूर करना चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
0: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
1: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
0: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
1: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
0: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
1: जी, ये बात तो है।
0: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: जी हाँ, और जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
0: जी,
1: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो

0: वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
1: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
0: जी,
1: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई हैं और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
0: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
1: काले गुलाब?
0: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
1: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
0: जी,
1: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
0: जी,
1: वास्तव में ये काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
0: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
1: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
0: जी,
1: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत है। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
0: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
1: जी, वो तो है।
0: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
1: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
0: जी,
1: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
0: बिल्कुल,
1: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
0: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है। जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का।
1: जी,
0: पीला गुलाब मित्रता का और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
1: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
0: जी,
1: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
0: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन।

0: संध्या को हम खेलने जाते,
1: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
1: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
1: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
2: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है।

0: यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को, मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्र

0: राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
1: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
2: धन्यवाद श्रीमान।
1: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
2: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूँ।
1: वेरी एम्बिशियस, लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
2: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
1: बेस्ट ऑफ लक।
3: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
0: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
3: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी, हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
4: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
4: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
2: और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिल

0: इंतजार करना।
1: जी सर।
0: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
1: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
0: तो शुरू करते हैं अभियान, सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
1: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
2: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
3: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
2: आक्रमण हुआ
3: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
1: जय

0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
2: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
0: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
1: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
1: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को

0: उसके घाट उतार दिया।
1: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
2: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
1: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
1: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
1: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
3: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चोरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों में तेज अंधड़ और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से पड़ रही प्रचंड गर्मी के बीच इस बदलाव से तापमान में गिरावट और लू का असर कम होने की संभावना है। विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 1 जून तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। इस बीच श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू तथा आसपास के इलाकों में कल बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं कोटा, पिलानी, जैसलमेर, अलवर, फलोदी, बीकानेर में गर्म हवाएं चली और हीट वेव का असर बना रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने परिंदों और पशुओं के लिए भी पानी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
2: राजस्थान में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। नौतपा के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में आप सभी से सावधानी बरतने की एक अपील करता हूँ। यथासंभव तेज धूप में बाहर जाने से बचिए। ऐसी गर्मी में हमें बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भामाशाह दानदाताओं से अनुरोध है कि अपने गाँव, मोहल्ले और बाजार में प्याऊ लगाएं। राहगीरों के लिए ठंडे पानी की और छांव की व्यवस्था कीजिए।
1: प्रदेश में टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत अब तक करीब 19 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि 24 मार्च से राज्य के 11,000 से ज्यादा अधिक जोखिम वाले गांवों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 5,000 आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाए जा चुके हैं, जिनमें 16.5 लाख से अधिक एक्सरे और करीब 2.25 लाख से ज्यादा NAT की जाँच की गयी है। उन्होंने बताया कि सक्रिय केस गतिविधियों में कुल 32,000 नए टीबी रोगियों की पहचान की गई है। वहीं इस साल जनवरी से अब तक 38,000 रोगियों को पोषण किट वितरित किए गए हैं, साथ ही 2,000 नए निक्षय मित्र भी जोड़े गए हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत प्रदेश भर में आज भी जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां हो रही है। इसी कड़ी में भरतपुर में जल संरक्षण और प्रबंधन को लेकर जागरूकता कार्यशाला रखी गई है। वही जैसलमेर के रामदेवरा में राम सरोवर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों को पारंपरिक जल स्रोतों को साफ रखने के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर वृक्ष पूजन कर कलश यात्रा भी निकाली गई। उधर बालोतरा में स्वच्छता के लिए श्रमदान किया गया। इसके तहत पुराने तालाबों, जोहड़ और बावड़ियों की साफ सफाई और मरम्मत की जा रही है। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उन्हें याद करते हुए कहा कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए चौधरी चरण सिंह हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। बालोतरा में कल शाम हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना पचपदरा क्षेत्र के भांडियावास में हुई, जहां एक कार का टायर फटने से वह बेकाबू होकर पलट गई। इससे कार सवार 3 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं एक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उधर कोटा रेल मंडल के दराकी नाल में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर अंडरपास निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से रेलवे के 2 इंजीनियरों की मृत्यु हो गई। उदयपुर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। पाली जिले में देर रात ट्रेलर की टक्कर से RTO विभाग में कार्यरत गार्ड की मृत्यु हो गई। दुर्घटना जॉर्डन टोल प्लाजा के पास हुई, जहां वे RTO टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अनेक स्थानों पर योगाभ्यास करवाया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों को योग से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जैसलमेर में भी आयुष विभाग और पतंजलि योग समिति की ओर से योगासन कार्यक्रम रखा गया। इसके जरिए

मांगीलाल कथक और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। कार्यक्रम था माटी के स्वर। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 110.7 MHz पर।

0: लोगों को योग से होने वाले फायदों की जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 110.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम महिला जगत सुनने वाली सभी श्रोता बहनों का स्वागत है उनके अपने कार्यक्रम में। और आज उनका साथ देने के लिए, उनसे चर्चाएं करने के लिए और उन्हें बहुत ही खूबसूरत से प्यारे प्यारे गाने सुनाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, उनकी सखी रेखा खंडेलवाल। स्वीकार कीजिए मेरा स्नेहिल नमस्कार।

इस बहुत ही खूबसूरत से गाने के बाद हम अपनी चर्चा की तरफ रुख करते हैं। बहनों, गर्मियां बहुत ज़्यादा तेज़ है और इतनी तेज़ है कि सुबह 8 बजे के बाद भी हम में से कोई शायद घर के बाहर निकलना पसंद नहीं करेगा। शाम को 7 बजे तक यही हाल बना रहता है और रातें भी इतनी ज़्यादा गर्मी से भरी हुई है कि पसीना बस यूँ लगता है जैसे कि निचोड़ने लगेंगे तो बाल्टियाँ भर जाएंगी। ये तो एक कहने की बात है बहनों, लेकिन ये जो गर्मियाँ हैं कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमारी अपनी ही करतूतों की देन है, क्योंकि जब पेड़ कटते हैं हमारे आसपास हम में से कोई एक्शन नहीं लेता। जब हमारे आसपास पेड़ों को काटा जाता है तब कोई आगे बढ़कर किसी को रोकने की या समझाइश करने की कोशिश नहीं करता, तो नतीजा तो फिर सामने आना ही है। सूरज दादा तो अपना प्रचंड प्रकोप सामने दिखाएंगे ही दिखाएंगे। और ऐसे में जब हमें घर का काम करना पड़ जाए और वो भी सफाई वाला, जहां हमें सबसे पहले पंखा ही बंद करना पड़ता है, उस दौरान हमारी जान गले में आ जाती है। हालांकि साफ और सुंदर करीने से सजाया हुआ घर बहुत अच्छा लगता है, ऐसे घर के पास से भी अगर कोई निकलता है तो एक बार तो रुक कर देखता जरूर है। घर छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर करीने से सजा हुआ है, सलीके से उसकी साफ सफाई की हुई है, तो वो किसी की भी नजरों का केंद्र बन सकता है। पर अभी क्या हो रहा है कि इसके बिल्कुल उल्टा हो रहा है। चल रही है गर्मियों की छुट्टियां, बच्चे या तो ननिहाल गए हुए हैं, और अगर ननिहाल नहीं गए हैं तो दादी के घर पे भी धमाचौकड़ी मचाई हुई है। वो सामान फेंका, वो तोड़ा, वो पलटा, इधर उधर किया, किताबें, खिलौने, अखबार, सब कुछ, मतलब सारे दिन घर अव्यवस्थित ही रहना है। बच्चे भी क्या करें, पूरे साल भर वो इन छुट्टियों का इंतजार करते हैं। और फिलहाल ये जो सूरज दादा अपना जो तेवर दिखा रहे हैं, बिना पढ़े लिखे होकर इतनी बड़ी डिग्री लेके जब वो घूम रहे हैं, तो हम बच्चों को अंदर रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और हमें भी पता होता है कि भाई इन छुट्टियों में हम बच्चों को ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, कहें भी क्या। हमें भी पता है बच्चे भी साल भर की पढ़ाई के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं, खेल कूद में अपना समय व्यवस्थित ये बिताना चाहते हैं। तो इस दौरान अगर घर थोड़ा सा अव्यवस्थित बिखरा हुआ सा लग जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, हमारा काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन अगर इसके उलट हम दूसरी चीज सोचें कि मसलन दैनिक जो साफ सफाई हम करते हैं उसमें बच्चों की हेल्प ले ली जाए तो कोई बुराई नहीं है। अगर हम बच्चों की हेल्प ले रहे हैं, जैसे कि उन्हें उठने के दौरान ही, जैसे ही वो बिस्तर से उठते हैं उसी दौरान उन्हें कह दिया जाए कि अपना अपना बिस्तर समेट के रखे, या जो भी वो खेल खिलौने खेलने के लिए लेकर बैठे, खेलने के तुरंत बाद उनको समेट कर उनकी व्यवस्थित जगह रख दें, तो साफ सफाई करना आसान हो जाता है। लेकिन इस दौरान हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं उस काम को ही पूरा करें पहले। उस काम के दौरान अगर किसी सहेली का फोन आ गया, किसी भाई बंधु का फोन आ गया, मम्मी के घर से फोन आ गया, हमने किसी को फोन करने की याद आ गई, तो इस काम को थोड़ी देर बाद के लिए रख लें, या दोपहर में जब आपके पास समय हो, या अपनी सहेली से पूछ लें कि कब वो फ्री होती है, तब उसे फोन कीजिए। क्योंकि जब काम का समय होता है उस दौरान काम ही

किया जाए तो ज्यादा सही रहता है। आज का काम कल पर टालना हमारी आलस की आदत को ही बढ़ाता है। हम साफ सफाई भी नहीं रख पाते और ना ही घर करीने से रह पाता है। बच्चों को दोष देना हमारी आदत भले ही हो सकती है, लेकिन बच्चे इस काम में हमारी सहायता करने के लिए आगे तभी आएंगे जब हम उन्हें इस चीज के लिए रोल मॉडल बन के बताएंगे, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो वो अपने घर के बड़ों को करते हुए देखते हैं। तभी तो बड़े सयाने कहते हैं ना कि पहले हाथ का काम निपटा लो फिर मजे लो। तो आप भी जो काम आपने हाथ में संभाल रखा है, पहले घर की साफ सफाई हो को या किचन को समेटना हो या बर्तनों को समेटना हो या कपड़ों का हो या कोई भी और काम, पहले वो कीजिए। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब पूरा काम हो चुका है और आपके पास समय है, तब आप चाहे फोन स्क्रॉल कीजिए, चाहे सोइए, चाहे किसी से बात कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले काम कीजिए।

अभी हम बात कर रहे थे कि हमें अपने घर को व्यवस्थित रखना है, साफ सफाई रखनी है, तो सुबह उठते ही बिस्तर समेटना एक बहुत अच्छी आदत है, आपको कई परेशानियों से बचाती है और इस आदत को आपको खुद अपनाना चाहिए, पहल करनी चाहिए ताकि घर के बाकी सदस्य भी आपकी देखा देखी इसका पालन करें। स्कूल कॉलेज से आने के बाद बच्चों में अपना सामान उठाकर ठीक से रखने की आदत अगर आप डालते हैं तो यह उन्हें एक व्यवस्थित इंसान बनाने में मदद करती है, ताकि यह एक ऐसी आदत है ताकि उन्हें सुबह उठकर किसी चीज को खोजने की मशक्कत नहीं करनी पड़ती, चाहे फिर वो उनकी किताबें हों, स्टेशनरी का कोई और सामान हो, उनके जूते मोजे हो या उनकी ड्रेस से या स्टडी से रिलेटेड कोई और चीज हो। कपड़े, अखबार, किताबें, जूते मोजे अगर नियत स्थान पर रखे जाएं तो उनको फिर से ढूंढना आसान हो जाता है और घर की साफ सफाई भी आसान हो जाती है। प्रतिदिन जो हम साफ सफाई करते हैं उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, कहीं कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। और अगर आप साप्ताहिक सफाई करने वाले हैं किसी एक कोने की, किसी एक कमरे की या किसी स्टोर की या किसी भंडार गृह की, तो उसके उन कोनों को भी साफ करें जो रोजाना की सफाई में छूट जाते हैं। घर अगर बहुत बड़ा है तो प्रतिदिन किसी एक कमरे को डीप क्लीन कीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रोज हर कमरे का नंबर नहीं आ सकता लेकिन रोजाना किसी न किसी कमरे का नंबर आ जाता है, इसलिए वो व्यवस्थित रूप से सारे कमरे साफ हो जाएंगे और जो साप्ताहिक सफाई के दौरान थकान होती है वो भी नहीं होगी। और इस सफाई के दौरान आप घर के बच्चों की मदद ले सकते हैं सामान को व्यवस्थित तरीके से रखने में, इससे क्या होगा कि वो थोड़ा एंगेज भी हो जाएंगे, उन्हें काम करने का अनुभव भी हो जाएगा, साथ ही उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि सफाई के दौरान उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, मतलब नीट एंड क्लीन जो काम होता है उस दौरान उन्हें कौन-कौन सी सावधानियां रखनी है वो आपको देखकर अपने आप ही सीख जाएंगे। अगर आप कुछ भी सामान उठा रही हैं तो उसे वापस वहीं रखें जहां से उठा रही हैं। इसके साथ ही रद्दी, अखबार, कबाड़, पुरानी चीजें, इन्हें अपने घर से जितनी जल्दी आप हटा दें उतना ही सही रहेगा, क्योंकि ये चीजें न केवल जगह घेरती हैं बल्कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो साल दर साल पड़ी रहती हैं और अंत में हमारे कुछ काम नहीं आती, इसलिए वन टच रूल को अपनाइए। जो भी चीज आपको चाहिए आप उठाइए, बस उसी चीज को उठाइए, बाकियों को छेड़िए मत, व्यवस्थित करना आपकी ही जिम्मेदारी हो जाएगी, कोई सहायता करे या ना करे लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इसलिए दैनिक साफ सफाई पर ध्यान अवश्य दें क्योंकि ये आपकी और आपके घर वालों की सेहत के लिए भी जरूरी है, लेकिन अगर आपको थकान महसूस होती है तो आप इसमें घर के सदस्यों की भी मदद ले सकती हैं। ट्राई जरूर कीजिए, आपको भी पता चलेगा कि मदद लेना कितना आसान है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
2: बहनों, आज है फिटनेस फ्राइडे, आपके और हमारे स्वास्थ्य की जागरूकता का दिन, एक ऐसा दिन जहां हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं, हमारे स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम बात करते हैं उस महिला के स्वास्थ्य की जो परिवार की धुरी है। अगर वह स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ है और परिवार स्वस्थ है तो खुशियां बनी हुई है। और अगर हम बात करते हैं परिवार के स्वास्थ्य की, तो हम देखते हैं कि हमें बेसिक चीज़ों को छोड़कर हम बाकी चीज़ों की तरफ चलते हैं। मसलन हम देखते हैं योग, ध्यान, हम आसन, इन पर फोकस कर रहे हैं, हम गंभीर बीमारियों पर चर्चा कर रहे हैं, हम उनके लक्षण पर, उनके उपचार पर या आगे जो ट्रीटमेंट के बाद होना है, जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ है जो हमारा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम उस पर कभी बात ही नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है कि ये चीज़ कॉमन है, फिर भी वो इकलौती चीज़ है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं और उस पर बात की जानी ज़रूरी है, और वो है संतुलित और स्वस्थ आहार। अब हम में से कई बहनें ये सोचेंगे कि संतुलित और स्वस्थ आहार, ये कैसे मुमकिन है कि एक आहार संतुलित भी हो और स्वस्थ भी हो, क्योंकि आहार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कभी संतुलित होती हैं तो कभी स्वस्थ की श्रेणी में नहीं आती हैं। माना कि संतुलित जो आहार होता है कभी कभार स्वस्थ की श्रेणी में आए या नहीं आए, ये अगले की सेहत पर निर्भर करता है। आप अपने हिसाब से अपनी थाली पर एक बार खाने से पहले नजर जरूर डाल लीजिएगा कि हमने जो आप अपने घर के बड़ों को परोस रही हैं, बाकियों को परोस रही हैं, वही आपकी या अपनी थाली में है क्या? जो आप न्यूट्रिशन बाकियों के लिए प्रेफर कर रही हैं, वही न्यूट्रिशन आपकी थाली में भी है या नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं कई बार कि हमने अपने घर के बड़ों को, बच्चों को, बाहर जो कमाने वाले पुरुष सदस्य हैं, उनकी सबकी थाली में हमने पोषण परोसा है, लेकिन हमारी जो अपनी थाली होती है उसमें पोषण की कहीं कोई चीज़ नहीं देखने को मिलती। ठंडा बन गया, बच गया कुछ ठंडा, हमने वो खा लिया, अचार के साथ खा लिया, सब्जी नहीं है तो अचार के साथ खा लेते हैं, दही नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं, हम उसको भी अवॉइड कर जाते हैं, पानी पीकर भी काम चला लेंगे, चल जाएगा। लेकिन क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? स्वास्थ्य चाहे आपका हो, चाहे हमारा हो, चाहे घर के किसी और सदस्य का हो, स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। रोग मुक्त शरीर के लिए पोषक तत्वों का पर्याप्त मात्रा में हर एक की थाली में होना जरूरी है, ये हम भी मानते हैं, ये डॉक्टर्स भी कहते हैं, आयुर्वेद भी यही कहता है। विटामिन, खनिज, लवण और अन्य पोषक जो तत्व हैं वो हमारी थाली में मौजूद रहने ही चाहिए। परंतु एक और चीज़ है बहनों, कि हम जो मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करते हैं, रोज़ाना पोषक तत्वों से भरपूर थाली को प्रेफर कर सके, यह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम एक तो संयुक्त परिवार में रहते हैं जहाँ कमाने वाले कई बार एक या दो सदस्य होते हैं लेकिन खाने वाले बहुत सारे होते हैं। ऐसे में हर एक को पर्याप्त पोषण मिल जाए, यह मुश्किल होता है। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ होती है वो ये है कि जो चीज़ हमारे बस में है हम उस चीज़ को अवॉइड कर जाते हैं, जैसे कि हम जो घर पर सामान आ रहा है वो प्रत्येक सदस्य के अनुपात के हिसाब से ही आता है, चाहे वो फल

हो, हरी सब्जियां हों, तो हम जो भी चीजें निकालते हैं उनमें घर के बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए निकाल देते हैं और अवॉइड करते हैं खुद को, जबकि पोषण की जरूरत तो आपके शरीर को भी है। तो आप ऐसा कीजिए, जब बाकियों के लिए आप पोषण निकालें तो अपने लिए भी निकालें, क्योंकि शरीर को पोषण की जरूरत होती ही है होती है। तो ये जो है ना दैनिक आहार, इसमें आप चीजें शामिल कर सकती हैं इस तरीके से कि हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारे पोषण की पूर्ति भी हो जाएगी। और ये होगा कैसे कि हमें देखना है कि जो चीजें हमने बाकियों को परोसी है वही हमारी थाली में है या नहीं है, चाहे वो मौसमी फल हों, सब्जियां हों या दालें हों। अगर कुछ भी स्किप हो रहा है तो आप देखें कि कहीं बनाने में कहीं कोई सामान छूट तो नहीं रह गया या कमी तो नहीं पड़ गई किसी सामान की। अगली बार फिर थोड़ा अनुपात बढ़ा के बना लीजिए, या बाजार से खरीद रहे हैं तो थोड़ा और अनुपात में सामान ले आइए, ताकि सभी को भरपूर मात्रा में खाने की चीजें मिल सके। और अगर इस तरीके से आप अपने भोजन पर और अपने खाने पर ध्यान देते हैं तो ज्यादा सही रहता है, बजाय इसके कि हम अपनी थाली पर ध्यान दें। अपनी थाली पर ध्यान देने की जगह हम देखते हैं कि जो मौसमी फल सब्जियां सबके लिए कटते हैं, आप अपने लिए भी अलग से निकाल लीजिए, उसी समय निकाल लीजिए। जो बाकियों के लिए निकल रहा है सामान, खाने की थाली में परोसा जा रहा है, आप अपने लिए भी थाली में निकाल लीजिए ना। आप भी उसी वक्त गर्म बना हुआ स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाइए, उसे ठंडा करके खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गर्म और जो पौष्टिक खाना है वो ताजा बना हुआ जितना फायदा देता है, ठंडा खाना शायद उतना फायदेमंद नहीं रहता। इसलिए जब भी खाना बनाएं, दूसरों को परोसें, बाकी काम को एक बार किनारे कर दीजिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए और भोजन पर्याप्त कीजिए, नियमित कीजिए, समय पर कीजिए और ताजा कीजिए, ताकि स्वास्थ्य बना रहे। क्योंकि एक सेहत हजार नियामत वाली बात सिर्फ बात नहीं है, ये वो सूत्र है जो आपके और हमारे जीवन को एक लय में पिरोता है और हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: इस अंतराल के बाद बहनों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम महिला जगत में। बहनों, गर्मी का जो प्रकोप है वो दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है और हमारे जो दैनिक काम हैं, हम घर पर रहकर कितना भी कर लें लेकिन कभी कभार बाहर निकलना पड़ ही जाता है। चाहे वो सब्जियां लेने के लिए जाना हो, बच्चे का कोई सामान लेने के लिए जाना हो, या घर पे अगर कोई बीमार सदस्य है तो उसकी दवाई लेने के लिए जाना हो या उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना हो। और ऐसी स्थिति बनी हुई है फिलहाल बाहर घर से निकलने पर कि धूप चारों तरफ इतनी तेज है कि सड़क की तरफ देखना भी नहीं हो पा रहा है। इतनी तेज धूप की वजह से लू लग जाती है या तापघात की स्थिति, जिसे हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक, यह हो जाती है। लू लग जाए तो हमें पता है कि हम उसका उपाय कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कच्चे आम का पानी बनाकर उसका सेवन कर लेते हैं, जो कच्चा प्याज है उसके रस का तलवे पर जो हम लेप लगाते हैं या कच्चा प्याज खाते हैं उसका सेवन करते हैं, और घर में जो छाछ राबड़ी बनती है उसका जो पानी औटाया जाता है बनाने से पहले, उस पानी को अगर घूंट घूंट करके पिया जाता है तो वो भी लू लगने की स्थिति में बेहद फायदेमंद होता है। परंतु इसके उलट स्थिति या इससे गंभीर स्थिति होती है तापघात की। जब तापघात हो जाए तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जो मरीज तापघात से पीड़ित है उसे स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके। तापघात भीषण गर्मी की वजह से होने वाली जानलेवा स्थिति है। इसमें शरीर का तापमान 104 डिग्री फारेनहाइट या उससे भी ज्यादा हो जाता है, पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोश हो जाता है। यदि आप कहीं देखें या घर पर किसी और को ऐसी कोई स्थिति हो रही है तो बजाय घबराने के तुरंत मरीज को हवादार और ठंडी जगह पर लिटा दें, उसके शरीर पर ठंडा पानी डालें और हो सके तो पंखे से भी हवा करें ताकि जो भी मरीज है उसके शरीर का

शरीर कुछ हद तक नॉर्मल हो सके, उसके शरीर का तापमान जो है वो कुछ हद तक कम हो सके। मरीज को होश में आने पर नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, ओआरएस का घोल, इनमें से कोई भी चीज़ जो भी मरीज को प्रेफरेंस आप देना चाहें, थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं। मरीज को सूती आरामदायक कपड़े पहनाएं और अगर फिर भी शरीर का तापमान लगातार बढ़ रहा हो तो तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जाएं, और अगर अस्पताल पास नहीं है तो सरकार द्वारा जो इमरजेंसी नंबर इस दौरान जारी किए जाते हैं उन नंबरों पर संपर्क करें और घरेलू उपचार तुरंत करते रहें जब तक कि कोई भी चिकित्सकीय सहायता ना मिल जाए। याद रखिए, घबराने के बजाय शांति से अगर आप काम लेते हैं इस दौरान तो ज़्यादा फायदा मरीज को होता है और उसके घर वालों की भी स्थिति ठीक रहती है। इस लू में बाहर निकलने के बजाय घर पर रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य है तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत है।

बहनों, कल 28 मई को माहवारी स्वच्छता दिवस मनाया गया था। माहवारी के दौरान स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि इस दौरान अगर शारीरिक सफाई का ध्यान न रखा जाए तो शरीर आसानी से संक्रमित हो सकता है। स्वच्छता बनाए रखने से दिन भर ताजगी और आराम का अनुभव होता है। लंबे समय तक मासिक धर्म की स्वच्छता को अगर नजरअंदाज किया जाए तो प्रजनन क्षमता में कमी देखने को मिलती है और भविष्य में गर्भाशय से संबंधित गंभीर जो बीमारियां हैं वो भी हो सकती है। स्वच्छ और सही व सुरक्षित उपायों के प्रयोग से महिलाएं अपना कार्य बिना किसी झिझक के नियमित रूप से कर सकती हैं। और हाँ, अगर आप अपनी स्वच्छता का ध्यान रखती हैं, अपने पड़ोस में अपनी बहन बेटियों की या जो भी आप जिनको जानती हैं उनकी स्वच्छता के बारे में अगर आप उन्हें सुझाव देती हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि उन्हें इस चीज़ को लेकर कहीं कोई शर्मिंदगी महसूस ना हो। क्योंकि एक तबका ऐसा भी है हमारे समाज में जहाँ आज भी इस चीज़ को लेकर लोगों की धारणा पूरी तरीके से बदली नहीं है। हालांकि शिक्षा का प्रसार होने की वजह से बहुत कुछ बदलाव आया है, परंतु पूरी तरीके से लोगों की सोच बदलने में, हमारे समाज की सोच बदलने में समय लगेगा। और उस समय तक आने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। इसलिए अगर किसी को सुझाव आप इसके संबंध में दे रही हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि किसी को बुरा न लगे। और हाँ, यह स्वच्छता बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ रहता है तो ही किसी काम में मन लगता है।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 110.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अंग्रेजी और 2:15 पर हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारा प्रयास।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आप

आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली

0: दिल्ली नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने में अभी आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज में मान अभिमान फिल्म का गीत। इसमें गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन थे। सलामी फिल्म में अभी आप सुन रहे हैं कुमार सानू को। इस गीत में शब्द रचना समीर की है और संगीत नदीम श्रवण का।

0: तराने नए पुराने फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल को। फिल्म थी काबिल। इस गीत में शब्द रचना कुमार की थी और संगीत राजेश रोशन का।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने में अभी आप सुन रहे थे हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म का गीत। आवाजें थी अनुराधा पोडवाल और सोनू निगम की। इस गीत को लिखा था प्रवीण भारद्वाज ने और संगीत था डब्बू मलिक का।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने में अभी आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना को आरडी बर्मन के संगीत में। आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, फिल्म का नाम रामपुर का लक्ष्मण।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने का अंतिम गीत अभी आप सुन रहे थे केके की आवाज में फिल्म गैंगस्टर से। इस गीत को लिखा था सैयद कादरी ने और संगीत प्रीतम का था। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 110.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम अब यही संपन्न होते हैं। सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

FM 107 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवन के साथ हमारी आज की सायकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है।

जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट प्रोग्राम युवाणी में। शुरू हो चुका है ओनली ऑन 100.7 एफएम पर, जहां आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे आपके रेडियो दोस्त कोमल दहिया को। युवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रोग्राम चल रहा है युवाणी, और आप सब जानते हैं शुक्रवार को हमारा खास सेगमेंट होता है हेल्थ और फिटनेस, जिसपे युवाओं की सोच, सेहत, करियर और बदलती जीवन शैली के बारे में जो है वो हम इस खास सेगमेंट में जो है आपके साथ बातें करते हैं। तो दोस्तों, अगर हेल्थ और फिटनेस की बात करें तो कई बार हम देखते हैं कि प्लांट बेस्ड जो डाइट है वो हम लेते हैं, तो इसके फायदे हमारे लिए क्या रहते हैं और क्या क्या सावधानियाँ जो है वो हमें रखनी चाहिए इसके अंदर, वो भी हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें अगर हम सावधानियां नहीं बरतेंगे तो शायद कहीं ना कहीं वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया हो, फिटनेस इंडस्ट्री हो या फिर हेल्थ एक्सपर्ट, हर जगह जो है वो प्लांट बेस्ड डाइट की चर्चा हो रही है। कई लोग जो है वो इसको अपनाकर खुद को ज्यादा फिट, हल्का और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। लेकिन इन सब में सवाल ये आता है कि आखिर प्लांट बेस्ड डाइट होती क्या है? क्या इसमें सिर्फ सलाद खाना पड़ता है, या फिर इसमें शरीर को पूरा पोषण मिल पाता है, या फिर क्या हर किसी के लिए सही होता है? तो दोस्तों, इसमें ये होता है कि कई बार सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्लांट बेस्ड जो डाइट है वो होती क्या है। प्लांट बेस्ड डाइट का मतलब यही होता है कि ऐसी भोजन शैली जिसमें पौधों से मिलने वाले जो भी खाने लायक पदार्थ होते हैं उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है, जैसे फल, सब्जियां हैं, दाल, अनाज, सूखे मेवे, ये सारी चीजें जो है वो प्लांट बेस्ड डाइट के अंदर आती हैं। और इस डाइट में अगर हम बात करें तो जो भी चीजें होती हैं, ज्यादा फैट वाले खाने को कम या फिर पूरी तरह से हम हटा सकते हैं। हालांकि हर प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो अपनाने वाला

व्यक्ति पूरी तरह से शाकाहारी हो ऐसा जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ हेल्थ के लिए इसे अपनाते हैं, कुछ लोग पर्यावरण बचाने के लिए इसको जो है वो फॉलो करते हैं, और कुछ जो है वो जानवरों के प्रति संवेदनशीलता के कारण करते हैं, और ये होना भी चाहिए क्योंकि दोस्तों आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है इसमें हम देखते हैं कि मोटापा है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है और या फिर हार्ट की बीमारियां हैं, ये सब तेजी से बढ़ रही हैं। तो ऐसे में लोग अगर ऐसी डाइट की तरफ जा रहे हैं जो शरीर को स्वस्थ रखे और बीमारियों का खतरा कम करे, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए बनता जा रहा है। और यही कारण है कि प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। फिटनेस ट्रेनर्स हैं, खिलाड़ी हैं या फिर कोई भी सेलिब्रिटीज हैं, वो भी इसे अपनाने लगे हैं। और जब हम किसी को देखते हैं ऐसा अच्छा काम करते हुए, तो हमारे मन में भी आता है कि हाँ, हम भी जो है वो प्लांट बेस्ड डाइट लें, जिससे हमारे स्वास्थ्य का भी हम ख्याल रख सकें और साथ ही साथ हमारा पर्यावरण का ख्याल भी जो है वो हम रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ट्रेंड देखकर कोई भी डाइट शुरू कर देना सही नहीं होता, उसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी होती है। जैसे प्लांट बेस्ड डाइट में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर में खराब जो भी कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। इससे जो हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है या फिर दिल से जुड़ी जो भी बीमारी है उसका खतरा कम हो सकता है। साथ ही हम देखें कि आज का जो यूथ है उसकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनका वजन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो प्लांट बेस्ड जो भी खाना है उसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर ज्यादा होता है। इससे जो है वो हमारा जो स्टमक है वो भी लंबे से टाइम तक जो है वो भरा रहता है, हमें महसूस नहीं होता कि हमें भूख लगी है, या फिर हम ओवर ईटिंग जो है उसको कम कर सकते हैं, यानी बिना ज्यादा भूखे रहे वजन को हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो है वो प्लांट बेस्ड डाइट में जो है वो सबसे बड़ी सहायता हमारे लिए होती है। हम बात करें कि फल, सब्जियां, साबुत अनाज, फाइबर, इन सब जो होते हैं इनमें फाइबर जो है वो भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे स्टमक को साफ रखता है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो है वो भी हमारे हेल्थ के लिए है वो कम कर देता है। अच्छा, हमारा जो यूं कहें कि शरीर में एक ऊर्जा, एनर्जी जो है वो बनी रहती है और हमारा जो स्वास्थ्य है वो बेहतर बना रहता है। अब हम बात करें दोस्तों कि प्लांट बेस्ड में जो है वो विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो भी भरपूर होते हैं। ये जो है वो हमारी स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग बनाने में भी हेल्प करते हैं। साथ ही और भी, मतलब हमारे शरीर में जो है वो कहीं भी ये नुकसानदेह साबित नहीं हो सकते। अगर हम इनको अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये हमारे लिए हर चीज के लिए, यूं कहें कि हमारे स्टमक के लिए या फिर हमारी और जो बीमारियां हैं उन सब के लिए, हमारी स्किन के लिए, इन सब के लिए जो है वो बेहतर साबित होती है। हरी सब्जियां हैं, दाल है, साबुत अनाज है, ये सब ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसलिए जो डॉक्टर हैं वो भी हमें जो है वो एक बैलेंस प्लांट बेस्ड जो भोजन है उसको करने की सलाह देते हैं कि आप संतुलित जो भी प्लांट बेस्ड भोजन है उसको कीजिए, जिससे आपका जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ बना रहेगा और आप फिट भी बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये सिर्फ हमारी सेहत ही नहीं बल्कि हमारी, यूं कहें कि हमारा जो नेचर है उसके लिए भी अच्छा माना जाता है। जैसे कि पौधों पर आधारित भोजन अगर हम करते हैं तो उससे प्रदूषण है, प्राकृतिक संसाधन है, उन पर भी दबाव कम पड़ता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट का मतलब है दिन भर सिर्फ सलाद खाना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप इसमें दाल, रोटी, चावल, ओट्स, मूंगफली, ये सारी चीजें, यानी कि सब्जियां हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, फल हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल कर सकते हैं। या हमारे इंडिया में यूं कहें कि पारंपरिक भोजन से पहले ही काफी हद तक प्लांट बेस्ड रहा है। तो दोस्तों, हर अच्छी चीज तभी फायदेमंद होती है जब उसे सही तरीके से अपनाया जाए। इसलिए प्लांट बेस्ड डाइट शुरू करते समय कुछ जो सावधानियां हैं वो भी हमें बरतनी चाहिए, क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें हमें फायदे नुकसान भी देखने पड़ते हैं, और साथ ही साथ हम अगर कोई भी काम करते हैं तो सावधानियां रखनी भी बहुत जरूरी है। अगर यूं कहें कि सही योजना हमारे पास ना हो तो शरीर में प्रोटीन की कमी भी हो सकती है, क्योंकि कुछ चीजें हम ज्यादा मात्रा में खा लें और कुछ चीजें हम कम मात्रा में, तो उन चीजों में भी जो है वो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो चीजें हम खा रहे हैं उनमें कितना बैलेंस हम बना के रख रहे हैं वो बहुत जरूरी है। जैसे कई बार हम, ये होता है कि विटामिन B12 है वो ज्यादातर, यूं कहें कि पशु उत्पाद जो भी चीजें हैं उनमें पाया जाता है, और इसकी कमी से जो वो हमें कमजोरी या थकान महसूस होने लगती है। इसलिए डॉक्टर की जो सलाह है उससे भी सप्लीमेंट या फोर्टिफाइड जो फूड है
वो भी हमें लेना पड़ सकता है कई बार। तो जो भी हम डाइट लें, प्लांट बेस्ड जो भी डाइट है या फिर अदर जो भी डाइट है, उसमें हमें ये सावधानी रखनी है कि हम उनका जो बैलेंस बना के रखें कि कितनी मात्रा में कौन सी डाइट जो है वो हम ले रहे हैं और कितनी हमारे शरीर के लिए सही होती है। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं, तिल है, दाल, सूखे मेवे, बहुत सारे जो ये चीजें हैं वो हमारे बॉडी को आयरन और कैल्शियम देते हैं। यानी कि हर एक खाने का जो है वो अलग अलग काम होता है। कुछ से हमें आयरन कैल्शियम मिलता है, कुछ से हमें एनर्जी मिलती है, और बहुत सारी ऐसे खाने हैं जिससे हमारी कमजोरी या फिर थकान जो है वो दूर होती है। लेकिन जो शरीर है वो इन्हें सही तरीके से अवशोषित करे, इसके लिए जो है वो एक संतुलित भोजन करना बहुत जरूरी है। अब हम कई बार देखते हैं सोशल मीडिया की बात करें तो कई लोग जो है बिना सही जानकारी के जो है वो डाइट टिप्स देते हैं। हम सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी जो इतनी बढ़ चुकी है, तो सोशल मीडिया पर हर चीज देख कर जो है वो उसे अपनाने की हम कोशिश करते हैं। हाँ, हमें अपनानी भी चाहिए अगर वो अच्छी चीज है, लेकिन उसके पीछे की जो सही राय है वो हमें देखनी चाहिए कि इसमें जो टिप्स हमें मिल रहे हैं वो सही है या नहीं है। क्योंकि हर इंसान की बॉडी जो है वो अलग अलग रिएक्ट करती है, इसलिए हमें जो हमारे शरीर के लिए सही है वो डाइट हमें अपने डाइट में जो है वो फॉलो करनी चाहिए। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए किसी एक्सपर्ट या फिर जो भी डाइटिशियन होता है उसकी सलाह लेना हमारे लिए बेहतर होता है कि हम पूछ के हमारे डॉक्टर से या फिर जो भी डाइटिशियन होता है उससे पूछ के, कोई एक्सपर्ट है इस मामले में उसको पूछ कर जो अगर हम डाइट अपनी शुरू करते हैं तो हमारा शरीर जो है वो बेहतर, यूँ कहें कि एक बेहतर साबित होता है कि हाँ हमने ये चीज़ें जो अगर हमारे रूटीन में शामिल की, हमारी डाइट में शामिल की है, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर होती है। दोस्तों, हेल्थ और फिटनेस की बातें हो रही हैं और डाइट की हम बात करें कि प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो हमारे लिए कितने फायदेमंद होती है और क्या क्या सावधानियां जो है इसमें हमें रखनी पड़ती है, इसमें बातें भी आगे यूं ही जारी है आपके लिए। लेकिन फिलहाल आपको लिए चलते एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन। बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
2: तेरी समझदारी का फल।
4: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रोग्राम चल रहा है युवानी खास सेगमेंट हेल्थ और फिटनेस, जिसमें हम बात कर रहे थे कि प्लांट बेस्ड जो डाइट है उसमें कितनी मात्रा में हमें जो डाइट है वो लेनी चाहिए, और यूं कहें कि सोशल मीडिया के चक्कर में आकर आप बिना सही जानकारी के जो डाइट टिप्स हैं वो ना फॉलो करें। साथ ही साथ हर इंसान का शरीर अलग होता है, इसलिए किसी भी एक्सपर्ट या फिर डाइटिशियंस की सलाह लेकर जो है वो अपनी डाइट को रूटीन बनाएं। क्योंकि दोस्तों एक मज़ेदार बात ये है, लेकिन ज़रूरी भी है कि एक प्लांट बेस्ड जो चीज़ है वो हेल्दी हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कई बार जो चिप्स, कोल्ड ड्रिंक या फिर ज़्यादा तला हुआ खाना जो है वो पौधों से बना हो सकता है, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह ही रहेगा। दोस्तों आज का युवा जो है वो अपनी फिटनेस और हेल्थ को लेकर बहुत ही ज्यादा जो है वो जागरूक हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन फिट रहने का मतलब सिर्फ पतला दिखना या फिर बल्कि नहीं है, बल्कि अंदर से जो है वो हमें हेल्दी रहना है। अंदर से स्वस्थ रहेंगे तभी जो है वो हम फिट रह पाएंगे। प्लांट बेस्ड जो डाइट है वो हमें ये सिखाती है कि जो नेचुरल जो और संतुलित भोजन जो है वो हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। छोटे छोटे बदलाव जैसे ज़्यादा फल खाना, जंक फूड कम करना, रोज़ सब्जियां शामिल करना खाने में, ये जो आदतें हैं वो लंबे टाइम तक जो है हम अपनाते हैं तो वो हमारी हेल्थ को फ़ायदा देती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर यूँ कहे कि रोज फास्ट फूड खा रहा है, ज्यादा तेल और मीठा खाता है, धीरे धीरे जो है उसका वजन बढ़ सकता है और शरीर जो है वो थका हुआ महसूस करने लगता है। लेकिन अगर वहीं वो इंसान जो है वो अपनी डाइट में फ्रूट है, सलाद है, दाल है या फिर अंकुरित जो अनाज है या फिर घर का जो भी संतुलित खाना है वो अपनी डाइट में शामिल करता है तो कुछ ही टाइम में हम देखेंगे फर्क इतना महसूस होता है और अंदर से जो है वो एक एनर्जी फील जो है वो उस इंसान को होती है। इसलिए हमें जो है वो अपनी डाइट में कभी भी ऐसा भोजन या फास्ट फूड या फिर जंक फूड जैसा कुछ भी शामिल नहीं करना चाहिए जिससे हमारे शरीर को जो वो नुकसान हो और हमारे अंदर एनर्जी ना बचे कोई काम करने की। ऐसी डाइट जो है वो हमें फॉलो नहीं करनी है। इसमें हमने देखा कि दोस्तों प्लांट बेस्ड जो डाइट है वो सिर्फ एक फैशन नहीं है बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली है, और अगर हम इसको अपनाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो एक कदम आगे की ओर, स्वस्थता की ओर ही बढ़ेगा। ये ना कि हम यूँ कहें कि अगर हम इसको अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, बस ज़रूरत है इसकी सही मात्रा, इसकी सही जानकारी रखने की। इसके कई फायदे हैं जैसे बेहतर स्वास्थ्य है, अच्छा पाचन है।

एनर्जी जो है वो हमारे लाइफ में भरपूर बनी रहती है, और साथ ही सही जानकारी और संतुलित भोजन बहुत ही जरूरी है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कोई भी डाइट हो वो तभी सफल होती है कि जब उसमें संतुलन और नियमितता और समझदारी हो, क्योंकि अपने शरीर की जरूरतों को हमें समझना चाहिए, साथ ही जो स्वस्थ आदतें हैं उनको अपनाना चाहिए, और फिट रहने की दिशा में जो है वो छोटा कदम अगर हम आज से बढ़ाते हैं तो हम अपना धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम फर्क जो है वो अपने शरीर में खुद से महसूस करने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों जब जितना हम खाते हैं, जितना जो हम खा रहे हैं वही हमारे शरीर को लगता है, इसलिए अगर हम हेल्दी खाते हैं तो हमारा शरीर जो है वो उस तरीके से रिएक्ट करेगा और एक एनर्जी और स्वस्थ शरीर जो है वो हमें महसूस होगा। और वहीं अगर हम उल्टा यूं करें कि कुछ भी जो भी जंक फूड है या फास्ट फूड है, तला भुना जो भी हम खाते हैं, अगर वो हम खाते हैं तो हमारे शरीर में वैसे ही चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए हमें एक हेल्दी डाइट लेनी है, साथ ही प्लांट बेस्ड डाइट, जो हमें उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और हम कितनी मात्रा में ले रहे हैं, क्या क्या सावधानियां उसको अपनी डाइट में शामिल करने के लिए बरत रहे हैं, वो सारी चीजें अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम जो है वो एक स्वस्थ शरीर जो है वो बना पाएंगे, साथ ही साथ जो है वो फिट भी रह पाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों फिट भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, और आपको एक गाना भी जो है वो जरूर सुनाएंगे, और उसके बाद जो है वो बातें आगे जा रही है हमारे खास सेगमेंट हेल्थ और फिटनेस में।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अंतराल पर जाने से पहले दोस्तों हम बात कर रहे थे कि प्लांट बेस्ड जो डाइट है, यानी ऐसी जीवन शैली जो शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखे। हमने ये भी जाना कि अच्छा खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। लेकिन दोस्तों आप सोचिए, क्या सिर्फ हेल्दी खाना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी है या फिर इसके साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर अच्छा भोजन हो तो और साथ में नींद पूरी ना हो तो शरीर और दिमाग जो है वो दोनों थकने लगते हैं। और आज का यूथ अगर हम देखें तो फिटनेस, करियर, सोशल मीडिया के बीच इतना उलझ गया है कि उसकी जो स्लीप साइकिल है, यानी सोने जागने की जो दिनचर्या है, वो बिगड़ती जा रही है। देर रात तक मोबाइल चलाना, पढ़ाई या फिर गेमिंग, ये सारी चीजें जो है वो हमारी नींद पर असर डालते हैं। इसलिए जो है वो स्लीप साइकिल का मैनेजमेंट, यानी एक अच्छी और संतुलित नींद होना भी बहुत जरूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। जैसे हम

अपने खाने का ध्यान रखते हैं, अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, वैसे ही नींद का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। स्लीप साइकिल का मतलब है कि हमारे सोने और जागने का जो एक नेचुरल टाइम है वो क्या होना चाहिए। हमारे शरीर एक ऐसा यूं कहें कि एक जैविक घड़ी है, यानी एक बॉडी क्लॉक है जिस पर ये काम करता है। जब हम रोज लगभग एक ही टाइम पर सोते और उठते हैं तो हमारा जो शरीर है उसी तरीके से जो है फिर अपने आप को संतुलित बनाए रखता है, लेकिन जब ये टाइम बार बार बदलता है तो फिर हमारी बॉडी है, हमारा दिमाग है, ये दोनों जो है इन पे असर पड़ता है। जैसे कि मोबाइल को हम चार्जिंग लगाते हैं, उसको चार्जिंग की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर और दिमाग को भी आराम की जरूरत होती है। एक अच्छी नींद, जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो फ्रेश रहता है, हमारी याददाश्त जो है वो भी बेहतर बनी रहती है, साथ ही साथ स्ट्रेस कम रहता है। जब हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है जब हम अच्छी नींद लेते हैं, और हमारी इम्यूनिटी जो है वो भी स्ट्रांग बनी रहती है। यानी कि अच्छी नींद जो है वो सिर्फ आराम नहीं देती बल्कि एक बेहतर जीवन की जरूरत भी है। दोस्तों, हम देखते हैं कि आजकल युवाओं की जो स्लीप साइकिल है वो खराब होना जो है वो लाजमी भी है, क्योंकि सोशल मीडिया के चक्कर में या फिर यूं के पढ़ाई है और भी बहुत सारी ऐसी हमारी लाइफ में ऐसी चीजें चलती रहती है जिसके अंदर हम उलझ के रह जाते हैं और हमारी जो स्लीप साइकिल है वो बिगड़ जाती है। और जैसे कि अब हम अगर बात करें कि मोबाइल और स्क्रीन का टाइम जो है वो भी हमारी स्लीप साइकिल को ख़राब करता है। रात में हम मोबाइल, लैपटॉप या फिर टीवी देखने से जो है वो दिमाग एक्टिव रहता है, लेकिन स्क्रीन से निकलने वाली जो ब्लू लाइट है वो नींद लाने वाले जो हार्मोन है उनको उनके ऊपर इफेक्ट डालती है, उनको प्रभावित करती है, तब जो है वो हमारी नींद जो है वो वहाँ ख़राब हो जाती है। और अगर देखें पढ़ाई है, करियर है, रिश्ते हैं और हमारा जो फ्यूचर है उसकी जो टेंशन है वो भी हमारे दिमाग में चलती रहती है, जिसके कारण भी कई बार जो है वो हमें नींद नहीं आती, हमारी नींद का जो साइकिल है, नींद जो है वो हमारी ख़राब हो सकती है। कभी कभी हम यूँ देखते हैं कि कभी जल्दी सोना, कभी पूरी रात जागना, इससे जो शरीर की घड़ी है वो भी गड़बड़ा जाती है। जैसे अभी हमने कहा कि मोबाइल को चार्जिंग में लगाना ज़रूरी है, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए मोबाइल को चार्ज लगाते हैं तो वो कम चार्ज होता है, अगर हम उसको पूरा टाइम अगर देकर उसको पूरा चार्ज करते हैं तो फिर वो फुल चार्ज होता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी है, उसको भी हमें चार्ज करने के लिए जो है पूरी नींद लेनी है और सही डाइट जो है वो लेनी बहुत ज़रूरी है। देर रात तक हम जागते रहते हैं और ऐसी यूँ कहें कि ऐसा खाना खाते हैं जो हमारी नींद पर असर डालते हैं, तो इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लंबे टाइम तक नींद पूरी नहीं होती है और कई जो नुकसान हैं वो हमारी बॉडी पर पड़ते हैं, जैसे हमें हर टाइम जो है वो थकान महसूस रहती है, हमारा पढ़ाई में भी कम ध्यान लगता है, साथ ही साथ सिर दर्द है, आँखों में जलन है, हमारे दिमाग में स्ट्रेस जो है वो बढ़ने लग जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी बॉडी जो है वो रिएक्ट करने लगती है इन चीज़ों में। और इतना ही नहीं, लगातार जो नींद खराब होती है उससे मोटापा है, तनाव है और भी बहुत सारी यूँ कहे कि हेल्थ से जो भी रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो उनका खतरा है वो और भी बढ़ सकता है। इसलिए हर चीज़ें जो है वो बॉडी के लिए ज़रूरी है, नींद भी ज़रूरी है, डाइट भी ज़रूरी है, और साथ ही साथ यूँ कहें कि अगर खाली सिर्फ हम बैठे नींद ले और खाना खाएं तो उससे भी हम स्वस्थ नहीं रह सकते, हमें काम करना भी ज़रूरी है, हमें मेहनत भी करनी ज़रूरी है, चाहे फिर हम वो दिमाग से करें या फिर शारीरिक रूप से करें, मेहनत करना, काम करना, सही डाइट लेना, सही नींद लेना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़ एक तय समय जो है वो हमारा सोने का, उठने का जो है वो होना चाहिए और इसके बारे में हमें आदत भी डालनी चाहिए। साथ ही अगर हम बात करें कि देर रात तक ज़्यादा हम जो है वो जागते रहते हैं और जो है तला भुना खाना खाते हैं तो इससे भी जो है वो हमारे भोजन पर भी असर पड़ता है और हमारे नींद पर भी असर पड़ता है, तो इन सारी चीज़ों का अगर बैलेंस बिगड़ता है तो फिर हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। अगर हम बात करें कि जैसे हमने बात की प्लांट बेस्ड जो डाइट है उस पे हम देखे, हमने सुना कि जब भोजन प्राकृतिक और संतुलित होगा तो शरीर को जो है वो आराम भी बेहतर मिलेगा, तो थोड़ी एक्सरसाइज, योग, वॉक शरीर को जो है वो सक्रिय बनाए रखती है, एक्टिव जो है वो हमारा शरीर बना रहता है, एनर्जी लेवल जो है वो हमेशा बढ़ता रहता है, जिससे ये अगर हम वहीं अगर मेहनत नहीं करेंगे, चाहे वो दिमागी रूप से हो चाहे या फिर शारीरिक रूप से, मेहनत नहीं करेंगे सिर्फ खाने पे और नींद पर ध्यान देंगे तो भी जो है वो हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। इसलिए हर चीज़ जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है और इसको बारीकी से हमें समझना भी चाहिए, इसके प्रति हमें सावधानी भी रखनी चाहिए। दोस्तों, बातें तो प्रोग्राम में यूँ ही चलती रहेगी, आपको लिए चलते हैं एक और छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की और फिर आपसे बातें करेंगे आगे हेल्थ और फिटनेस के बारे में।

जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। खास सेगमेंट चल रहा है हेल्थ और फिटनेस। हमने जाना दोस्तों कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही आराम और सही जीवन शैली भी जरूरी है। और इसी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि हमारा भोजन किस तरीके का है। आजकल हम बाजार में जो भी मिलने वाला देखते हैं कि ज़्यादातर जो खाने पीने का सामान है वो पैकेट्स में आते हैं, और बहुत सारी जैसे हम रोज कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो खरीदते रहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ऐसे सोचा है, या फिर क्या हमने कभी उस पैकेट के पीछे जो जानकारी लिखी होती है उसको पढ़ा है? और अक्सर हमारा जवाब यही होता है कि नहीं, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। हम स्वाद या फिर विज्ञापन या फिर दिखावट देखकर जो है वो चीज़ें खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, पैकेट के पीछे लिखा छोटा सा फूड लेबल जो है वो हमारी सेहत से जुड़ी बड़ी जानकारी हमें देता है। हम देखते हैं कि किसी भी पैक्ड खाने के पीछे या फिर साइड में जो जानकारी लिखी होती है उसको हम फूड लेबल कहते हैं। इसमें बहुत सारी बातें लिखी होती है, जैसे इसमें कौन सी चीज़ें जो है वो मिली होती हैं, कितनी कैलोरी की है, शुगर, नमक और फैट की मात्रा कितनी है, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जो है उस पर लिखी होती है, और पोषण संबंधी जो भी जानकारी है वो उस पैकेट पर लिखी होती है। यानी फूड लेबल जो है वो हमें ये बताता है कि हम जो खा रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए कितना सही है और कितना गलत हो सकता है। कई बार जो है वो हम देखते हैं कि हेल्दी और लो फैट या फिर नेचुरल पैकेट्स पर लिखा होता है, लेकिन अंदर उसके जो है वो शुगर या नमक बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर हम लेबल पढ़ना सीख जाएं तो सिर्फ विज्ञापन देखकर नहीं बल्कि सही जानकारी देखकर जो है वो हमारी हेल्थ के लिए हम फैसला ले सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि यूथ में जो है वो जंक फूड और मीठे पेय पदार्थ का चलन जो है वो बढ़ रहा है। ज़्यादा शुगर नमक शरीर के लिए जो वो नुकसानदेह होता है, और इससे मोटापा है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, दूसरी और भी बहुत सारी समस्याएं जो हैं उनका खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए जो फूड लेबल है उसको देखकर हम समझ सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट सीमित मात्रा में हमें खाना चाहिए और कितना जो है वो हमारे शरीर को ये नुकसान दे सकता है और कितना ये हमारे शरीर के लिए बेहतर साबित हो। जो युवा फिटनेस और वजन कम करने पर ध्यान देते हैं उनके लिए फूड लेवल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इससे पता चलता है कि खाने में कितनी कैलोरी, प्रोटीन और फैट है। यानी अगर हम जागरूक होकर चीज़ें चुनें तो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ही आसान हमारे लिए हो सकता है। सबसे पहले अगर हम देखें कि पैकेट पर लिखी जो भी सामग्री होती है उसकी लिस्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है उसका नाम शुरुआत में लिखा होता है। अगर शुरुआत में ही शुगर, तेल या कृत्रिम जो भी चीज़ें हैं उनका नाम ज़्यादा हो तो फिर हमें वहाँ सावधान होना चाहिए कि ये चीज़ जो है वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में जो एक्सपायरी डेट है वो भी देखना भूल जाते हैं। लेकिन अगर एक्सपायरी के बाद भी कोई खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो है वो हो सकता है, इसलिए एक्सपायरी डेट जो है वो देखना ज़रूरी है। और फूड लेबल जो है, जो भी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं वो सारी चीज़ें देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि फूड लेबल पर जो न्यूट्रिशन चार्ट है वो भी हमें देखना चाहिए। इसमें लिखा होता है कि कितनी कैलोरी है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना इसमें जो है वो शुगर मौजूद है। कई बार जो कैलोरी लिखी होती है वो पूरे पैकेट की नहीं बल्कि एक छोटी सी मात्रा यानी सर्विंग साइज की होती है। अगर हम पूरा पैकेट खा लें तो कैलोरी भी कई गुना बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आज की जो भी युवा पीढ़ी है सबसे ज़्यादा पैक्ड फूड खाती है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस के बीच जल्दी में लोग वही चीज़ें चुनते हैं जो तुरंत मिल जाए। लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे कुछ भी खाते रहेंगे तो इसका असर जो है वो धीरे धीरे हमारी सेहत पर पड़ सकता है। जैसे हमने बात की कि स्लीप साइकिल और संतुलित जो भी प्लांट बेस्ड डाइट है वो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है, और उसी तरह जो है वो सही भोजन चुनना भी हमारी हेल्थ के लिए उतना ही जरूरी है। और सही भोजन चुनने की शुरुआत होती है फूड लेवल पढ़ने की आदत से। अगर हम फूड लेवल पढ़ना सीख जाते हैं तो फिर जो वो सही चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए होगी वही हम खरीदेंगे। मान लीजिए जैसे कि दो फ्रेंड्स हैं, वो बाजार जाते हैं, तो पहला जो दोस्त है वो सिर्फ विज्ञापन देखकर एक ड्रिंक खरीद लेता है। फिर जो दूसरा दोस्त है वो पहले उसका फूड लेवल पढ़ता है और देखता है कि उसमें शुगर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वह दूसरा बेहतर विकल्प है वो चुनता है। और यही छोटी सी जागरूकता जो है वो हमारे फ्यूचर में हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है वो लाभ दे सकती है। अब हम देखें कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि ऐसे हर पैकेट वाला खाना जो है वो ख़राब ही होता है, लेकिन ज़रूरी ये होता है कि हम समझदारी से जो है वो अपने खाने का चुनाव करें। कुछ पैक्ड जो फूड है वो पोषण से भरपूर भी हो सकते हैं, बस हमें जो है वो सही जानकारी पढ़नी आनी चाहिए।

0: जब भी कोई हम नया खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो सिर्फ 20-30 सेकंड निकालकर उसका लेबल पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे ये जो है अब जैसे हम शुरू कर देते हैं तो ये फिर हमारी आदत बन जाएगी, और अब जब भी ज़्यादा जागरूक उपभोक्ता जब बन जाएंगे तो आपको फिर ये महसूस होने लग जाएगा कि हम जो भी चीज़ें खरीद रहे हैं उसका फूड लेबल जो है वो पढ़ना हमारे लिए बेहतर साबित होगा। क्योंकि फूड लेबल सिर्फ पैकेट पर लिखी जानकारी नहीं होती, बल्कि हमारी सेहत का जो मार्गदर्शन है वो वहीं से शुरू होता है। अगर हम समझदारी से भोजन चुनेंगे तो हमारा जो शरीर है वो भी स्वस्थ रहेगा और हमारी जीवन शैली है वो भी बेहतर बनी रहेगी। इसलिए स्वस्थ शरीर की जो शुरुआत है, यानी कि स्वास्थ्य की जो शुरुआत है, वो जागरूकता से ही होती है। इसलिए जब भी अगली बार हम कुछ खरीदें तो हमें ये याद रखना है कि स्वाद के साथ साथ उसकी जानकारी जो है वो हमें रखनी ज़रूरी है, और जो फूड लेबल जो है वो पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है। और एक म्यूजिकल ब्रेक जो है वो भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मनोरंजन जो है वो प्रोग्राम में साथ साथ बना रहे तो हमारे श्रोता हैं वो भी हमारे साथ बने रहते हैं, और तभी आपको लिए चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।
1: हाँ
2: क्या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है?

दोस्तों मुस्कान सिर्फ चेहरे की खूबसूरती नहीं बढ़ाती बल्कि दिल और दिमाग को भी सुकून देती है। जो लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लेते हैं, जिंदगी भी उनके साथ मुस्कुराने लगती है। इसलिए अपने बिजी टाइम

थोड़ा सा वक्त जो है वो खुद के लिए निकालिए, अपनों के साथ बिताइए और खुलकर हंसना कभी भी मत भूलिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर के साथ खुश मन भी जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम देखते हैं जब भी हम तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारी हंसी भी जो है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये भी हमारे स्वास्थ्य का एक हिस्सा है कि हम खुश रहें। हमारे जब भी खुद ये चीज़ महसूस करते हैं कि जब हम अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, तो वो चीज़ जो है वो हमारे दिमाग को यूँ कहें कि एक टेंशन से जो है वो दूर करती है, साथ ही साथ मन में एक सुकून सा रहता है और हमारा मन जो है वो खुश रहता है कि हाँ, हमने अपनी जो बातें हैं वो अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने दोस्तों के साथ शेयर की है। और साथ ही साथ यूँ कहें कि जितना ज़्यादा हमारे शरीर के लिए भोजन है, स्लीप साइकिल है, या फिर फूड लेवल पढ़ना, जानकारी जो है वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा जो है खुश रहना भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम खुश रहेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो हम स्वस्थ भी रहेंगे। कई बार हम देखते हैं कि एक जो हम अगर सोच के देखें कि एक व्यक्ति जो है वो रोज़ बहुत तनाव में रहता था, धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया, तो उसका जो तनाव है वो बढ़ता ही गया। फिर उसको जब चीज़ें महसूस हुई तो फिर उसने वापस से थोड़ा थोड़ा जो टाइम है वो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बिताना शुरू किया। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसका मन जो है वो पहले से ज़्यादा हल्का और खुश रहने लगा। यानी कभी कभी जो छोटी सी मुस्कान जो है वो भी बड़ी दवा बन सकती है। इसलिए हमें जो है वो हमेशा खुश रहना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएंगी लेकिन मुस्कुराना और सकारात्मक रहना हमें जो है वो मजबूत बनाता है। इसलिए हमने सिर्फ हंसना सिर्फ हमारे लिए एक मजाक नहीं है बल्कि हमारे स्वस्थ जीवन के लिए एक ज़रूरी हिस्सा भी है। इसलिए कभी भी जब हम दोस्तों के साथ, हमें बैठना चाहिए, परिवार से बातें करनी चाहिए, बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए और खुलकर हंसना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ काम और जिम्मेदारियों का नाम नहीं है दोस्तों। अगर मन खुश रहेगा तभी जो है हम सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमेशा जो है वो अपने खाने का ध्यान रखिए और अपने साथ ही साथ अपनी नींद का ध्यान रखिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है, उन सबका ध्यान रखिए और हमेशा जो है वो हंसते रहिए ताकि हम जो है वो अपने आप को जो है वो फिट और हेल्दी जो है वो महसूस करते रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर के साथ जो है वो खुश मन उतना ही ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों हमेशा जो है वो स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रोग्राम युवाणी जो है वो भी सुनते रहिए। फिलहाल जो है वो प्रोग्राम से जाने की इजाज़त दे कोमल दैया को। नमस्कार।

युवा श्रोता, अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी FM 102.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हो चुके हैं। लीजिए, पेशे खिदमत है कार्यक्रम विवरण।

आपसे कुछ ही देर बाद शाम 6 बजे आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार होंगे शाम 6:05 पर। FM चूरू के स्टूडियो से आप सुन सकते हैं देशभक्ति फिल्मी गीत, समय रहेगा शाम 6:10 का। आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले किए जाएंगे संस्कृत में समाचार शाम 6:20 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेगा आकाशवाणी केंद्र जयपुर से शाम 6:30 पर। जिले की चिट्ठी का प्रसारण होगा शाम 6:40 पर और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती और गृहस्थी, समय रहेगा शाम 7 बजे का। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता सुनेगा FM चूरू से रात्रि 8 बजे। समाचार संध्या

और न्यूज 8 9 रिले किए जाएंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रात्रि 8:45 पर और रात्रि 9 बजे। कार्यक्रम बाता ही चाले सुनेगा FM चुरू से रात्रि 9:15 पर। ईमेल्स पर आधारित राजस्थानी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गोरबंद FM चुरू से आप सुन सकते हैं रात्रि 10 बजे और रात्रि 10:30 पर लुत्फ उठाइएगा

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आपने जाना हमारे इस केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में।

FM 107 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार होंगे शाम 6:05 पर। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नए सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है

पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी

0: चाहे वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निःशुल्क

केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा

पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की।

0: यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। शाम के 6:30 अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक देश भर में 40 लाख मकानों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। और राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों से लू और तपिश से मामूली राहत, आज और कल अधिकतर स्थानों पर आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट।

मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने देश की सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने आज नीट पेपर लीक मामले में दायर याचिकाओं को लेकर भी सुनवाई की। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि इस मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। इन याचिकाओं में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। अब इस मामले की

0: अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुनर्परीक्षा उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। डीडी न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने आश्वस्त किया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निचले स्तर पर प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता है। आज गुवाहाटी में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सेवा से समृद्धि क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। श्री बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर व्यक्ति तक सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि गांवों में हर व्यक्ति तक सुशासन और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में साझा सेवा केंद्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यशाला में राजस्थान सहित 7 राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। राजस्थान में राज्यसभा के 3 सदस्यों का निर्वाचन होना है। नाम निर्देशन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को की जाएगी। 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान होने की स्थिति में 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सभी जिलों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। श्री गहलोत आज जयपुर में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 89 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स हैं। इनमें से 96% पेंशन धारकों का सत्यापन हो चुका है। बैठक में विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टीमों ने आज अजमेर और नीमराना क्षेत्र में एक साथ कार्रवाई करते हुए कुछ स्थानों पर छापेमारी की। सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बल भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई संदिग्ध गतिविधियों और कुछ लोगों के आपराधिक नेटवर्क से जुड़े इनपुट के आधार पर की गई। NIA की अलग अलग टीमों ने अजमेर शहर और नीमराना के कुछ इलाकों में संदिग्ध ठिकानों पर दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य सामग्री की जांच की। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई। हालांकि एजेंसी की ओर से आधिकारिक तौर पर मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2000

0: 26 के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के निंदण में जल संरक्षण कार्यों में श्रमदान किया। इस अवसर पर उन्होंने वन विभाग की ओर से आयोजित इको ट्रेल ट्रेक का भी उद्घाटन किया। वन मंत्री संजय शर्मा भी वहां मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर जिले की अमरगढ़ ग्राम पंचायत में कलश यात्रा, पीपल पूजन और पौधरोपण गतिविधियों के साथ पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए। जैसलमेर की भणियाणा पंचायत समिति में पारंपरिक लोक संस्कृति और धार्मिक आस्था के अनुरूप पीपल पूजन किया गया। ग्रामीण महिलाओं ने मंगल गीतों के साथ कलश यात्रा निकाली। झुंझुनू जिले के चिड़ावा क्षेत्र के बिलावड़ी जोहड़ में श्रमदान कर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों को जल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर उनकी सहभागिता बढ़ाना है।
1: वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 25 तारीख से 5 जून तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी खुशी है कि बहुत ही अच्छे माहौल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इसके बारे में और बेहतर स्थितियां होगी, लोग इससे जुड़ेंगे। मेन समस्या पानी की बताई गई है, पानी लेकिन बताया ट्यूबवेल सक्सेसफुल नहीं है, तो जो पुराने जो रिसोर्सेज थे उसको कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, इस बारे में बात करके प्रयास करेंगे कि जो इतनी मेहनत से लोगों ने पेड़ लगाए हैं उन पेड़ों को बचाया जाए। समय लगेगा लेकिन मुझे विश्वास आने वाले समय में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा।
0: अभियान के तहत सिरोही में CSR कार्यशाला रखी गई। इसमें अभियान के उद्देश्यों, जल संरक्षण गतिविधियों और जन भागीदारी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। चूरू और पाली सहित अन्य जिलों में भी जल चौपाल, स्वच्छता अभियान, तालाबों और जोहड़ों की साफ सफाई और जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम रखे गए। प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियों से लोगों को सूरज की तपिश से राहत मिली है। कई जिलों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि जैसलमेर और फलौदी में आज भी तेज गर्मी का असर रहा। अन्य जिलों में दिन के समय तेज धूप रही, लेकिन दोपहर बाद कई हिस्सों में तेज हवाएं, आंधी और कहीं कहीं हल्की बारिश के समाचार हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने आज से आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर तथा कोटा संभागों में कुछ स्थानों पर तेज अंधड़, हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कई उत्तरी पूर्वी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। कल भी राज्य के ज्यादातर जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं।
2: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में पिछले 24 घंटों में

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने का आज अंतिम दिन है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक देश भर में 40 लाख मकानों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। और राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों से लू और तपिश से मामूली राहत, आज और कल अधिकतर स्थानों पर आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मनीष व्यास ने तैयार किया है। जैसलमेर के इकोसिस्टम का गौरव और राज्य पक्षी गोडावन के संरक्षण में जिले को खास उपलब्धि हासिल हुई है। आधुनिक तकनीक की मदद से गोडावन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जिले का सुदासरी गोडावन संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा

0: रामदेवरा में भी गोडावन का आधुनिक प्रजनन केंद्र चलाया जा रहा है, जिससे इनकी संख्या 80 के करीब पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावन संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि कभी गोडावन राजस्थानी इलाकों की पहचान हुआ करता था, किंतु एक समय में इनकी संख्या बहुत कम हो गई और ये पक्षी विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए। अब इनके संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि 21 मई को गोडावन दिवस मनाया गया। इसे लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर में विभिन्न आयोजन हुए। वन मंत्री संजय शर्मा ने डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने गोडावन प्रतिमाओं का भी अनावरण किया। जैसलमेर जिला इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। यहाँ दिन का तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया। सूरज की तपिश और गर्म हवाओं के झोंके लोगों को परेशान कर रहे हैं। झुलसाती गर्मी के कारण पर्यटन व्यवसाय भी थमासा नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की ओर से लोगों से खास ध्यान रखने की अपील की जा रही है। साथ ही विभिन्न संस्थाओं की ओर से जिले में परिंडे लगाए जा रहे हैं। सरहदों पर देश की सुरक्षा में जुटे सीमा प्रहरी अंगारे बरसाती गर्मी में भी मुस्तैदी के साथ चौकसी कर रहे हैं। जिले के दूरस्थ इलाकों तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें स्कूटी की सौगात दी गई है। इससे दूर दराज के गांव ढाणियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 50 ईवी स्कूटी का वितरण किया गया। जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने इन स्कूटियों का वितरण किया। ये पहल नीति आयोग के फंड से शुरू की गई है। इससे दुर्लभ भौगोलिक परिस्थितियों में ANM की आवाजाही आसान हो सकेगी। इससे गर्भवती महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण रोगियों तक टीकों और दवाइयों की पहुंच सुगम हो सकेगी। इस मौके पर CMHO डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल ने कहा कि इससे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की फील्ड विजिट में तेजी आएगी और इन सेवाओं की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी। जिले को 100 चिकित्सा और स्वास्थ्य उपकेंद्र की सौगात मिली है। बीते दिनों चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने जैसलमेर में ये घोषणा की। गोवट ग्राम पंचायत में जनसुनवाई करते हुए चिकित्सा मंत्री ने ये ऐलान किया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आगाज गड़ीसर सरोवर से हुआ। गंगा दशमी के अवसर पर आयोजित समारोह के माध्यम से अभियान की शुरुआत की गई। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान में वर्षा जल संरक्षण, जल स्रोतों की सफाई और मरम्मत सहित कई काम किए जाएंगे। लोक देवता बाबा रामदेव की स्थली रामदेवरा देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जैसलमेर और रामदेवरा रेलवे स्टेशनों का तेजी से कायाकल्प किया जा रहा है। यहाँ यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं और बेहतर बुनियादी ढांचे तथा स्थानीय संस्कृति विरासत का मिश्रण देखा जा रहा है। रामदेवरा स्टेशन पर देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुगम और सुरक्षित व्यवस्थाएं की जा रही है। वहीं जैसलमेर रेलवे स्टेशन का ऐतिहासिक और सामरिक रूप से बड़ा महत्व है। इसे देखते हुए स्टेशन पर आधुनिक प्रतीक्षालय, विशाल पार्किंग, एस्केलेटर और मुफ्त वाईफाई सुविधा विकसित की जा रही है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद ने मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत शहर के चप्पे चप्पे पर करीब 250 हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। जिले में पिछले दिनों वाटर हॉल पद्धति से वन्य जीवों की गणना की गई। इस दौरान जल स्रोतों पर चिंकारा, नीलगाय, जंगली मरुबिल्ली, लोमड़ी और मोर सहित विभिन्न जीवों की उपस्थिति दर्ज की गई। जैसलमेर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। सुप्रीम कोर्ट देश री सगली हाई कोर्टा ने सुरक्षित राखी जिया फैसला 3 महीना री मियाद माए सुनावण रा हुकम दीना। PM सूर्य घर योजना रा तेज हाल ताई देश रा 40 लाख घरां रे छत माथे सूरज री रोशनी उं बिजली बनावण री मशीना लगाई ची। प्रदेश माए सत्यापन नी करा सक्या पेंशन लेवण वाला रो आवता 15 दिन माए सत्यापन करायो चावेला। और राज्य रा कुछ हल्का माए आंधी बारिश हूं लू और तपन हूं थोड़ो आराम मिल्यो।

0: द्वारा कुछ हलकामाए शंका वाली ठोणा कागजात इलेक्ट्रॉनिक और दूजी सामग्री री जांच कीनी और जरूरी पूछताछ करी जी। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 रा तहत राज्य रा न्यारा न्यारा जिला माए पानी और आबो हवा ने बचावन सारू मोटा पैमाना माथे जाग जगावन रा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर कने नींदड़ माए पानी बचावन रा कामा रा तहत श्रमदान कीनो। ई मौके वे वन विभाग री ओरों इको ट्रेल ट्रैक रो उद्घाटन कीनो। कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा ही मौजूद है। सवाई माधोपुर जिला री अमरगढ़ ग्राम पंचायत में कलश यात्रा पीपल पूजन और पौधारोपण सागे परिंदा सारू परिंडा बांधी जिया। जैसलमेर जिला री भणियाणा पंचायत समिति में पीपल पूजन करी जियो और महिलावा मंगल गीतां सागे कलश यात्रा निकाली। झुंझुनू जिला रा चिड़ावा हलकारा बिलावड़ी जोहड़ माए श्रमदान कर और पानी बचावन रो संदेश दियो चियो। ई मौके जिला कलेक्टर अरुण गर्ग कहो के ई अभियान रो मकसद जनता माए पानी और पर्यावरण ने बचावन सारू जाग जगावन सागे वारी भागीदारी बधावनु है।
1: वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 25 तारीख से 5 जून तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी खुशी है कि बहुत ही अच्छे माहौल में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण इसके बारे में और बेहतर स्थितियां होगी, लोग इससे जुड़ेंगे। मेन समस्या पानी की बताई गई है, पानी लेकिन ये बताया ट्यूबवेल सक्सेसफुल नहीं है तो जो पुराने जो रिसोर्सेज थे उसको कैसे रिचार्ज कर सकते हैं इस बारे में बात करके प्रयास करेंगे कि जो इतनी मेहनत से लोगों ने पेड़ लगाए हैं उन पेड़ों को बचाया जाए। समय लगेगा लेकिन मुझे विश्वास आने वाले समय में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा।
0: अभियान रा तहत सिरोही माए CSR कार्यशाला राखी ची। इन माए अभियान रा मकसद पानी बचावन जुड़िया काम और जनतारी भागीदारी रे बारा माए विगतवार चर्चा करी ची। चूरू और पाली समेत न्यारा न्यारा जिला माए जल चौपाल साफ सफाई रा अभियान तलावा और जोहड़ा नी साफ सफाई और पानी बचावन रे शपथ दिरावन रा कार्यक्रम राखी चिया। अरब मौसम प्रदेश रा न्यारा न्यारा हलका माए आंधी बारिश रे कारण पारो थोड़ो उतरणु तपन कम भी है। दोपहर पाछे कई हलका माए तेज हवा चालन आंधी आवन और कठे कठे हल्की बारिश रा समाचार है। ई बीचे जैसलमेर और फलौदी समेत कई जिला माए आज ही तेज तावड़ो पड़ियो। मौसम केंद्र जयपुर आज आंधी बारिश जुड़ी हलचल माए बढ़ोतरी वेवन सागे। बीकानेर जयपुर भरतपुर अजमेर और कोटा संभाग माए कठे कठे तेज अंधड़ और बिरखा सागे कुछ जगह ओला पड़बा रा आसार जताया है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के काली राज्य रा घनखर हलका माए आंधी बारिश रो सिलसिलो चाल तो रहवन रा आसार है।
2: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में पिछले 24 घंटों में

केंद्र सरकार सोशल मीडिया में से चल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा वां वीडियो ने गलत बतायो है जिनमें इटली री प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जुड़िया मनगढ़ंत दावा और ईरान अमेरिका बीच मध्यस्थता रा बारा में टिप्पणियां शामिल है। पत्र सूचना कार्यालय री तथ्य जांच इकाई रे मुजब डिजिटल रूप बदली जिया वीडियो ने एआई बनाई चियो है। पीआईबी री फैक्ट चेक इकाई रे मुजब श्री मोदी एडो कोई बयान नहीं दिनो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय री हिंदी सलाहकार समिति री मीटिंग लीनी। इन दौरान सांसदा विधायका और आला अहलकारा सागे सरकारी कामकाज में हिंदी ने असरदार तरीका काम लेवन रे बारा में चर्चा करी जी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र

0: और मजबूत बनावनु है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल कहो है कि भारत ने साल 2047 ताई दुनिया री अगाड़ी माली व्यवस्था बनावन रो लक्ष्य नीचला लेवल मथ हर नागरिक ने मजबूत करिया बगैर हासिल नहीं करियो जा सके है। वे आज गुवाहाटी में पंचायती राज मंत्रालय कानियो सेवा से समृद्धि क्षेत्रीय कार्यशाला रा उद्घाटन सत्र में बोल रहा है। वे ग्राम लेवल मथ जनता ने मजबूत बनावण मथ जोर दिनो। श्री बघेल गांवाई हलका माए लोगों ने जिंदगी आसान बनावण सारू हर एक जना ताई सार्वजनिक सेवावां री पूर्ति तय करण बाबत कहो। वे कहो कि गांवां माए हर एक जना ताई सुशासन और न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां रो फायदो पुगावण माए साझा सेवा केंद्र खास भूमिका निभाई है। आखिर माए खास समाचार एक और फेर सुन ले रहो। सुप्रीम कोर्ट देश री सगली हाई कोर्टा ने सुरक्षित राखी जिया फैसला 3 महीना री मियाद माए सुनावण रा हुकम दीना। पीएम सूर्य घर योजना रा तेत हाल ताई देश रा 40 लाख घरां री छता माथे सूरज री रोशनी बिजली बनावण री मशीना लगाई जी। प्रदेश माए सत्यापन नी करा सक्या पेंशन लेवण वाला रो आवता 15 दिन माए सत्यापन करायो चावेला। और राज्य रा कुछ हलका माए आंधी बारिश लू और तपन थोड़ो आराम मिलियो। आज और कल घनखर ठोणा आंधी बारिश और ओला पड़बा सारू चेताई चियो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: FM 102.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बज चुके हैं। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती और

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सूखा कुआ तालाब सब पंछी करे विलाप, लुआ चाले बड़बड़ती मरुधर झेले ताप। कार्यक्रम खेती और गृहस्थी सुनना रहे सगले भाई बेड़ा ने टाबरा ने बड़े बुजुर्गान भाई अयूब खान गोड़
2: और खेता भाई का निशु
1: मोकला मोकला
2: राम
1: राम, राम खेता भाई राम राम।
2: तावड़े को और लुआंगो जिक्र तो कर दियो यो भाई, पने अब बापा बैठा एर अब बादलिया मंडरे जदे जो को थार लो जिक्र है नहीं वो बेमानी लगे यहाँ लगे के अब बादलियो अब बरशोर जकिया जकी तपत है आ तपत की मिट है। पर एक साची बात है यू भाई के तपत की टेम में तपत पढ़ने चाहिए है। पांच सात दिन लगातार लहर ने तावड़िया पड़े है और अमूमन खेती बाड़ियों जुड़ेड़ा शाणा मीने का मन है के 15-20 दिन तो तावड़िया लगातार पढ़ना ही चाहिए। जीव जिनावर आम काम काज को व्यवहार है मिनक को बदले ते प्रभावित हुए क्योंकि 8 बजता ही दिन गए जबकि ताती लागण लाग जाए और 9-10 बजे तो हरेक मिनक के कारोबारी मिनक के चेष्टा करे के किनी जाबते शिरवा बाजार में जको बिणज करनिया हुए बैठे स्थिति हुए के 10 बजे उन ले गए अथन के 4 बजे के बिचारा जगह बाजार खाली सा रहने लाग गया।

0: આવે કોની, અને સપરકર્ણી આંગલિયા પ્રેશાને દાયક ને જકા અણબોળા જીવ હે બાંગલે પ્રેશાને દાયક ભી ગરમીંગા હજાર દુખ હે પણ ખેતીબાડી કાશ તો ખાસ કર જમીન કે સ્વાસ્થ્ય જુડી વાત હોય ની બઠ તો આ તપત હે જકી વરદાન હે
1: બિલકુલ દેખો કેતા ભાઈ બહોત અચ્છી વાત હે કે ભી ખેત કા માયને જે તાવડો પડે તો આપણી ફસલ ને નુકસાન પહોંચાડનારા કીટ બે ભી નષ્ટ હોય और अपनी जमीन की जिकी उर्वरा शक्ति जिकी आपा लाड़ी फसल ले ही भी से कमजोर होगी और जा तपत पड़सी। देखो तपने के बाद में सोनो हुए क्या करे ना कि तप्या बाद का मायने वो सोनो को निखार आवे, तो अपनी धरती का मायने भी देखो किता भाई निखार है वो अगली बिजाई जब आपा बीजेगा बखत सारू बिरखा हो जाओगी तो वो एक निखार आपा ने न्यारो ही नजर आओगो। और आपा अपने स्वास्थ्य की बात करा तो अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी देखो तावड़ो है लुआ है अपने शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। जी हाँ अपने शरीर का जितना भी छिद्र है वह पसीने के रूप में खुले और जब पसीनो आइडो हो आपा कड़े ओटे बैठा तो बा अपन देखो ठंडक महसूस होवे, तो तावड़ो है वो फायदो भी है तो थोड़ी सी लापरवाही कर लिया तो वो आपने नुकसान भी दे सके।
0: देखो बोली तपत है नी काया के लिए तो दुख दे हुए पर भौम के लिए सुख दे हुए और आपा लगट गए आ भगत में महीने डेढ़ महीने में आपा किसाना सा के बतलावा आए वर्ष बतलावा भी बतलावन में गर्मी की जुताई के ऊपर गर्मियों की पाड़ के ऊपर आपा लगातार बात करा
1: बिल्कुल
0: यानी यहाँ बात करा के जमीन को मुंह खोल लगे आपा पाड़ कर दिया डगड़ पाड़ आपा पाड़ कर दिया तो जमीन ने के करनी बे सांस लेना औसान मिलेगो और जका थे बताया जका घातक जका कीट कीटाणु जीवाणु माने जको जमीन के मां बाजड़ा में किनी पहली फसल का मां है नुकसानदायक है तो बाने मरने की स्थितियां में भी आ जाएगी। और थोड़ी घनी अब के तो आंधी भी ठीक चल रही है ने? तो थोड़ी घनी भी आंधी के मां जकी बार रेत उड़े बार रेत भी बा खुडांग मां बैठेगी जकी ऊपर की जकी परत आप माना दो तीन आंगल की जकी परत है बहुत कीमिया परत माने जब परत बा खुडांग मां रहेगी। और फिर है ऊपर में बरसेगो तो में बरसेगो जदे कह करे नी जो किसी जोरदार खिचड़ी मनाई डी है
1: और
0: मां डोई कुर्सी फेर के बिंगे खोटा करी यार फिर ऊपर घी गाल जाए अने तो बिंगो कोई मुकाबलो को नहीं वो सगड़ो तकड़ो खाजो है बेमा बड़ा बड़ा खाजा है जका पन्ने बैठाया बाने तो बागी बात साकी है कि बिशी तैयार करेडी जमीन है मां फिर बिरखा हुआ है तो आ मान लो के पो बारा पच्चीस है पर अगेती पछेती फसलांगो जो को दस्तूर चल रहे है साठी बीज आने के बाद में खास करे तो भी मैं आपने पहली बिया के बदी के जेठ आ गयो और जेठ में छांट होगी तो बाजरी बीज दो देसन बाजरी खास कर और देसन बाजरी खासियत है यू भाई का जड़ गाल की नहीं बा फिर चाहे कितनी आंधी चल और की के बाजरी के पर को फिटो को नहीं होया कह बता अपन होगी फिटो मतलब जड़ गाली फिर जगह छोटे को नहीं चाहे आंधी बिने इन्नू बिने करके जड़ पूरी काट दे बार मतलब तिड़कला सा दो बिंग अमा रुपया तो भी बाजी छाट पड़ता है पाचो बुंटो बुंटो गाल ले वो नहीं और पून चलेगी इल्ली पून का पटकारो इन्ने चिप जाएगी धरती के इल्ले पटकारो इन्ने पड़ जाएगी पण बा आपकी जगह छोटे को नहीं तो जेठी बाजरी कह करे नहीं जो लागत हो जा बा भागी गवे जेठी बाजरी
1: भागी।
0: और आजकल है नहीं आजकल तो यहाँ मान लियो के अगेती फसल सटी फसल गए सगे पोली हाउस को भी आने लग गयो जटे तापमान प्रभावित को नहीं है बटे चाहे 0 डिग्री और चाहे बटे 50 डिग्री तापमान हो बिंग अंदर तापमान भी शुरू हो तो पोली हाउस की फसल आगे मां ईशो जो को बिरखारा बादल मंडेडिया बगत है नी वो बहुत गुणकारी माने जावे।
1: थे कार्यक्रम में बात करी कि जेठ की बाजरी तो आपने बडेरा कया भी करता कि बोलियो जेठा बेटा बाजरी बड़ भागी होय तो कहता भाई अपना जी की बाजरी है बा जेठ की बहुत मीठी और देसी बाजरी की प्रचलन वो परंपरा से अपनी सदियां की परंपरा रही है और ये परंपरा ना आपने कायम रखनी है क्योंकि बखत सारू आपा खेती में जितना भी परिवर्तन करया है वह परिवर्तन आपने देखने मिले और फायदों भी मिले लेकिन जब आपने देसी नाज की बात आवे तो देसी बाजरी को जिक्र खेता भाई जरूर।

0: होवे, तो ई बार अपन है जिको अपन देसी बाजरी है बा जरूर बीजनी है। और एक सागे सागे जहाँ थे अगेती और पचेती की बात, देखो अगेती को काम हमेशा फायदे में हुए, पचेती में तो कई बार क्या हुए के अपा बूढ़ो हो जावे और रह भी जावा, तो बखत के पर आपा बिजाई कर लिया तो अपनी फसल है वह आपा ने सावल मिले।
1: अयो भाई दो स्थिति है, एक तो आप मान लिया के जो देश नाज है बी नाज की पुठी कीमत आई है, घड़ी है नहीं घड़ी को जिया सुइयो फिरे नहीं बिया फिरे जो पेंडुलम जकी थ्योरी सामाजिक बदलाव की या व्यवस्था के बदलाव की बात है, जिया बा घड़ी को सुइयो फिर गए बारह चाले और वो फिर गए पुठो बारह पर आज जागो नहीं वे है नहीं। तो आज की देश स्वरूप वो भी फिर गिर गए रापा बांध बांध का कृष्णा में बाजा आई ले लिया बाई ले लिया ये कर लिया बे कर लिया और फिर आखिर में आ गया आगता हो गया पुठे बैठे आप भी सुइया गन आ गया देश नाज को कोई मुकाबला को नहीं, दुनिया मानन लग गई और दुनिया इस स्थिति होगी देश मोटा नाज गए पर जोर देन लग गई और दुनिया में जका बड़ा संस्थान है बह दुनिया ना कहन लग गया कि आने जागरूकता के लिए कोई दिन मनाओ कोई साल मनाओ है नी। उद्देश्य नाज के कने मोटे नाज के ने पूठी जनता किया बाट जकी बीमारियां हो जको संकट को जको सगलो दौर है वो गायब हो जाए। तो बीच चीज ने समझ गया देसी नाज हरेक जागरूक आदमी की मेर में आ गयो, वो आ सोचन लाग गयो के बाजरी भी मिले में कि नहीं मिले तो देसन बाजरी मने मिल जाए सटीर भी टाइप की बाजरी नहीं मिले मने जे दाल के लिए मूंग मोट भी मिले तो बे भी किनी देसी देसी मिल जाए। तो वो भी बस समझ होई और भी समझ के कारण भी ने भाव भी डेटा मिलन लग गया, जका किसान है जागरूक किसान है विदेशी बीज को प्रयोग करे और बाजार है हाथों आत्मा ने लेवे भाई 2000 रुपया भाव गए जिकी चीज बिकती है बिंग जब 3000-4000 रुपया दाने बाने भाव मिले तो औसत वो बराबर हो जाए। और खांड जगह की लिए बात करा तो आपने घर की स्थिति की बात करा नहीं, खासकर आप मान लो काश्तकार अपना खेत बेचा तो अपने तो आता चेष्टा करनी चाहिए कि भाई व्यापार की दृष्टि बाजार की समझ के हिसाब हूँ और नाज का नेप के हिसाब हूँ अने वो बीज वो नाज ज्यादा हुआ तो वह आप केवरो आप उन्नत तकनीक का बीज ले लिया पर देसी को जो प्रयोग है वो अपने घर जोगो तो आप करा ही करा अने आ चीज तो लेनी चाहिए। और रही अगेती पछेती की बात तो आपने इलाके में ओ आई बरसांगो जो को प्रचलन है जो को आपने रबी और खरीफ मोटा मोटे दो ही फसल माने गई और आप चूरू के इलाके ने देखा तो खरीफ फसल ही मोटा तरीका है, रबी में भी घणो कसकसवाड़ घणो कोनी बैठ रही हो क्योंकि बराने खेती है और बराने खेती में चीणेंगो और को प्रयोग है जो को बहुत कम हो रहा है कम होने लग गयो पण रबी खरीफ के सागे जायद और अगेती पछेती को शुरू पे बीजे पानी को प्रबंध न बैठे किसान आ गयो तो ने तो अगेती नुकसानदायक है ने पछेती नुकसानदायक है। अपने थे पछेती की था ने जिस कोई का पछेती कई पर नुकसानदायक रह जाए पर नुकसानदायक इंगे रह लिए रह वे कि बाजार की समझ अगेती पछेती के सागे होनी बहुत जरूरी है। अपा समय पहली कोई चीज ले रहा या मान लो खास करे अगेती अपा सब्जियां की बात कर ली है तो अगेती सब्जी यही बात कर ली तो सब्जी चलन पहले अपना सब्जी ले आके खड़ी कर दी बाजार में पर भाई सब्जी फिर बिकेगी किन्ने बांगो विपणन किन्ना होगो बांगे भाव के होगो बाचे जो है और अगेती के ऊपर तो टूट के पड़े
0: टूट के पड़ेगा
1: लोग नहीं पर पावनता ही होगी। एक तो वो कारण होगा अगेती में पछेती को हो पूरी बे 3-4 महीना बाद चीज खा के ओगर के फिर भी चीज में है पर फिर भी स्थिति है कि बिंगो भी आपको बाजार है अने आप अपनी पसंद है कई ने आके आज तो चिणाई दाल को नहीं बनाई गई चिणाई दाल बनाया बोला दिन हो गया कई ने मूंगी दाल को कोटो है मूंगी दाल को नहीं बना हरेक व्यक्ति की तस्वीर आप आपकी हुए और भी तस्वीर में बिंगो जी करे आज सब्जी हुए तो बहुत ही बढ़िया हुए तो पछेतिया रे फसल बह के करे नी चोइस करके चुनगे लोग फिर भी पछेती का नहीं आवे यार आ तो अब भी मिल जाए तो ठीक रहे है नी। तो वो स्वरूप आपने समझना है बा मांग कट है और भी मांग आधार के ऊपर आप बाजार तानी पूक बना रहे को निया और औसत देखे नहीं अयु भाई तो औसत देखे अगेती पछेती का प्रयोग देसी का जगह प्रयोग करने जगह किसान है वह किसान औसत रूप ज्यादा लाभ की स्थिति में है।
0: बिल्कुल। तो मोटो काम किसान को है कि भी अपन ज्यादा से ज्यादा लाभ क्या मिले, तो ज्यादा से लाभ लेने के लिए समय पापा बिजाई करा, वे समय के ऊपर आप बाजार कमाए बेचा अपन चोखा भाव मिले। तो खेती बाड़ी है बा आपा अपने हिसाब बिरखा के सागे, और बिरखा के सागे अपने पशुधन ने भी आपा सागे जोड़ ले। तो देखो शुरुआत के मायने देखो पशुधन ने भी देखो बरानी क्षेत्र के मायने हरे चारे की उपलब्धता भी समय के ऊपर हो जावे, और दिनोड़ी है जिकी अपने जिको दूध है बाकी इनकी है जिको बढ़ा के देवे। तो देखो अगेती है बा हर जगह आपा ने फायदो देवे
1: भी। ए, ए, सागे सागे आप भी रखनी चाहिए अगेती पंचेती में भी किस्म की विविधता रखनी चाहिए है ना भाई। उन्नत किस्म की आप बात करी तो बहुत स्वाभाविक है सगड़ा प्रयोग में उन्नत किस्म आ गई, पर विविधता हो नहीं विविधता को अर्थ हो कि आप अगेती एक ही सब्जी में मान लो आप अगेती आप टमाटर लिया है काकड़ी लिया तो आप सोच ली कि टमाटर टमाटर की खेती चेप दी आप अगेती में एर कई बार टमाटर को भाव है या बाजार अनुकूल मिलो को नहीं या बाजार में ज्यादा आ गया तो फिर बसंकट की स्थिति होगी नहीं। तो विविधता में होगी क्योंकि जिक्की टाइम में अगेती फसलांगे में जिक्की विविधता है आप बैठे काकड़ी भी लाया आप बैठे मिर्च भी लाया आप बैठे टमाटर भी लाया इन ढंगी जिक्की आप कदूबर की जिक्की सब्जी है जिक्की सगड़ी ले गया तो फिर वह दस बांध की जिक्की सब्जी आ गई बने दस बांध का ग्राहक मिलेगा और एक जे फसल टूट रही है नी तो बिंगो घाटो दूसरी फसल आज की पूर्ति पूर्ति कर देगी।
0: तो विविधता भी अपनी खेती बाड़ी को मुख्य हिस्सो है।
1: हाँ, और दूसरो और है विविधता का मां ऐसा बादल मंडेड़ा है नी बिंगो तो कोई मुकाबलो को नहीं है जिस और अरे बात है तपत के पछ जे बादल मंडे बांगो कोई मुकाबलो को नहीं और देखो बातांग पछ जे कोई लोक रचना सुन जा बिंगो भी कोई मुकाबलो।
0: अब देखो खेता भाई थे कार्यक्रम में शुरुआत आप तावड़े से करी लुआ से करी और अथन का जी को बखत है जी को बादलों को हो गयो तो थे थाली बहुत छोटी सी शिकायत है बापा गीत संगीत के माध्यम से दूर करार सुनावा सीमा मिश्रा को गायडो मीठो सो लोकगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: किसान भाइयों आ संदेश बात छापरो कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत है। संदेश में पहला आप सीमा मिश्रा हो गाइडो मीठो सो लोकगीत सुनियो और खेता भाई आप अपने कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और अपनो जिको बायो हाथ हो पशुधन और ये पशुधन भी देखो गर्मी से जिको बहुत परेशान है, चाहे वह गाय हो चाहे भैंस हो चाहे भेड़ हो चाहे बकरी हो और आका जिका ननड़िया जिका बच्चा है वह भी देखो गर्मी से है जी का परेशान है। तो पशुधन ने आपने बचाने के खातर देखो भी कमाई ना आपने बढ़िया आप स्वास्थ्य किया रहे मैंने के आप ऐसा पोषक तत्व देवा जब को दूध उत्पादन भी बढ़ जावे और गर्मी और सर्दी लड़ने की शरीर में भांगा जी की ताकत भी बढ़ जावे। तो वे के लिए अपन सबसे पहला देखो आदमी ने हो चाहे अपनो पशुधन हो पानी की जरूरत और पानी अपने शरीर के मायने जब जासी तो पानी की पूर्ति हो सी भी के बाद में कार्बोहाइड्रेट है वसा है प्रोटीन है विटामिन है खनिज लोण है ए देखो मानस ने भी चाहिए और पशुधन ने भी चाहिए और गर्मिया के मायने आपको जिको संतुलन है वो अपन अपने पशुधन के लिए बराबर रखना है। जैसे कि अपना पशुधन है वो शारीरिक रूप से मजबूत रहे और शारीरिक रूप से जब मजबूत रहसी तो बांको दूध उत्पादन है खेताबाई वो अपन बढ़ के मिलसी। अपना बढ़ेरा क्या करता कब बोलियो लुआ में तो आखटा को दूध सूख जावे तो अपने भी लुआ से अपने पशु ने बचा कि दूध उत्पादन है वो अपन गिरने नहीं देना है भी के लिए बखत सारू पानी है चारो है बांटो है भी मायने मिनरल मिक्सचर डाल देवा तो अपने पशु को स्वास्थ्य है वो बनियो रहे और बनेड़ो रहसी तो दूध उत्पादन है वो अपन देसी। अब आपा पशु आहार की आपा बात करा तो भगवान दाने के मायने आपा मक्को ले लियो जो ले ली गेहूं को दलियो ले लियो सरसों की खड़ या आपा खड़ जी की आपा दे रहे हाँ बिनोड़ा ले लिया ए चार पांच तरह को मिश्रण कर देवा तो अपनो पशु है बिना बड़ो चाव से खावे और चाव से खासी तो खेता भाई अपनो पशु है वो मजबूत रहसी। एक सागे सागे अपन सूखे चारे के सागे सागे थोड़ो सो आप हरे चारों को मिश्रण भी कर देवा तो अपने शरीर अपने पशु के शरीर के मायने एक तो वे की शरीर के खाने की पूर्ति हो जैसी दूसरो हरे

0: तारे के रूप के मायने अगर आप देना तो वो कुछ हद तक पानी की पूर्ति है वो भी कर देसी। बिग मायने आप हरे चारे की आप बात करा तो बिग मायने बरसीम है, जई है, लोबिया घास है, मक्का है, आप थोड़ा सा मिश्रण कर देवा तो अपनो पशु आहार है वो एक संपूर्ण आहार के रूप के मायने आप भी ने मान सका और बन आप पशु ने देता रहा।
1: एक बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी भाई के भले ही जीव जिनावर हो, भले ही पशु हो, भले ही मानस हो, तावड़ पाले को जो को बंदोबस्त एक सो सही हुआ काया हुआ नहीं, काया की माया एक सी है, बारे को आकार भलाई
0: बदल
1: जा पर मान लो जो को पिंजड़ है नहीं भी में लगे टके सब है सिस्टम एक सो सही हुआ
0: ऑर्गेन जिन आपा बोला
1: आने तो हरेक जीव जिनावर की पशुधन की मानस की ख्यात भिंडी आपने रखनी चाहिए। अच्छा कई कई बार स्थिति हुए के जहाँ मानस का शरीर शरीर कोई फर्क हो, पालन पोषण के परे परिवेश को भी फर्क हो, जो कोटा परे शुरू ही ले गए रे तावड़िया बारे कडेड़ ही कोनी बिना तावड़ो ज्यादा लगे को जिको उगाड़ में ही खेल लो तावड़े में तत्ता तोड़ रहे हो खेत में रहे हो बिंगो शरीर है जो तावड़ो सहन करने की स्थिति रहेगी। और बनावट का आधार पर ही कई काया है जो की ढंगी बनेड़ी होगी धारे ही कोनी, कई काया अंग में कमजोरियां होगी बा थोड़े से जेली कौन सके तो भी अंतर ने छोड़ के औसत रूपों एक सौ सही हुआ है। पर आप भी ध्यान रखनी चाहिए कि शरीर के माँ चाहे पशुधन की बात करा चाहे मिनक की बात करा संतुलित पोषक तत्व बहुत जरूरी है। कह कर रोज को घी घी खा पार को नहीं पड़े, बिंगस आगे दाल सब्जी आटो सगड़ी चीज आपकी जकी जरूरत है जकी वो है। पोषक तत्व में थे बहुत सा नाम लिया, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा है खनिज लवण विटामिन पानी दानी थे बात कर ली सगड़ा वो संतुलित स्वरूप है नी वो समझना बहुत जरूरी है। और पशु आहार के पोषक तत्व की बात करते टाइम आप पहलो शब्द लेवा संतुलित आहार है। तो संतुलित आहार में के हरे हरियो दे दियो और सुको ही सुको दे दियो और बांटो ही बांटो दे दियो वो सगड़ो गड़बड़ है। मिला के जो को स्वरूप है नहीं नेप को जो को स्वरूप है वो अपन देवा और क्या क्या अंगमा चीज है आप भी आपने समझनी पड़ेगी। आजकल बाजार जो को संतुलित आहार नाम जैसे थैली कट्टा या सगड़ी चीज आ रही है भी स्वरूप ने भी छोड़ के अपना ध्यान रखनी पड़ेगी। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें जो को कार्बोहाइड्रेट मूल रूप एनर्जी यानी ऊर्जा हो ताकत हो बिंगो खास स्रोत है
0: हाने
1: वो नाजों चारों नीरों हरे चारों कई स्वरूपों अपने कने आ सके। और प्रोटीन की बात कराने दाल हो खड़ हो सोयाबीन हो चिणु हो आंग लिए वो जरूरी है। और खास कर जिसका दुधारू पशु है वहां में तो पर्याप्त प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। वसा की बात करी तो तेल की बीजेंगी कड़ी कापा जो की पशु आहार की बात करी अंग ऐसा के कई और दूसरा जगह विटामिन हो अंग माध्यम हो आ चीज की पूर्ति हुई है। खनिज लवण कई स्वरूप है कैल्शियम है फॉस्फोरस सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम हड्डी दांतांग लिए बहुत जरूरी चीज है। और ते मिनरल मिक्सर की बात करी खनिज मिश्रण की बात करी बिंग नियमित उपयोग है जो को पूर्ति होगी।
0: बिल्कुल
1: विटामिन ए डी ई बी ए जका समूह है पशुधन में पर्याप्त पूर्ति की अपेक्षा रख है। और जो हरियो चारो है वो लगे टके आंगो विटामिन आंगो स्रोत है। पानी की बात करी तो बहुत पोषक तत्व है तापमान के मामले के माँ पानी है जो को बैलेंस रख है। और पानी में भी साफ पानी और मौसम अनुकूल पानी गर्मिया में तत्व पानी नहीं पियावा सर्दिया में जो ठंडो पानी नहीं पियावा कितो पानी पे वो भी ध्यान रखे क्योंकि पशु तपत में आयो या दुख पायड़ो तिशा मर तो कई कई बरा हुए के कई पशु जिसका नेप ज्यादा भी पानी पी जावे भाई आप पशु की क्षमता जाना को एक बाल्टी पिएगो दो बाल्टी पिएगो और भी तपत में दुखी हो पशु ने आप बहुत सारो पानी मिल दे वो ज्यादा पानी पी जाओ फिर भी हालत खराब खराब हो या फिर आप कहने एक बाल्टी बहुत हो दूसरी बाल्टी भी आप मिले नहीं बेबी बा स्थिति संकट के में हो आथन गए आप लगे टके पशु धना ने दो

0: स्वरूप में खुले में पानी पियावा आकरा, या तो दिन गए बांधण पहली या फिर आथन गए चार पांच बजे आस पास खेड़ के ऊपर पानी पैने आप खुले की मैं चेष्टा करा। वो टाइम इश्यू है कि जबकि बात तलब लगेड़ी है नी आप पेंडो करके आवा तावड़ो सो तलब लगे गड़े कने पुगार पानी दो चार लोटा पानी गड़ गड़ आप पिया ठंडो पानी पी लिया ज्यादा पानी पी लिया फिर आप तड़फड़ा दिन गए इतना पानी पिया जो शरीर मांगे को नी पीतो ही पानी पीतो पी जाएगा। तो पशु धन बी टेम आप खुलो पानी पशु ने पिया तो बेंगो पर बा छूट है जी आप दे जाएगा। और ध्यान रखने चाहिए कि उचित संतुलित आहार आप रखांगा तो दूध की बढ़ोतरी होगी सगड़ो ज्यादा। दूसरे पशुओं की जो की बढ़वाड़ है शरीर विकसित होने का जो को स्वरूप है छोटे पशुओं में वो बहुत अच्छे ढंग हुआ विकास बहुत अच्छे तरीके हुए गो। और बीमारी लागने की जो की क्षमता लागने जो की अनुमान है वो कम हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मां बढ़ जाएगी है ना बीमारियां ने लागने कौन दे वो एक दूसरी ब्यावंत को स्वरूप हुआ कई बार पाल ट्रेन और को संकट हुआ वो संतुलित आहार की कमी के कारण रहे प्रजनन क्षमता में सुधार हुआ बाकायदा आप संतुलित आहार देवांगा। और निरोग पशु पोषक पशु जोरावर पशु स्वाभाविक बात है देखो दूध तो चोखो दे ही दे फायदे को तो सोदो है ही है
1: बिल्कुल। देखो अपा अपने पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अपा ने देखो एरे चारो है वो बहुत जरूरी होवे। एरे चारे के में विटामिन ए डी ए अगर समय पे मिल रही है तो अपने शरीर अपने पशु को शरीर मजबूत होगा तो दूध उत्पादन है वो अपन बढ़ के देवो को दुधारू पशुओं के लिए। और विटामिन ए की पूर्ति अगर अपा ए डी की पूर्ति कर रहा तो ओ जिको बांझपन को जिको अपने किसाना के समस्या है कि भाई आ समस्या भी कुछ हद तक है जी की दूर हो सके। बखत को ऊपर अपनो जिको पशु है वो ब्या भी जावे और वो ताव में आकी समय पर ज्ञापन भी है जिको हो जावे। तो ए पशु को विशेष रूप से ध्यान रखने के खातर आपने संतुलित आहार अपने पशु के लिए जरूरी है। संतुलित आहार आप बखत सारू देता रहा तो अपनो पशु है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ गर्मी से बचाव रोगा से लड़ने की ताकत भी मायने पैदा हो जावे तो अपनो पशु है वो एकदम स्वस्थ रहती। खेता भाई बातचीत तो आप और भी करेंगे अपने इताड़ुआ से। अब एक बार फिर ले चला गीत संगीत की ओर सुनावा एका।

0: अबे डगड़ारा में साथियों की आवाज में सुनियो जिनावरियो और बियो पहली यू भाई आपा बात आपने पशुधन के ऊपर कर रहा के पशु की जकी ख्यांत है बा रखांगा तो स्वाभाविक बात है कि आपने आमदनी में बराबर को साथी होवेगा, पर ख्यांत रखने की बात है नहीं। तो ख्यांत तो आपने खेती बाड़ी की भी अपन खास कर रखनी पड़ेगी। कृषि के मां जगह नवाचार होया है और सरकारांगा जो की प्रोत्साहन योजना या किसाना ने समृद्ध करने की जो की कल्याणकारी नीतियां लगातार जो की चाली हैं, बने समझने की जरूरत है और आ महसूस करने की जरूरत है कि कट्ठे अपन ने मुनापोस कर कौन सी जगह अपन हाथ नहीं गालना चाहिए। हाथ नहीं गालना तो वह के हर एक क्षेत्र के लिए बहुत सी योजना वजह के हर एक क्षेत्र के लिए लागू को नहीं हुआ। अब आपने इलाके में रबी खरीफ की जकी फसलांग या जकी निपजो संभावना हुआ बामगे लाभ जुड़ेड़ी चीज है तो अपन गाल सका। अब आप दलहन फसलों के लिए आप बात करें तो आपने तो मूंग मोठे चनों ए आपने मान लो कि भी आप दलहन फसलों। अब आप उड़द रे मसूर के लिए आप आटे चीज कर ले वहां तो बहुत स्वाभाविक बात है कि बहुत दो दो
1: दोनों काम
0: भाई प्रयोग करने में हिसाब में आप कामयाब हुआ, पर बहुत थोड़ा मुश्किल काम है। और आप भी ध्यान रखनी चाहिए कि भाई कृषि यंत्रांगों पर आपने अनुदान मिल रहे सहयोग मिल रहे कल्याणकारी योजना है अपने कोई ट्रैक्टर के लिए जरूरत ही देगी है बहुत से कृषि उपकरण की जरूरत ही कोनी और आप अपा उपकरण ऊपर अनुदान लेके लोन लेके आप घरे आप खड़ा कर लिया तो पड़े पड़े बांगे जर भी बलाए लागो आने कई कई आ स्थिति हुए कि जहाँ मान लो शिव बहुत शानदार है अपने माल देखिए आप कहवा भी शुरू में बहुत शानदार हो और बाढ़ योजना आ गई तारबंदी योजना आ गई तो आप अभी शिव कटा के भी तारबंदी योजना नुकसान लाभ ले जब घाटे को सौदो हो गयो तो कौन सी योजनाओं जुड़ा कौन सी योजनाओं नहीं जुड़ा वो आ जानकारी रखने आप ने बहुत जरूरी है समझ रखने बहुत जरूरी है। जिया आप बीजाई टेम आप तय कर लेंगे अपने मिट्टी की जांच या अनुभव आधार के ऊपर के इलियावड़ी में गुआर ठीक होगा और इलियावड़ी में मूंग मोट ठीक होगा नहीं ये जमीनी तासी थोड़ी सी ठंडी है तो वो ना जटे वो ठीक होगा बाप समझ ला बा खेत की अपनी समझ हुई, पर नई तकनीकी सरकार की योजना के साथ समझ

0: अपन विकसित हुआ है कि बहुत सा संचार का माध्यम है, रेडियो भी है, टेलीविजन भी है, अखबार भी है, मोबाइल भी है, आगे सगे सगे सरकार एक कृषि मेला को भी आयोजन करे, यानी खेती बाड़ियों जुटे जगह मेला है कृषि मेला को आयोजन करे। और सरकार चाहे कि किसान है जो ज्यादा ज्यादा जागरूक हुए, मेलो भरे जब स्वाभाविक बात है, मेले में अपनी मौज मस्ती भी हुए और मेले में कह रहे नहीं रिश्तेदारों को मिलने को एक मंच भी हो,
1: मिल जाए
0: गोल करने को, कबड्डी खेलने को, खेल को एक प्लेटफॉर्म भी हो, टाबरा के लिए बेरिया गाजर खरीदने को, बिम्बली खरीदने को उत्सव भी हो, तो भी मेला का बहुत सा लाभ आ
1: बिल्कुल
0: है। तो बाकी बात आगे कृषि मेला में सागे स्थिति है।
1: देखो कई बार देखो अपनी सरकार भी कृषि मेला को है जिको आयोजन कर रही है, तरह तरह का किसान है भी मेले के मायने पूछे, बाप आपको अनुभव है भी मेले के शेयर करे। लेकिन देखो किसान है खेता भाई वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से इतो थक जावे, और मेला जब शुरू होवे तो भी मेला में जाके अपनो किसान एक तो मानसिक रूप से वो स्वस्थ हो जावे, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हो जावे, और नई जगह जाके नयो अनुभव लेकर आपकी खेती बाड़ी के मायने को प्रचलन में वो लियावे, तो वो एक मानसिक रूप से मजबूत हो कि अगली जब वो बिजाई करे भी बिजाई के मायने नवाचार करके जो बिजाई करे वो भी नवाचार के मायने भी किसान ने बहुत सारा फायदा है वे मिले। पहलो फायदो क्या वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो गयो, दूसरो फायदो नाके अपने जिका किसाना का अनुभव है, सरकार की कल्याणकारी योजना है, बाकी जानकारी है, बापा ने मिले तो मेला भी एक किसान के हित का हुए, और भी मेला के मायने सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, भी योजना की जानकारी भी बठे से लेके और बे योजना की जानकारी बैंक को फायदो आपके खेती बाड़ी में लेवे, पशुपालन में लेवे, तो एक खेती बाड़ी के सागे सागे अपनो कृषि को जी को काम है वो आराम से है जी को चल
0: भी। एक आ चीज मेला ना अपन आ समझने चाहिए कि मेला में मोटे मोटे स्वरूप तीन चार भाग हुए, तीन चार हिस्सा हुए, अंग हुए भी वहां किसान, किसाना का वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक खेती बाड़ी जो डेटा, कृषि महकमा और कृषि उद्योग है नी, तो अंग बीच को जो को पुल है नी वो मेलो है
1: बना जोड़ दे आपस
0: किसान कृषि वैज्ञानिक कृषि महकमा और कृषि उद्योग आगे जोड़ने वो पुल को काम हो मेलो करे। और खेती के लिए देखो दो तीन चीज है, एक तो नई तकनीक, उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्र, वैज्ञानिक तरीका खेती करने को स्वरूप है ना, के बदलाव आयो सगली जानकारियां जो जरियो है जो वो मेलो मेलो है। और एक और भी है मेले में आप आज का विशेषज्ञ आवेगा या इंडस्ट्रीज का एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कृषि उद्योग का जगह लोग आवेगा बहुत जुड़ आप बात करांगा सिद्ध संवाद भाषा के कर सकांगा, जगह सवाल जवाब आप कर सकांगा, जानकारी ले सकांगा। अच्छा फिर कोई विशेषज्ञ किसान भी आवे भाई, मैं मान लो कोई के खेत में मेरो नवाचार करो थे थारे खेत में नवाचार करो, तो भी मेले में अपन दोनों ने मिलने को मौको मिलेगा, तो एक दूसरे की अपन फसल आगे बारे में बात कर लेंगे, ता खेती क्या करी, बीज किनो ले हो, कितो कोयो, फिर बाजार में बेचो किया, फिर वो अगलो आपकी फसल की देगो, तो आदान प्रदान हो गयो एक दूसरे के किसान को। और एक और भी महत्वपूर्ण समस्या आगे पर भी आप बात कर सका, ज्या फसल में कीट लागना होया, कीट प्रबंधन हो, सिंचाई की कद की स्थिति हुई, माटी के स्वास्थ्य की बात हुई, बाजार की उपलब्धता की बात हुई, आ सगड़ांगों पर आपा मिल बैठ के बात कर सका, न्यारा न्यारा सेशन भी जगह अच्छा डंगों जो के तरतीब हुआ जगह बा किसानों के लिए बा मेला में हुआ। एक और भी हुआ कृषि यंत्र हुआ वह यंत्र जो को नवा नया प्रयोग है, नए नया जो कृषि उद्योग या कृषि यंत्र जी उत्पादक जगह फैक्ट्रिया हुआ बैंगो बीपांगो कृषि यंत्रांगो प्रदर्शनी लागे, तो बठे आपां बा उपकरण ने आंख्या देख सका, टंटोल सका, मोल भाव आपां कर सका, कौन सी कंपनी को कितो सामान मिले, कितो भाव लागे, के स्कीम हुए बहुत जुड़ी जकी योजना हुए जकी लागत की स्थिति है वो है कि वे अच्छा कृषि मशीनरी के सागे कितनी मेहनत मांगे, कितो तेल खा या कितनी और खा, बिंगे सागे लागत की हुए आमदनी की है, बस सगड़ी समझ विकसित कर सका। नया नया जगह प्रयोग खेती बाड़ी में हुआ, खास करे पशुपालन में, अपना डेयरी उद्योग की बात करा, मधुमक्खी पालन में, बागवानी में।

0: तो वो आप कर सका, कृषि में जगह स्वरोजगार है विकसित हो है आंग ऊपर आप बैठे बात कर सका और आमदनी को अतिरिक्त जो जरियो है भी जरिए के ऊपर बात कर सका। एक के मोटे स्वरूप और जानकारी ज्यादा जरूरी है जो कि आप मेड़ांग आप मिल सके बात कर सके बाव है जलवायु परिवर्तन जुड़ेड़ी है पानी संरक्षण प्राकृतिक खेती आ जो की चुनौतियां है आ चुनौतियों निपटने की बात हो सके।
1: जलवायु जी को परिवर्तन हो रहा है खेता भाई वो हमेशा किसान ने जी को सेदे है सेद ते में आपा बड़े वैज्ञानिक आसी जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियां आपा देख सा परिस्थितियां लाग सी के भी जलवायु परिवर्तन का मायने वो अपनी खेती बाड़ी में नुकसान हो रहे तो भी बड़ा आपा अपना कृषि विशेषज्ञ है कृषि वैज्ञानिक है कृषि महकमा का बहुत सा वैज्ञानिक बड़े पूछे तो बस आप संवाद करा के भी जलवायु परिवर्तन अपनी खेती बाड़ी के लिए कितो नुकसान है और नुकसान हो तो भी नुकसान की आपा भरपाई है बाकी यहाँ करा तो भी बड़े भी मेले के मायने आपा ने एक नयो अनुभव है वो आपने देखने मिले। जलवायु परिवर्तन की बात करो तो आपा ही नहीं पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन से दुखी है तो इको भी कठिन कटे अपना वैज्ञानिक है इको समाधान है वो जरूर ढूंढे और ढूंढने में शुरुआत भी कर दी है और वो नतीजो अपना सामने जल्दी ही है वो आन आ रहा है। तो कृषि मेला है ए हमेशा अपने अनुभव का आधार को ऊपर न्यारा न्यारा अनुभव मेला का मायने अपन देखने मिले वह न्यारा न्यारा अनुभव है बापा अपने से शुरू करा अपने पड़ोसी ने बतावा पड़ोसी आगे बतावे तो धीरे धीरे ये मेला को अनुभव है एक से दो और दो से चार और चार से आठ तक जब पूछे तो खेती बाड़ी के मायने निश्चित रूप से जिको नयो परिवर्तन अपन देखने मिले बिग मायने अपने किसान ने जिको बहुत फायदो मिले। मेला की जब बात चल रही है तो खेता भाई देखो समय समय पर सरकार है पशुओं को मेलो भी है वो भी लगावे भी पशुओं के मायने भी अपने है जिको अच्छी नस्ल का पशु है भी बड़ सा अपने मिले तो मेलो हमेशा है जिको किसान के हित को रहे हुए।
0: भाई एक मेलो का फायदो और भी है मेलो मेल है अने थारो मारो दोनों मिले ने देखो मेल है मेलो है अने मेले में थे भी थारी बात को का मैं भी था मेरी बात कहूंगा अने आप की रागनी आप सगड़ा पींगा मां काटा थे थारी पिंपली बजाऊंगा मैं मेरी पिंपली बजाऊंगा बोली सागे बात जगी जो तभी मैं की सुने को नहीं
1: अने एक बात
0: तो इंगली बात तरतीब व्यवस्थाओं पे होवे पी व्यवस्था के मां होवे के मैं कोई नवाचार करे हूं मैं कोई प्रयोग करे हूं या मैं कोई मेरा उत्पाद है वे उत्पाद भी मेले में ले जाके बाकी मैं प्रदर्शनी में इसो ले सकूं नियम अनुसार और दूसरी हुआ है कि मैं जगह प्रयोग करिया एक प्लेटफॉर्म पर जाके मैं बता सकूं तो जगह विशेषज्ञ आएडा हुआ या दूसरा लोग आएडा जानकार लोग है तो बंग माए एक स्पेशल क्वालिटी होगी बिंगी है कभी ओ अच्छो किसान है आप और अनुभव बटोरा तो बिंगो एक डंग प्रचार भी हो गया अपनी चीज अपनी बात बट रखने को मौको मिलो। दूसरा जगह आप जकी ढूंढ कर रहे हैं भाई मान लो मने कोई बाजरी के माँ उन्नत किस्म की या उन्नत मार्केट की या बाजरी मरना जगह उत्पाद है बाजरी का मने बिस्कुट बना के बाजार में बेचना है तो वे किया मनेगा किन्ने बिकेगा की होगा तो मैं बैठे जाऊंगा तो कुछ कोई भी विशेषज्ञ में जुड़े हो वो आपकी बात रखे और बिने मैं पकड़ के बेसिकली बात बिने बुझुआ तो स्वाभाविक बात है समझाओ मतलब आपने कने अनुभव आधारित ज्ञान है प्राप्त ज्ञान है जो ब्यू सागे सागे जो आप भी मेले गए मां जो आयाती जो ज्ञान है वो आप लेके घरे पाचा बावड़ांगा। और एक बात महत्वपूर्ण आ रहेगी के मेले में जावा रिश्तेदारी में जावा कि नहीं जावा जा आप बैठ गया था ही करा बात करा रिश्तेदार दुख सुख की बात करा टबरियांगे भी और बात करा थारा टाबर के कुंड से काम बैठ है की होया मैं वो क्या थारा टाबर की है के काम करे कुंड से पट गया नौकरी कर ली के ब्याह साव ला गयो एक दूसरा आप परिचित हुआ पर बठे भी आप किए के सामाजिक संबंध निर्माण की परंपरा निभा ले कई कई टाबरा का रिश्ता करके आ जाओ आप रिश्तेदारी में गए डिया है ने तो वो अगर संवाद आप नहीं हो तो घरे आप गुंगा बैठे बनाई आप बैठा रह गया तो मेड़ो की वे के संवाद करने को अवसर हुआ एक अभिव्यक्ति ने अगले तक पहुंचानी एक अभिव्यक्ति ने खुद में ग्रहण करनी और जो कि सरकार की जो की योजना है वह योजना से आगे जुड़ गया और देश दुनिया में जगह नवाचार हो रहे वह नवाचार आगे से आगे बात
1: देखो खेता भाई थी कार्यक्रम में बहुत शानदार बात बताई कोई सामाजिक मेल जोड़ वो आप भूल गया और इन सामाजिक मेल जोड़ने जोड़ने के लिए मेला को भी बहुत बड़ो रोल हो ये रोल ना आपा है जिका आगे बढ़ावा और सामाजिक संवाद है वो अपनों अपने घर से अपने परिवार से अपने पड़ोसी से अपने रिश्तेदार से लगातार

आपा बनाता रहा तो अपनो समाज है बेको निर्माण होगो जब समाज को निर्माण होगो तो समाज अपन बहुत कुछ है वो देव को चाहे वो खेतीबाड़ी हो चाहे वो पशुपालन हो चाहे अपनो अपना विचार हो समाज के माध्यम से ही आपने सब कुछ है वो मिलेगो और मिलेगो तो अपनो स्वाभाविक रूप से अपनो विकास होगो। खेता भाई एक बार फिर अपने तालवा ने ले चाला गीत संगीत की ओर सुनावा एक मीठी सी लोक रचना।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती और गृहस्थी FM 102.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं, सुनते रहिए आकाशवाणी चुरू के कार्यक्रम।

110.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों से। गीत को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और शब्द समीर ने।

याद रखेगी दुनिया। श्रोता, अभी इस फिल्म में सुन रहे थे मोहम्मद अजीज और साधना सरगम को। आइए सुनते हैं अनुराधा पोडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाजें। इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और शब्द रचना है आनंद बख्शी की। FM चूरू से श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: FM चूरू से श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आइए सुनते हैं अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज को।

FM जुरू से श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आइए श्रोताओं सुनते हैं सुखविंदर सिंह, अलका याग्निक और आनंद बख्शी की आवाजें।

0: व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे। तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: अंतराल से पहले श्रोता सुन रही थी लता मंगेशकर को फिल्म लम्हे में। आइए सुनते हैं कुणाल गांजेवाला की आवाज। संगीत है राजेश रोशन का और शब्द विजय अकेला के।

आज के इस कार्यक्रम गुलदस्ता की आखिरी पेशकश, आइए सुनते हैं दलेर मेहंदी और सुरेश भोसले की आवाजें।

0: दलेर मेहंदी और सुदेश भोसले की आवाजों के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता यहीं संपन्न होता है। FM 102.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले समाचार संध्या। News@9 का प्रसारण होगा रात्रि 9:00। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
3: सबने मिलकर ये तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
1: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस

0: सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
1: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थी

केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। 6ठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया।

न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
2: तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वसीकरण एक मंत्र है तजिए वचन कठोर।
3: कार्यक्रम बाता ही चाला सुनानारा सारा है ताड़वा ने भाई मोन का निसू
2: और पंकज भाई का न्यू
3: मोकड़ा मोकड़ा राम राम राम राम पंकज भाई राम राम
2: मोहन भाई थाने भी राम राम। और देखो बात तुझे थाने एक बात को तो अंदाज लाग गयो ही हो गयो के बात जकी है बा है मानस के बोलने की।
3: बिल्कुल
2: अपा जीवन के मायने के बोला किताक बोला कहिया बोला कठे बोला ऐसी बात जकी है अपना आप में बहुत मायनो रख। ठीक है ने फिर कान है ना कान वो हमेशा मीठ और मधुर सुनना चाहे।
3: बिल्कुल
2: ठीक है ने और कड़वे ने कतई पसंद कौन करे कान। बोलने वाले ने उसके मिनट दो मिनट में कठे कोई सुकून मिलता होगा कड़वो बोल के लेकिन सुनने वाले ने कभी भी सुकून कौन मिला कड़वो सुन के।
3: सही बात।
2: दो चीजों में एक तो आगले का कान जकाई पे भी चीज ने स्वीकार कौन करे बिको मन खराब हो और दूसरी खुद की जबान खराब हो जबान गंदी हो। तो सोच समझ के बोलनो कम बोलनो और मीठो बोलनो। ठीक है ने अपना आप में हमेशा समझदारी को काम है। एक चीज आप देखा हमेशा के दो बात मन भाई के एक तो आवे के कोई भी मानस जको है वो ज्यादा बोले। ठीक है ना। दूसरो ओ है कि वो ज्यादा तो बोले जको बोले सारवान नहीं बोले। मतलब एक तो बात तो है कि ज्यादा बोल रहे और दूसरी बात है कि सारवान कौन बोल रहे
3: मतलब कोई बात
2: मतलब जको बोल रहे है भी को कोई मतलब कौन निकल रहे
3: खाली टाइम खराब कर रहे खुद को
2: हाँ। तो फिर आ चीज हमेशा ध्यान रखने की बात है के आदमी ने कम बोलनो जरूरत के मुताबिक बोलनो मीठो बोलनो। तुलसीदास जी के ना के मीठो जो को वचन है ना वो इतो कारगर हो है कभी वो बिगड़ तो काम बन जाए मतलब थे आगलन थारे बस में कर सको।

0: इसी चीज है, ये है मीठो बोलने। तो पार पड़े जटता ही अपन मीठो बोलने की जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: ज्यादा बोलनो जो को है वो कोई समझदारी को काम को नहीं। कई जना ना अपन देखा ने कहीं बोलने की आदत हो वे, हर बात के मायने टांग फसा सी, जठे जरूरत नहीं है बठा आपकी चौधर कर सी, सो क्यों मैं जाना मन ही करनो आवे मैं कर सका, ई टाइप का विचार रखनिया। तो विषय काम में कोई समझदारी को नहीं, ठीक है ना। राज क्यों है नमन भाई बह महत्वपूर्ण है,
1: बिल्कुल
0: हमेशा इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है कि राज की है बह महत्वपूर्ण भी और अनमोल हो। तो बात जद मांगी जाने जल्दी देनी चाहिए राय ने, बिना मांगे जे अपना कोई राय जाने बा फिर पग्गा में रुलती फिरे बा राय, समझ गया ना, भी राय को कोई भी मतलब को नहीं हो। तो विश्व काम क्यों करनो है,
1: सही बात है,
0: काम करे जो अच्छो करे जो सन बढ़िया लागे, और भी के लिए आगलो चार बार पूछे जे एक बार बतावा आपा कि भाई मेरे तो आ समझ में आवे वो काम इया करियो जा सके, ठीक है ना। तो बोलने की जकी बात है भाभी राय जुड़ेड़ी है देखो, ठीक है ना, कि अपा आपनी जकी राय है बिको कितो को मायनो है, आगलो जो को आदमी है वो अगर अपनी राय ने बराबर तवज्जो दे, अपनी राय ने समझे जब तो भी राय को फायदो है, और आगलो समझे को निर आपा भी चीज के पीछे भागता रहा तो फिर भी राय ना तो चुप रहनो ठीक है,
1: सही बात है,
0: ठीक है ना। फिर बोली की जया बात करा आपा, कड़वो बोलनो और मीठो बोलनो, भाई एक तो बात करी आपा कम बोलो और जितनी जरूरत है भी तो ही बोलनो, दूसरों भी को पहलो ज्यादा बोलनो और सारी इन बोलनो, मतलब कम बोलनो वो तो ठीक है, ज्यादा बोलना को एक नुकसान वो भी है कि हो सके कोई टाइम में इसी बात भी मुंह में निकल जाए जकी सारवान नहीं हो जकी श्याम ले के लिए, लेकिन आपने लिए बस सारवान हो सके, कोई निजू बात है कोई इयाल की बात है जकीन आप लगो के रखा भी झाड़ आइडियो जो विवेक कौन काम करा आदमी को, निकल जा निकल जा तो बे फिर अपन आना टाइम में परेशानी देसी वे चीज,
1: बिल्कुल।
0: तो विश्व काम करनो गलत है,
1: गलत
0: आपको जो को धैर्य है बिन धारण करने की जरूरत है, विवेक जो को है ना भी पर काबू रखो,
1: बिल्कुल
0: अगर भी पर काबू रहसी तो अपन परेशानी कौन रहे, झाड़ आवे ने दिमाग में एक टाइम में एक ही चीज रहे, चाहे थे विवेक राख लियो चाहे थे गुस्सो राख लियो, मतलब चाहे तो झाड़ रह जा चाहे समझदारी रह जा, एक समय में एक चीज आवी रहेगी, अगर समझदारी आवी है ना तो झाड़ को नहीं आवेगी, लेकिन अगर झाड़ आवी है तो फिर समझदारी नुबा को नहीं आने दे, क्यों कि दोनों को विपरीत स्वभाव है। आप यहां बात करा कहा ना बोले इन झाड़ा जाए जी बस की बात को नहीं, इको मतलब कभी को आपके ऊपर नियंत्रण कौन रहा, आपके ऊपर नियंत्रण खो दियो बड़े बस की बात को नहीं, मतलब झाड़ आनो नहीं चाहिए फिर झाड़ आ जाए इन जी बस की बात को नहीं, इको मतलब घटन घटे गलत जगी चीज है वह है,
1: सही
0: बिक बाद में बोलने की अपन जहां बात करा तो ध्यान आ भी रखा के सुनने वालों जको है ना वो के माइंड सेट को आदमी है, नयो आदमी है अड़ाखो आदमी है जब तो अपन भी के स्वभाव को बेरो कौन पड़े, लेकिन अगर आपनो जानकार आदमी है तो अपन लगभग लगभग ई बात को भी बेरो पड़ जाए मोहन भाई के श्याम लगो स्वभाव जो को है ना वो के टाइप को है कब किसी की बात सुनने को आती है,
1: सही
0: अपन यहाँ बेरो पड़न कोई आदमी झाड़ दीवानी हो जब अपन चर्चा करोगे अभी कहा जाके यहाँ सी बोलते ही मत ही झाड़ा जाएगी
1: चिंगरा दी
0: अपन कहा ना आई चीज है चिंगरान वाली के आदमी ने इतनी जल्दी झाड़ा जाएगी वो ई बात ने सुनी झाड़ करी,
1: सही
0: तो इको मतलब जठे अपन स्वभाव को आईडियो गयो बठे कम से कम अपन ओ गो रखा के अपन बे बात नहीं करा
1: की प्रकार की बात सुनने को
0: आती, हां इसी बात नहीं करा जको श्याम लन झाड़ आवे या अपन बिन चिंगरा दियो या अपन कठे कोई नुकसान आ
1: सकती सकती बातें कर दिया कई बार,
0: हां फिर एक खास बात और है मोहन भाई काम की अगर अपन बात करा

0: तो जट्ठे आपा ने जरूरत है आप ही चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि बात आपा अगले सगे जद करा आपा ने जरूरत है तो आपा ने ओ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपा भी माइंडसेट की बात करा आपा अपनी जबान बात करके अपने काम खोलिया काम आपा ने आपा अपनो काम सारण नहीं तो जरिया
1: बिल्कुल
0: अरबी काम ने आपा ही अपने हाथों खोलिया
1: तो टेढ़ी बात करके
0: फिर आ तो मूर्खता ही होगी ने ना समझे वाली नादानी वाली बात है और वो भी कद जब आपा ने आग लगे स्वभाव को बेरो है तो कि आपा इस चीज को जरूर ध्यान रखा कि आपा ने अपनो काम जो है वो कहीं बढ़िया बनाना है कहीं चोखो बना अपनो काम ठीक है ने अब बात है कि बात बोल ली की जे आपा जचावा आपा तो बिग माइन काम की तो आपा तय करी ली आदमी के स्वभाव को हो गयो एक जगह भी बड़ी बात हो मतलब आपा कठे बैठिया कोई कारण का हो है मान लियो व्यासा हो है या के बतावा थाने जे मान लियो बार क्यों आ रहे मतलब बात करने के लिए सही समय और सही अवसर ये दोनों चीज भी महत्व रखे ठीक है ना सही समय और सही अवसर वो भी गणो जरूरी है बात सही है लेकिन कहने को अवसर सही नहीं है बात सही है अवसर सही है लेकिन जगह सही नहीं है तालमेल जरूरी है
1: बिल्कुल
0: अपन काम अगर अपनो निकलवाना है तो अपन सही जगह को चुनाव करना पड़ेगा सही अवसर को चुनाव करना पड़ेगा
1: बिल्कुल
0: अपन की है समाज में रहनी आदमी अमन भाई और समाज में जीवन जीने का नियम बनेड़ा ही मर्यादा बनेड़ी है
1: बिल्कुल
0: अपन वहां को पालन करना पड़े हर मेल का आदमी हो
1: अरबी के अनुसार ही चलना पड़े
0: भाई जहाँ एक मस्करी की बात है कि एक आदमी एक जने का पिस्सा मांगे
1: अच्छा
0: पिस्सा मांगे जदर पिस्सा ओटा लेन भी तकादो करे तकादो करे आगलों बार बार निवेदन करियो कि भाई मेरा पिस्सा दे काल देशियां परसों देशियां आत्मा आऊंगा जब द्यांगा खावांगे भाग के जावांगे कटाई घर छोड़ के जावांगे और जावांगे ए टाइप का जवाब तो अपन वेरो एक मिलता ही रहे यहाँ पर
1: बिल्कुल
0: वो जहाँ बिन कोई समझायो कि चार आदमी बीच में बेचती हूँ ना कोला जा ला जा नहीं ना कोला उन्होंने दूर है वो बिन धमकी दी कि कह तो सावली सी मेरा पिस्सा दे दे नहीं चार आदमी बीच में बेचती करूंगा तेरी जो बोले यार की तो मेले में आईडी है भाई जगह की मेले में बेचती हो आईडी के चार आदमी तो यहाँ लगा भी हूँ बन थे कोई जगह कोई बात कर दो चाहे मांगा कोई पड़े कौन पड़े लेकिन इच्छा मोन भाई आंगले अपन गिरने वाला है एक दो में सगला इच्छा बन जाए
1: सही बात
0: ज्यादा किसा में ज्यादा इज्जतदार बात ने बेलू देनिया आपकी परिस्थिति ने समझनिया घर परिवार की आपकी सब स्थिति ने समझनिया ई टाइप काम है तो भट्ठापन आ जरूर ध्यान रखने की जरूरत है कि आपने जकी बात अभी आगलो जो वो आत नहीं होवे बिल्कुल परेशानी नहीं होवे ठीक है ना अब बात आ रही के बोलनो है कहीं बोलनो है तो कह के बोली एक अनमोल है
1: अच्छा
0: जो कोई बोले जाए बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जाए ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आए ठीक है ना के बोली जकी ने भाई एक अनमोल रतन है
1: अच्छा
0: जके को कोई मोल बनी और समझदार आदमी जको होवे को ने वो किया बोले को बोलने पहले जकी आपको इड़दो है ना इड़दो इन थेया मान लियो के ओए ताकड़ी है इड़दो जको है ना बा ताकड़ी है तो भी ताकड़ी में तोल के एकदम पूरो वजन करके
1: और फिर
0: सब भी नहीं लागो के अब आ चीज की है बा महाराज अब तो कोई आंट को नहीं बुज्जत बोलेगो फिर टाइम मिल गयो इको मतलब सोच समझ के बोले को तोलने को मतलब शब्दा को चयन की शोक है मज की बात बोल रही हूँ ब्यू शाम लगे तकलीफ तो नहीं होगी गे ब्यू वो परेशानी तो कौन महसूस करोगे ब्यू भी की साख क्या नहीं तो नहीं होगी गे ब्यू भी को मन खराब तो नहीं होगोगे मज की बात करी हूँ अभी का खाना सुनने की आदत है कोनी कई चीजा जकी है भाई दिमाग में आएंगी
1: बिल्कुल
0: तो मन की जकी ताकड़ी है बिक मा तोल के और पूरा वजन करके और फिर जकी बात है वा आपने बोलने की जरूरत है। देखो एक कहवत भी है ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए।
1: बहुत जरूरी बात
0: बोलनो के है मिठो बोलनो है ठंडो बोलनो है। आपने बुढ़िया कौन कह रहे हैं कि भाई ठंड रखो यार ठंडा रहो इको मतलब गुस्सो जो को है ना भी पर काबू रखो गुस्सो ज्यादा आनो चाहिए नहीं ठंड रखने की जरूरत है धैर्य रखने की जरूरत है ठंड रखने की जरूरत है। तो ऐसी अति का भला न बोलना अति की भली न चूप और अति का भला न बरसना अति की भली न धूप। दिनांक में देखो जोर को तावड़ो पड़े तो लगातार तावड़ो पड़नो भी कोई सबके लिए चोखो को नहीं और जे बरसन लाए जा मान लो तो ब्याह दब अरे बरसी बो करे तो ज्यादा बरसनो भी चोखो को नहीं। बई समझदार आदमी जको है ने बिने जहां ज्यादा बोलनो जको है वो गलत है भी ज्यादा चुप रहना वो भी गलत है।
1: सही बात
0: है जकी जगह बोलने की जरूरत है और बोलिया काम सरे बोलनो जरूरी है बटे चुप रहना भी गलत है।
1: बिल्कुल
0: तो बटे बोलनो जरूरी है चुप नहीं रहना है जहां ज्यादा बोलनो गलत है भी ज्यादा चुप रहना गलत है।
1: बिल्कुल मतलब सारो एकदम हाँ बराबर राख के चालू
0: भाई सो बातें की सार एक ही है। अपना बड़ा बुजुर्ग कह गया ने कह जबान आई घोड़ा चढ़ावा आई गधा चढ़ावा इको मतलब वास्तव में घोड़ा गधे को मतलब गनी थे लोगों के बीच में समाज के बीच में एक सभ्य आदमी को आ जाओ जबान के पेटे और थे ही अखड़ को आ जाओ लोग आके देंगे नारे वो तो बोली को बैंड है। तो आ ध्यान रखने की जरूरत है कि आप मीठा बोला सोच समझ के बोला कम बोला और करण प्रिय बोला।
1: बिल्कुल बहुत जोर की बात करी और अब आप देखो अपना ये तालवा ने सुनो एक मीठी सी लोक रचना
0: सुनो।

चिमने खा लंगार साथियों की आवाज में गाइडी आ मीठी सी लोक रचना आप सुनी। और मोहन भाई अब अपने कार्यक्रम में बखत वाला गया, बखत बखत री बात कहानी बढ़ने को तो फिर बड़ा बखत बखत री बात।

0: हाँ तो देखो पंकज भाई, एक बार की बात बताऊं, बहुत पुराने
1: बताओ
0: टाइम की बात,
1: बताओ
0: हम्म,
1: बताओ।
0: हजारा साल पुरानी बात।
1: हाँ हाँ तो दिन नहीं लाते गिटार कर।
0: हाँ तो भारतवर्ष को एक बहुत बड़ो साम्राज्य, और
1: हाँ
0: सम्राट हो शत्रुजीत सिंह,
1: अच्छा
0: बहुत ही बढ़िया राजा हो, प्रजा ने हमेशा खुश रख तो न्यायपूर्ण।
1: प्रजावत्सल।
0: हाँ बिल्कुल। और वो चाहतो कि भी के साम्राज्य के मायने भी के नगर के मायने कोई भी दुखी नहीं रहे, कोई भुखमरी से नहीं मरे, सबने दो टाइम को बढ़िया भोजन मिले,
1: भाई
0: सबने
1: कोई
0: काम मिले,
1: उठे भूखो बलाई भूखो सोवे नहीं
0: सोवे
1: कोई।
0: नहीं, सबने बढ़िया काम मिलना चाहिए, बांगे रोजगार को भी ध्यान रखते हो, कोई ना कोई काम दिला तो। तो वो की भी प्रकार को भी चाहतो कुछ भी नहीं रहे, अभी की निगरानी रखने के लिए वो कोई का भरोसा पर कौन रहा, तो खुद देखा करतो।
1: अच्छा।
0: रात ने निकलिया कर तो भेष बदल गया, चारू मेर राज्य के मायने घूम फिर के गलिया के मायने इन्न बिन्न फिर, तो कठे कोई दुखी मिलतो, कठे कोई वाद विवाद मिलतो, तो आग

0: अगले दिन सुबह पहले भी
1: दरबार में बुला ले तो गाजो,
0: दरबार में बुला ले तो तिथि ले तो भी की
1: पूरी।
0: हाँ
1: कुंटो काट तो बात को पूरा
0: बिल्कुल बिल्कुल समस्या कटी रहन को दे तो। तो यही एक दिन की बात रात की, सर्दियों को टाइम हो, भेष बदल के निकलियो राजा।
1: अच्छा
0: और भेष भी बदल के निकल तो पूरा या माहौल बना के या माटी मुटी घेर के खुद को ऊपर मुंह पर
1: पहचान नहीं ले कोई
0: पहचान नहीं ले या लागतो कि सही में या तो कोई भिखारी है या कोई खेती खड़ी आदमी है,
1: मेहनत मजदूरी करनी
0: है, मेहनत मजदूरी आदमी है। तो विश्व माहौल बना के निकल तो नगर का मैंने घूमन लाग रही हो, संकड़ी संकड़ी गलियां इमामाई की निकलन लाग रही हो, बाजार का नहीं को क्षेत्र हो। तो बटू निकलती टेम भी नहीं यहाँ अड़केल की खुशपुसाट से सुनी रात को भगत। राजो सोचो तारा कौन फिर है,
1: अच्छा
0: थोड़ो देखा
1: आगे
0: बढ़ के थोड़ो सो देखियो तो बटे धूनी चास के चार जवान बैठे।
1: अच्छा
0: आप श्री गए बाता चीता लाग रहा
1: दूनो तपरिया
0: दूनो तपरिया। राजा करियो बात तो सुना के करने लाग रहे के बतला रहे आगे जाके सुनियो जब हम से एक जनो करियो के छोटी मोटी चोरी करता बहुत दिन हो गया,
1: कोई बड़ो हाथ मारा
0: कोई बड़ो हाथ मारा नगर का कोई बड़ा सेठ ने साहूकार ने पकड़ा। और एक बार के मायने आपा इशु साहब बिठावा के रोज की आपा ने धक्का कौन खाना पड़ा।
1: हाँ परेशान हो रहा
0: रोज की आज इन मुंह मारियो आज इन हाथ मारियो कोई इसी व्यवस्था बिठावा के चार छह महीना सुतिया खाओ और पी के बाद में ओटा उजुआ। तो कोई नगर को साहूकार कोई सेठ बड़ो भटे चालो। राजा बा की बात सुनी सुन के दिमाग में आई गा अपने नगर के मैं जगी लगातार चोरियां होने लाग रही है उसके बांग पीछे यही चारू जना हो।
1: हाथ उसके
0: रात को टाइम हो रही हो अब रंगिया तो पकड़े की बढ़ जाएगी सीधो ही कह दे तो तो कहते मैं तो यही बात करा बैठे
1: हमारी बतलावा में तो यही।
0: तो राजा तुरंत दिमाग के मैंने एक योजना बनाई माहौल चेंज करियो एकदम से और मुस्कान के सागे हंसतो हंसतो बांका ने बढ़ियो खांसी लेगी बांका ने आगे आगे बढ़ियो
1: टोले मिल गयो बाण लागे
0: अब खांसी लेगी बिन अब जी बढ़ियो जागे बान पूछियो के क्या बैठे हो जवानो के शिकार की योजना बना रहे हो नहीं इतना कहता ही पे चिमक्या कई इतनी रात में चाण चुकी कौन आ गयो।
1: हाँ,
0: अरे कड़ा मारी बात तो कौन सुन ली
1: लीक
0: तो नहीं होगी बात चोरी सही है नहीं हो चोरी करने में पहले दरिया जावा
1: ठीक बात है।
0: तो बेबी चुप हो गया एक बार पर बम से एक जनो हिम्मत करके बोलियो को तू कौन है अचानक ही तू आ गयो हमारे बीच में जब वो कहो मैं थार सा अलग को नहीं राजा कहो बान
1: अच्छा
0: बांको बन गयो मैं थार सा अलग को नहीं मैं भी थारी तरी यही काम करूं चोरी चकारी यार अरे तो क्या है मेरी किस्मत खराब है जब मैं आज अठा हूँ नहीं मैं बहुत लंबो हाथ मारने की योजना बनाई एक बार राजमहल के मायने सेंध लगाई सीधी।
1: अच्छा अच्छा
0: मैं तो किस्मत खराब ही जब पकड़ियो गयो निबी दिन में बात चोरी कर दू।
1: हाँ तो वारा नेरा हो जा
0: वारा नेरा जा आज मैं राजमहल में बैठे हूँ
1: इतो
0: बड़ो हाथ मारियो जब हंसिया चारू जना तू कदे बड़ो हाथ मारियो हो कोई शो काम करियो हो जो का बात बताने में पड़ी है
1: करके
0: दिखा सोचियो आदमी तो सही लागियो आपसी सहमति जताई की ठीक है अब चार तो आ एक ने ओढ़ ले लिया उसके आओ आपने की काम आज
1: ठीक बात
0: चारू लिया बाद में राजा हो थोड़ो साथी दिमाग में पहले से योजना बना रखी। तो राजा चारुआ ने पूछो की भाई अब आप मिलके सागे काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के बारे में अपन पतो भी होना चाहिए कौन सो आदमी काम आसके तो चारू जना बताओ भी की थार मायने योग्यता है अपा कठे कौन सो आदमी ने क्या काम ले इसका बताओ आ गया चारू जो बता दियो चारुआ का नाम हो पहली पोत फकीरा नाम हो एक को
1: अच्छा
0: एक को चमन हो एक को रंगा और एक को रतन हो
1: तो सुन पहली रतन
0: हाँ
1: संगा
0: चमन
1: चमन
0: तो सोम पहली फकीरा हो वो बतायो।

0: का मेरे मायने एक गुण है बहुत तगड़ो का मन दूर से सोनो चांदी हीरा मोती खजानो ना को मन दूर सुगंधी आ
1: जाए पड़ जाए
0: मन बेरो पड़ जाए इस साइड का मैंने खजानो है और मैं सूंग तो बड़ा पूग जाऊ
1: ठीक बात है
0: जब वो कहा तो बहुत जोर की तेरे मायने कला है
1: कला है
0: हा?
1: जोर की कला
0: ये कला है तेरे मायने यहाँ तो तू राजमहल को छुपेड़ो खजानो भी कोई बेरो पाड़ ले को
1: पाड़ ले बिल्कुल
0: आ तो तेरे में बहुत जोर की बात है दूसरे ने पूछो चमन ने के तू बता वो कह मेरे मायने एक इसो दुर्लभ गुण है कम पशु पक्षी जो भी है आंकी मैं भाषा समझ
1: बोली भाषा समझ
0: कुत्ता बिल्ली
1: कौन सो कही आवाज है
0: चमन
1: चमन
0: ए घोड़ा ए आपस के मायने की बात करे तो ए भाषा में समझू जो राजा को हुआ तेरे में तो बीस भी दो कदम आगे
1: आगे की कला है
0: प्रकृति की भाषा समझो तू तो तू तो पहले से ही पहचान जाओ तन बेरो पड़ जाओ कि तेरो जो दुश्मन है वो खींचा है
1: ठीक बात है
0: और कद तेरे ऊपर संकट आना रहे ऐसी सारी चीजें तू पहली बाप जाओ जोर की बात है फिर भाई ये रंगेगी
1: अच्छा अच्छा
0: रंगो कहो को और तो मेरे में कोई नहीं जेब में से एक पतलो सो तार काटियो और तार काट के कहो कि मेरी कला आई है किसी ताड़ो लिया ची लो को लिया चाहे सोना को लिया चाहे पितल को लिया
1: अच्छा अच्छा
0: मैं एक बार भी ऊपर बिलक जाऊ ना तो बिन खोल के छोड़ू फिर
1: वो तो और ही जोर की बात
0: कोई भाई तेरी तो आंगलियां का मायने नहीं जादू है ताड़ो खोद दे मेन चीज तो भाई हो है।
1: सही है
0: फिर को चलो आ भी बढ़िया बात है फिर बारी ये रतन की बिन पूछो के तू बता वो कहो के देखो मेरे में आसान से थोड़ी अलग है मैं अंधेरे का मायने कोई आदमी ने एक बार देख लियो ना फिर मैं भी भूलू कौन चाहे वो लाख आदमियों का मायने आ जाओ लाख पर मेरे से छुपने की कोशिश कर लियो
1: एक बात तो है देखो करें तो मटा चोरी है
0: हाँ
1: लेकिन गुण सम एक
0: एक जदि भी सफल चोर आ तो एक एक हो राजा को वास्तव में दे दो चारू गुणवान हो तो आप चलो योजना बनावा और आप राजमहल का मायने चोरी करांगा चारू एक बार तो खुश होया पण बाके सागर दिमाग में एक बात भी है कि तू तो मार चारुआ से भेद ले लिया कुण समय के गुण है
1: हाँ।
0: तेरी गुण बताई अभी तानी के तेरे में के गुण है तू मारे के काम आओगी चोरी में
1: ठीक बात है
0: जो राजा कहो कि मेरे में आ गुण है कि जब भी आप संकट में फंसांगा कोई समस्या में फंसांगा या पकड़ा जाऊंगा तो मेरे एक आंख के सारे से थारी सजा माफ हो जाएगी थान जिंदगी मिल जाएगी नहीं चारू राजी हो तेरे में तो समझोर की कला है अब तो मैं डरी हुई बिल्कुल ही
1: ठीक बात
0: भाई इतनी जोर की कला है मार चेहरा से जोर की है आंख के एक इशारों तू मान सजम छुटवा देगो मारी जान बचवा देगो
1: हाँ।
0: वो का बिल्कुल
1: तो,
0: अब पांचू भेड़ा हो के नगर की संकड़ी संकड़ी गलिया माई की चाल पड़िया राजमहल का नहीं जी राजमहल का कन्ना पुगया पुगता ही फकीरा हो वो नीचे बैठे और बैठ के जोर सुगंधी लेर बतायो की दिशा का मैंने सोना चांदी को खजानो है तो इन्हें चालो राजा देखियो मन में राजा तो बेरो ही हो कहीं नहीं है राजा देखियो कहे तकड़ा दिए एड़ो सुन के बता दियो कि किन्न जानो
1: ठीक बात
0: का चाल बिनन चाल पड़िया चालता चालता गेला के मायने रात को टाइम और एकदम सुनसान हो सर्दी को मौसम हो तो थान बेरो सर्दियां का मायने एक कील भी पड़े नीचे तो
1: आवाज आवे आवाज आवे
0: तो कुत्ता गुस्सा जोर जोर जान चुकी जब वो चमन हो बिन पूछो कभी कुत्ता क्यों
1: घुस रहा है के बात करे बोल
0: वो थोड़ी देर ध्यान लगा के सुने और सुन के वो चाण चुके भी मुंह को जो रंग वो उड़ गयो
1: चमन को
0: अच्छा? वो कुत्ता घुस रहा है कुत्ता मने वो संकेत दे रहा है आपा जगह पांच चार जना जा रहा ना हम ये राज्य को सम्राट भी है अपना सागर
1: अच्छा
0: सारा आप श्री मकानी देखियो फिर गेलू वो रंगा रतन और भैंसिया जोर जोर से कोई राजा हटके करो सी का मैंने
1: और वो भी चोरी करने
0: चोरी करने राजा तो राजमहल में सुती है पलंग के ऊपर आराम से
1: आराम कर रही
0: है राजा को हटके काम है आज तेरी विद्या फेल होगी ऐ टेकन लाग रही तू जब पढ़ता है राजा भी बात ना संभाली को उसको कुत्तो भूखो आदमी हो वो युक्चुक हो जाए तो जानवर है
1: ठीक बात है
0: तो उसके तने कोई ई संदेह हो गयो आगे बढ़ो अपने बात ना आई गई के मटा आगे बढ़िया आगे जाके देखियो तो वो बड़ो दरवाजो और ताड़ो लागे ला दियो कला दिखाने को टाइम आयो रंगा को वो आपके जेब उतार काटियो और ताड़ो खोल दियो खोल के बढ़िया मायने अब जी मायने बढ़िया भी का मायने तो भी मैं हीरा मोती सोना चांदी का ढेर लाग रही
1: तो
0: देखता ही मांगो आपो खो बैठिया और लालच में आ गया और चारू जना बेग ले गिर आपका दबा दबदबा
1: तो गालो बात की बात

0: आपका बैग भरिया भरकेर एक बैग और भरकेर भी राजा का नहीं करियो का वो तेरो हिस्सो है।
1: अच्छा,
0: ये तो चार भर लिया हमारा भरना जीता वो हिस्सो तेरो है। जब राजा बन कहो कि मन देखो हिस्सो कौन चाहिए मैं तो यही आ गयो थर सागर थे यहाँ करो आपस में बांट लियो चारों जना।
1: अच्छा,
0: और कदे देखांगा क्योंकि मेरी इससे भी बड़ी योजना है दिमाग कमाए।
1: छोटी मोटी चोरी काम करूं मैं संतोष वाला काम करूं।
0: चारू भी टाइम चारू लालच में आए तो सोच विचार वे भी कौन करियो वे चारू आपस में बांटन लाग गया। अब वे बांटन लाग रही अभी टाइम वे चारू बिजी हो गया।
1: अच्छा,
0: भी टाइम राजा एक एक कन्ना जाके बान पूछियो आ तो आप पकड़ ली आज की चोरी। अब मान लियो आगे उजू इसी योजना बनाऊ मैं बड्डी तो कठे मिलांगा आपा। तो चारू जना जल्दी जल्दी पतो बता दियो कम गांव कभी पीपल का कन्ना रूर में गांव से बाहर निकलता है रूर में थोड़ा सा माइली साइड में रूर में चार कन रूर चारू आपको एड्रेस पत्तो दो
1: बता दियो
0: ये तो दिमाग कौन चलो भी टाइम पे सोना चांदी राम मोती सामने पड़े यार बांटन लाग रही यार भीम लाग रहा।
1: ठीक बात है,
0: चारू चीज बता दी चारू जना आप आपको पत्तो बता दियो बता पत्तो बताया बाद में बढ़ू बे भर भर थेला और चारू पांचो बाहर निकल गया। अब बे अंधेरे में धीरे धीरे आप आपके पत्ता का नहीं एड्रेस का नहीं तो चाल पड़े
1: रवाना हो गया।
0: और राजा भी धीरे धीरे अंधेरी गलियाड़ा का मायने घूमतो फिरतो राजमहल का नहीं आयो। फिर राजा सोचियो कि चारू है तो चोर पर मड़ा है गुणवाणी। मेरी सेना में मेरी फौज में अंग जिसो वीर अंग जिसो गुण और एक भी आदमी को नहीं। अगर यही चारू मेरी फौज का मायने हो तो मैंने रात में घूमने की जरूरत जको फकीरा है जको सुन के वो खजानो
1: बता सके। हाँ।
0: और वो ही मेरा खजानो को खजानची हो तो कौन लुट सके।
1: ठीक बात है,
0: जको चमन है जको पशु पक्षियों की आवाज पहचान ले वो बाकी बात समझ ले वे। अगर वो ही मेरे अस्तबल का मैंने बिना मैं नौकरी दू तो कितनी जोर की होगा कि मेरा जितना भी बड़ा घोड़ा है जगह लड़ाई का मैंने काम आओ भी के सोचा के चावे बने के गालनो ची आती है तो कितो बढ़िया चल है। रंगा जिसो बैंकर आदमी जो कोई भी ताड़न तोड़ दे इससे आदमी न मैं मेरा दुश्मन आकर दुर्ग में भेज दूं तो वो कुछ भी करके आ सके। और रतन इसो आदमी जो अंधेरा में भी कोई ने एक बार देख ले और भूला को नहीं अगर इसो आदमी मेरा खुफिया तंत्र का मायन होगा।
1: हाँ, तो
0: कठा को कठो हुआ
1: बिल्कुल सही बात
0: है। सबसे बड़ो सबसे प्रमुख काम दू इन तो अब बात सोचते वो रात ने राजमहल आगे सो जाओ। अब जी दिन के उठा उठता ही चारू में रफरा तफरी को माहौल गांव नगर शहर चारू मेर बात फैल गई।
1: राजमहल
0: का मैंने सेंध लगा दी कोई ना
1: राजमहल में
0: जबकि गांव में चोरी हो रही बा आज राजमहल में होगी। अब राजमहल ही कौन बच्चे हो तो फिर बाकी लोग की तो कड़े सुरक्षा है।
1: ठीक
0: आपस का मैंने चारू मेर बात चला लगी दिन की फैली जी राज सभा है बस जी राजा आके बड़े बैठे सब आपसरी के मायने फुस फुस बात करने लाग रहा कोई कुछ ही करियो कोई कुछ ही करियो कोई करियो का बारह का लोग चोरी करना है कोई कोई माइनो को कोई मिलियोडो उसके नहीं हटता नहीं चोर फूक कौन सके।
1: ठीक बात
0: यहाँ करके खूब बात चल रही राजा थोड़ी देर सुने और सुनने के बाद में राजा बान कहो को रुको मन पत्तो चोरी कौन करिए मैं चेहरा का नाम बताऊ और चेहरा का पता बताऊ सेना लेके जाओ और पकड़ के ले आओ।
1: ठीक बात
0: थोड़ी देर के मायने बाद चेहरा ने सांकड़ा का मायने बंदी बना के राजमहल में ले आके राजा के सामने
1: खड़ा कर दिया।
0: बटे चारू जना खड़े हो गया बंक मैंने रतन एक दो बार राजा का देखियो बिन जान पहचान सो लगियो देर वो गोरू देखियो देखता है वो पहचान गयो
1: रात आ रही है
0: भाई बोली यार भाई चाल यार भाई बोली को लज जोई को वो तो रात आ रही है बन तीन वागन धीरे से सरक के कहो को वो पांचो अपनो पार्टनर है रात आ रही जब बे हो ही कौन सके वो कह पक्की मेरी आंख धोखो कौन खास कर मैं अंधेरा में देख के पहचान जाऊं धन में पहली भी कहो वो रात और साथी ये पांचो अपनो पांचो चोर
1: विश्वास करो थे मेरी बात
0: वही है बेंगा जो विश्वास को नहीं राजा बान थोड़ी देर देखियो देख के मुस्कुरायो खड़े हो गए बांगा कन्नायो अरे आगे सैनिका का नहीं है इशारो करियो करता ही बांगी सांकड़ा है जगी खोल दी खोलता ही बाना कहो गमा धान कहो ने मेरी ये कांक के इशारे से थारे जगी सजा है बा माफ हो जाएगी थारी जान बख्श दी जाएगी जो तीनों जना देखियो वो तो वही है तीनों भी का पगा चारू भी का पगा हम पड़ के माफी मांगा लगा का मार सा गलती होगी
1: बहुत बड़ी
0: एक बार मन माफ कर दियो जो जीवन में कदी गुन करा
1: चोरी गुन करा
0: तो राजा बन कहो के थे चारवां का मायने बहुत जोरदार गुण है और जका अच्छे दिशा का मायने लगाया जावे।
1: हाँ बन सही दिशा दी जा तो बलो
0: काम आवे तो जीवन में सब ने एक बार मौको मिले है पर वो ही मौको थाने मिली है आज समय थाने मेरे जगह राज्य सेना का मायने सुरक्षा का मायने जटे भी थाने जिसी थार में योग्यता है थान नौकरी दूंगा।

0: रामचंद्र और साथियों की आवाज में गाइडी इमिटी सी लोक रचना सा गई आज को कार्यक्रम बाता ही चाला उरे ताई फेरो मिलन ताई पंकज भाई ने
1: और मोहन भाई ने
0: जो सीख करा
1: राम।

श्रोता आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें ही चले FM 100.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्रोताओं के ईमेल्स पर आधारित राजस्थानी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गोरबंद। गोरबंद सुनने वाले तमाम श्रोताओं को नमस्कार। मनीष भारद्वाज का आइए श्रोताओं करते हैं आज के कार्यक्रम का आगाज और सुनते हैं पहली रचना जो हमारे नियमित श्रोताओं ने हमें भेजी है। सीमा मिश्रा और साथियों की आवाजों को पसंद किया गया है। हमारे श्रोता भंवर सिंह मीणा, तन्मय मीणा, आप लिखते हैं हमीरी कला जिला झुंझुनू से। महेश जानू बहादुरवास जिला झुंझुनू से। सुखजिंदर बुगालिया चिड़ावा जिला झुंझुनू से। बलजीत कांटीवाल बीनासर झुंझुनू से। राजा नंदवाणी, रजत, रोहित, केशव, मुकुल, मनीष, सुमित, साक्षी और किरण नंदवाणी, आप लिखते हैं नई सड़क चूरू से। जगदीश मंडल, अभिषेक मंडल, गुदड़ी बाजार चूरू से। राकेश कुमार दुधवा मीठा से। अरविंद खारड़िया गांव लादड़िया जिला चूरू से। इसी गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं सादुल शहर श्री गंगानगर से, रामकुमार रिवार्ड, चंद्रकला रिवार्ड, गोविंद पुरा सीकर से। लिखते हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी, ओम प्रकाश राय, उषा, अजीत, हैप्पी। गाजीपुर से लिखते हैं प्रतीक, रोशनी, प्रांजल। मैन बाजार कुड़ावली महाराष्ट्र से गंगाधर, प्रमोद, प्रदीप और इनके साथी। इस गीत को पसंद कर रहे हैं संदीप सिंह सोनगरा, सोनल, कार्तिक, प्राची, सचिन चौहान, रामसरा वाले। फवारा चौक वार्ड नंबर 26 सिरसिला जिला चूरू से लिखते हैं गंगा, शिम्पा, उषा, अवनी, अक्षय, हासिम कुरैशी, आप लिखते हैं ददरेवा से। रिंगनी छत्तीसगढ़ से लिखने वाले श्रोता हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, कृष्ण कुमार डाबी, भूपत कुमार, राधा कंवर, विक्रम, अर्चना, साक्षी, आप लिखते हैं गांव टूकिया, तहसील सिंधरी, बाड़मेर से। आइए आप तमाम श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं सीमा मिश्रा की आवाज में ये लोक रचना।

एफ एम चूरू से श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं श्रोताओं के ईमेल्स पर आधारित राजस्थानी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गोरबंद। सीमा मिश्रा की आवाज में ही सुनने वाले हमारे श्रोता हैं माँ नर्मदा श्रोता परिवार शिव कोठी ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश से लिखते हैं, राकेश पप्पू सेन, श्रीमती निशा सेन, ओम सेन, कुमारी सपना, धर्मेंद्र सेन, मुकेश सेन, मम्मी द्वारिका बाई सेन, मनीषा बाई चौधरी। इसी गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता है दतरेंगी भाटपारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल वर्मा। सीमा मिश्रा की इसी आवाज को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, बरखा, निहारिका, योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र कुमार चिंडालिया और इनके साथी। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से पसंद करने वाले श्रोता हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं जिला नांदेड़ देताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। इसी लोकगीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। जनकपुरी सहारनपुर से पसंद कर रहे हैं जॉन डिकोस्ट्रा, रोजी डिकोस्ट्रा, पर्ल डिकोस्ट्रा और विलिस डिकोस्ट्रा। आइए सुनते हैं आप तमाम श्रोताओं की पसंद पर सीमा मिश्रा की आवाज।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: श्रोता इस वक्त FM चूरू से सुन रहे हैं ईमेल्स पर आधारित राजस्थानी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गोरबंद। अगले लोकगीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं मोरटक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवकिशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। इसी गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक और कमल पाठक। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से पसंद कर रहे हैं राष्ट्रपाल गजभैये, राधिका गजभैये और तन्मय गजभैये। इसी गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नवहारकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तापड़े और आशीष मुहेरकर। इसी लोकगीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। हंडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से पसंद कर रहे हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। मालियान सरधाना मेरठ से पसंद करने वाले श्रोता हैं अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जिव्यम जैन। सरथना मेरठ से आदि जैन, अंश जैन और उनके साथी। आइए आप तमाम श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं ये राजस्थानी लोक रचना।

अगली आवाज आपकी रेडियो सेट पर पप्पू मस्ताना एंड पार्टी की, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना, एस के पप्पी। और इसी गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना। इसी नगमे को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। इसी गीत को पसंद किया गया है भाटापार छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी ने। आइए सुनते हैं आप तमाम श्रोताओं की पसंद पर पप्पू मस्ताना एंड पार्टी को।

सीमा मिश्रा की इस आवाज को पसंद कर रहे हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी कल्पना देशमुख। इसी गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुमार, अनुश्री श्याम कुमार। इसी लोकगीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं कापस हिड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया मतांश और आशु अहमद फूल वाले। आइए आप तमाम श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं सीमा मिश्रा।

सीमा मिश्रा और साथियों की आवाजों के साथ ही आज का ईमेल्स पर आधारित राजधानी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गोरबंद यहीं संपन्न होता है। आप तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें ईमेल किया। अगले गोरबंद तक फिर से आपके ईमेल्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ आपके साथी मनीष भारद्वाज को ये कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए।

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं

श्रोता भी सुन रही थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का शहनाई वादन। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। रात्रि के 11 बजने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा।

अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

0: सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च

के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिले तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं।